नमस्कार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज़। आज मंगलवार है, शक संबत 1948, आषाढ़ माह की 23वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 14 जुलाई सन 2026। आज के प्रसारण में आपका स्वागत है।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इसका

कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

0: गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खेती किसानी। आज का विषय है सब्जी फसलों को कीड़े से बचाएं। वाचन अनीता तिर्की का।
2: सब्जी फसलों में बैगन, गोभी जाति की फसलें, टमाटर, मटर, फ्रेंच बीन, सेम, शिमला मिर्च, कद्दू इत्यादि प्रमुख सब्जियां हैं, जिसमें अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े का प्रकोप होता है। अधिक उपज और अच्छी सब्जियों के लिए इन कीड़ों का नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। फसलों में लगने वाले कीड़े मकोड़े पौधों को विभिन्न प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं। इन कीड़ों का वर्गीकरण क्षति के आधार पर इस प्रकार से किया जा सकता है, जैसे मिट्टी में रहकर क्षति पहुंचाने वाले कीड़े, जिसमें दीमक आता है, धड़ एवं फल छेदक कीड़े, जिसमें शीर्ष एवं फल छेदक कीड़े, तना छेदक कीड़े या फली छेदक कीड़े आते हैं, रस चूसने वाले कीड़े में मधुआ, लाही, सफेद मक्खी, लाल मकड़ी, माइट इत्यादि आती है। पत्तियों के बीचों बीच रहकर नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े, जैसे पर्ण सुरंगक, शीर्ष और फल छेदक कीड़े का आक्रमण ज्यादातर बैगन के पौधों पर होता है। नवजात पिल्लू कोमल शीर्ष भाग, फूल के बाह्य दल, पुंज और छोटे छोटे फलों में प्रवेश कर जाते हैं और उसे अंदर ही अंदर खाते रहते हैं। फल बनने के समय पिल्लू फल में प्रवेश कर जाते हैं, फलता फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। फल छेदक का आक्रमण भिंडी में भी होता है। मधुआ कीट का शिशु और वयस्क दोनों ही पत्तियों का रस चूसते हैं, जिसके कारण पत्तियां भूरी हो जाती है, बाद में सूख जाती हैं। इसका आक्रमण बैगन, भिंडी, फ्रेंच बीन इत्यादि फसलों पर होता है। इसी तरह लाही शिशु और वयस्क दोनों ही पत्तियों, फूलों, कलियों, नवजात फलियों का रस चूसते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती है। इसका आक्रमण भी बैगन, भिंडी, सेम, गोभी इत्यादि फसलों पर होता है। लाल मकड़ी माइट जो है, या मकड़ी जाति का जीव है, ये मकड़ियां पत्तियों के निचले सतहों पर जाला बनाकर रहते हैं और पत्तियों की कोशिकाओं से रस चूसते हैं, जिसके कारण पत्तियां पीली हो जाती हैं, बाद में लाल भूरापन रंग में बदल जाती हैं। इसका आक्रमण भी बैगन, भिंडी इत्यादि पर होता है। श्वेत मक्खी के जो व्यस्क मक्खी और

0: पंख सफेद और चमकीले होते हैं। थोड़ी सी आहट पाकर वे शीघ्र उड़ने लगते हैं। इसके आक्रमण के कारण पौधों का आकार छोटा रह जाता है, फूलों और फलों की संख्या कम हो जाती है। यह कीट भिंडी में शिरा मोजाइक रोग फैलाता है। इसी तरह गोभी का पतंगा है, इसका शिशु पीलापन लिए हुए हरे रंग का होता है। नवजात पिल्लू कोमल पत्तियों में सुरंग बनाकर हरियाली चाड़ जाते हैं। थोड़ा बड़ा होने पर पिल्लू पत्तियों में छोटे छोटे छेद करके हानि पहुंचाते हैं। फली छेदक कीट का पिल्लू टमाटर की फलियों में छेद कर गुदा को खाने लग जाता है। कीट के मलमूत्र के कारण उसमें सड़न पैदा हो जाती है। इसका आक्रमण शिमला मिर्च के फलों, मटर, फ्रेंच बीन इत्यादि में होता है। किसी भी फसल में अधिक उपज लेने के लिए कृषि कार्य पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। साफ सुथरी खेती पर जोर देना आवश्यक है। कीड़ों द्वारा ग्रसित भाग पत्ती, टहनियां, फल और फलियों को चुनकर नष्ट कर दे। शीर्ष या फल छेदक जो है, इसके लिए फल बनते समय नीमयुक्त कीटनाशी जैसे नीमसीड करनाल, एस्ट्रैक्ट या अचूक या निमेरिन, इस दवा का प्रयोग आप 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। बैक्टीरिया निर्मित कीटनाशी जैसे हॉल्ट, डेल्फिन बायोलोप या डायपेल, इसका 1.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर व्यवहार करें। नीम से निर्मित दवा कीटनाशी या बैक्टीरिया निर्मित कीटनाशी द्वारा फली छेदक या गोभी में लगने वाले कीड़ों का नियंत्रण किया जा सकता है। रस चूसने वाले जो कीड़े हैं उसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट या इमिडाक्लोरपीड 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव किया जा सकता है। इसी तरह लाल मकड़ी जो माइट है, इसके नियंत्रण के लिए नीम युक्त कीटनाशी का व्यवहार करने से लाभदायक होता है।
1: सब्जी फसलों को कीड़े से बचाएं, ये विषय था आज के खेती किसानी का। वाचन अनीता तिर्की का था। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया गया। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है चिंतन, संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का।

आत्मविश्वास यानी भीतर का भरोसा, इसकी अलग ही ताकत होती है। अगर किसी को खुद पर भरोसा हो तो कोई भी कठिन काम आसानी से पूरा किया जा सकता है। रामायण में एक प्रसंग है कि वानर सेना माता सीता की तलाश में जब समुद्र तट पर पहुंची तो विशाल समुद्र को पार कर लंका जाना कठिन प्रतीत होने लगा। तब अंगद ने कहा कि मैं समंदर पार कर लंका तो जा सकता हूं, परंतु वहां से लौट आने की क्षमताओं पर मुझे संदेह है। तब जामवंत जी ने हनुमान को उनकी शक्ति का एहसास कराया और कहा कि आप जाकर सीता जी का पता करिए। उत्साहित हनुमान ने कहा कि मैं अभी लंका जाकर सभी राक्षसों का संहार करके माता सीता को वापस लेकर आता हूँ। तब जामवंत ने कहा कि ये कार्य श्री राम स्वयं करेंगे, आप सिर्फ ये कार्य करके लौटिए। इस प्रकार तमाम बाधाओं को पार कर हनुमान जी अपने लक्ष्य को पूरा करके लौटे। इस प्रसंग से हमें सीखना चाहिए कि जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो मन में आशंकाएं और भय जरूर पनपते हैं, मगर हमें इनसे पार पाने के लिए अपने भीतर के भरोसे को कायम रखना चाहिए। उत्साह के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने से भीतर का भरोसा भी मजबूत होता है। अगर हमें अपने अंतस से अपनी क्षमता पर यकीन हो जाए तो कोई भी लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आखिर आत्मविश्वास है क्या और इसे कैसे जागृत किया जाए? वास्तव में आत्मविश्वास भीतर की ऐसी शक्ति है जो अपार ऊर्जा के प्रवाह से हमें क्षमता को पहचानने और अपने मुकाम तक जाने के लिए संबल प्रदान करती है। प्रायः हम बहुत कुछ करने के सपने देखते हैं, मगर संदेह की भावना हमें डरा देती है। जब हमारी क्षमताओं और आकांक्षाओं पर हमें ही यकीन नहीं रहता

0: हम अंतस से दब बन जाते हैं। अज्ञात भय से इच्छाएं मन में ही दफन हो जाती हैं। इन दबी इच्छाओं को जागृत करने के लिए ही भीतर का भरोसा पैदा करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा कि पर्वतारोही, खिलाड़ी आदि भी दूसरे लोगों की तरह ही होते हैं? फिर वो इतने कठिन लक्ष्य को इतनी आसानी से कैसे पा लेते हैं? तो इसका जवाब है आत्मविश्वास। विजेता और पराजित में सिर्फ इसका ही अंतर रह जाता है।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम आराधना। शुरुआत करते हैं देशभक्ति गीत से।

अभी आप लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आदि गुरु शंकराचार्य से ये देशभक्ति गीत सुन रहे थे। आइए सुनते हैं भक्ति गीत। शुरुआत करते हैं मन्ना डे की आवाज में, सुनिए ये भक्ति गीत फिल्म वसंत बहार से।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम आराधना। आइए सुनते हैं फिल्म गाइड से ये भक्ति गीत।

इसी भक्ति गीत के साथ कार्यक्रम आराधना यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

पतित पावनी गंगा का सुहावना तट, अशोक वृक्ष के नीचे कुश और कोमल पत्तों की साथरी पर श्री राम तथा सीता रात्रि विश्राम कर रहे हैं। प्रभु को धरती पर शयन करते देख निषादराज गुह का मन विषाद से भर जाता है। लक्ष्मण ने निषादराज की मनोदशा भांप उन्हें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उपदेश दिया। कहा, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। भले बुरे का योग, मिलन और वियोग, शत्रुता, मैत्री तथा उदासीनता भ्रमजाल हैं। जन्म और मरण, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल

अभी आप श्री रामचरितमानस गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। एक नजर प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से और हिंदी में समाचार 7:00। 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिए भेंटवार्ता, अस्थमा कारण और उपचार। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर अत्रि गंगोपाध्याय, भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल। 7:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली। खुला आकाश में सुनिए वार्ता, वर्तमान समय में गांधी की प्रासंगिकता, वार्ताकार राशिराज, प्रस्तुति प्रभु शरण की। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 7:45 पर। 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर प्रादेशिक समाचार। 8:45 पर आप सुनेंगे गोविंदा उरांव और साथियों से उरांव लोकगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन 9:00, शास्त्रीय संगीत 9:30 पर। कलाकार होंगे पंडित मोर मुकुट केडिया, इनसे सुनिए सितार पर राग अहिर भैरव में अलाप और जोड़ के बाद दो गते प्रस्तुत होंगी, दोनों ही गते 3 ताल में निबद्ध होंगे।

तबले पर संगत करेंगे सृजित चटर्जी। दस बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। रिपोर्ट संकलन प्रस्तुति स्वर अमित खौरी और विश्वजीत, प्रस्तुति और संयोजन प्रभु शरण। जोहार रांची कार्यक्रम होगा 10:30 पर। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद 11:30 पर। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनिएगा 12 बजे। इसमें सुनिए चर्चा, भारतीय महिलाएं स्वास्थ्य के प्रति कितनी जागरूक। साथ ही सुनेंगे भेंट वार्ता, बरसात में संक्रमण का खतरा, बचाव जरूरी। जानकारी हासिल करेंगे बारिश में त्वचा और बालों की देखभाल, सूत्रधार शिल्पी और महजबीन। प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा 12:30 पर। हिंदी में समाचार 1:05 पर। अंग्रेजी में समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे। प्रादेशिक समाचार 1:10 पर। उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी 1:20 पर। कलाकार होंगी अनीता सेन, इनसे सुनेंगे चाल पहचानी में टप्पा। सुगम संगीत 1:45 पर। मृणाली अखौरी से सुनेंगे, कलाकार होंगी मृणाली अखौरी। मिड डे न्यूज 2 बजे, 2:15 पर। दोपहर समाचार जय भारती कार्यक्रम होगा 2:30 पर। प्रादेशिक समाचार 2:55 पर। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 3 बजे। रांची मेलोडीज 3:30 पर। 4 बजे, 5 बजे और 6 बजे आप सुनते हैं मुख्य समाचार। क्रीड़ा जगत का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे 4:02 पर। 4:35 पर कार्यक्रम होगा सांझ सरगम। ये थे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत और हिंदी में समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता है। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई को नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगे। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्य वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कोक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हुरमूज जलडमरू बंदरगाह में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान

0: मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाई जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा, सुनते हैं भेंटवार्ता। अस्थमा कारण और उपचार, भेंटवार्ताकार डॉक्टर अत्री गंगोपाध्याय, भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल।
2: बढ़ते वायु प्रदूषण के दौर में अस्थमा हमें किस प्रकार प्रभावित कर रही है, बातचीत करेंगे छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अत्री गंगोपाध्याय से। डॉक्टर साहब स्वागत है।
3: नमस्कार, जोहार। अस्थमा भी एक फेफड़े या श्वास नली की बीमारी है और कोविड भी अधिकतर लोगों का फेफड़ा या श्वास नली में असर किया था। तो जो लोग पहले से अस्थमा से ग्रसित थे, कोविड के बाद उनके अस्थमा के सिम्टम्स में बढ़ोतरी आई है और अचानक सिम्टम बढ़ जाना या अस्थमा का अटैक आने, दौरा पड़ना में भी बढ़ोतरी आई है। उसके अलावा क्योंकि कोई नई तरह की कीटाणु से इन्फेक्शन के बाद शरीर में एलर्जी का प्रकोप बढ़ जाता है, इसीलिए काफ़ी ऐसे लोग जिनको पहले से उनमें या उनके खानदान में अस्थमा नहीं थे, कोविड के बाद उनमें अस्थमा जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं।
2: ऐसे भी मरीज हैं जिनको कोविड नहीं हुआ हो, वो भी अस्थमा से पीड़ित हैं। तो क्या कारण है वर्तमान समय में अस्थमा होने का और हम अपने आप को बचाव किस प्रकार करें?
3: श्रोताओं को मैं एक सीधी बात समझाना चाहता हूं कि अस्थमा मूलतः सांस नली में एलर्जी को बोलते हैं। ये धूल धुआं, वायु, बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। कहीं ना कहीं आज के समय में बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन भी अस्थमा के अटैक ऐसे लोगों में करा रहे हैं जिनको पहले खानदानी अस्थमा नहीं थी या जिनको पहले अस्थमा की समस्याएं ना थी।
2: क्या लक्षण है कि हमें पता चले कि हम अस्थमा से पीड़ित हो गए हैं और इसका हम उपचार शुरू कर दें?
3: अस्थमा के लक्षण पहचानना बहुत आसान है और जितने श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आज के बाद आप लोग भी अस्थमा के लक्षण को पहचान सकेंगे। शरीर में एलर्जी का कुछ और प्रकोप हो सकता है, जैसे कहीं त्वचा में खुजली या दाना होना, छींक आना, नाक से पानी बहना। उसके अलावा अस्थमा के लक्षण होते हैं अचानक से खांसी शुरू होना, सूखी खांसी जो रुकने का नाम नहीं लेता हो, सांस फूलना, छाती में जकड़न तथा छाती से सीटी की आवाज़ सुनाई देना। अगर आपको किसी भी इंसान में ये लक्षण दिखे तो आपको अस्थमा के बारे में शक करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी जटिल या आसानी से नहीं मिलने वाली जांचों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल यही लक्षण अपने आप में काफ़ी है इसको बीमारी साबित करने के लिए।

0: किसी किसी को किसी खास समय इस तरह का अटैक दिखाई पड़ता है, जब मौसम परिवर्तन होता है तो उस समय इस तरह की परेशानियां दिखती है, और किसी किसी व्यक्ति को किसी खास खाद्य पदार्थ से या किसी खास पौधे से या किसी अन्य तरह की चीज़ों से भी अस्थमा होती है, तो इसका बचाव किस प्रकार किया जाए?
1: हमारे राज्य झारखंड तथा हमारा प्रखंड रांची में कुछ कुछ ऐसे फूल मिलते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं, तो इनके पोलन से ऐसे लोग जो पहले कभी झारखंड या रांची में नहीं रहे हो, वो आने से उनको भी अस्थमा का अटैक हो सकता है। तो जब भी मौसम बदलता है, नमी में बदलाव आती है, तापमान में बदलाव आती है, तो जिन लोगों को पहले से अस्थमा के बारे में पता है, मौसम बदलते समय इनको विशेष प्रिकॉशन लेना चाहिए, जगह परिवर्तन के समय इनको विशेष प्रिकॉशन लेना चाहिए। कुछ कुछ लोगों में तो ऐसा होता है कि दिन के समय के साथ भी लक्षण में रोकथाम होता है कि सुबह सिम्टम ज़्यादा होता है या रात में सिम्टम ज़्यादा होता है, तो उनको उस हिसाब से प्रिकॉशन लेना चाहिए। सावधानी ही बचाव है।
0: डॉक्टर साहब, हम खान पान की बात करें तो खान पान में किन किन चीज़ों का हम सेवन नहीं करें ताकि इस बीमारी से हम बचे रहें?
1: अगर मरीज को पता चलता है कि कोई विशेष खाद्य पदार्थ के सेवन से उनके गले में खुजली हो जाए या ओठों में सूजन आ जाए या तुरंत खांसी चालू हो जाए, मतलब उन खाद्य पदार्थ से उस व्यक्ति को एलर्जी है, तो उनको जान के उस खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ उदाहरण के तौर पे मैं बोलना चाहूँगा, अंडे का प्रोटीन, दूध, कई तरह के मूंगफली, बादाम, इनसे कभी कभी इस तरह की एलर्जी हो सकती है। उसके अलावा मैं एक बहुत डिबेटेबल बात बताना चाहूँगा कि पहले हर फल का एक मौसम होता था, लेकिन आजकल एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद हर फल हर मौसम में मिलता है। कहीं ना कहीं ये प्रकृति से छेड़खानी भी अस्थमा या एलर्जी का सिम्टम को बढ़ा रहा है। तो जो फल जिस मौसम में पाया जाता था, ये प्रकृति का नियम है, कृपया उस फल का सेवन उसी मौसम में करिए। अगर आप उस फल के काफ़ी शौकीन हैं और दूसरे मौसम में आपको फल मिल भी रहा है, तो आप कभी कभी थोड़ा सा स्वाद ले सकते हैं, लेकिन निरंतर नहीं, ये सब भी मुसीबत को बढ़ा सकती है।
0: बचाव हम किस प्रकार करें? किसी व्यक्ति को अस्थमा हो जाता है तो उसके मन में ये भ्रांतियाँ फैल जाती है कि हमें अब हमेशा दवाइयाँ या इन्हेलर लेने पड़ेगी, तो कितना हद तक हमें इन्हेलर लेना पड़ेगा और दवाइयाँ कब तक लेनी पड़ेंगी?
1: मैं आकाशवाणी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन्हेलर से डरे नहीं, इन्हेलर केवल एक दवा पहुँचाने का जरिया होता है। जिनको अस्थमा है उनको सांस नली में परेशानी है, तो इन्हेलर केवल दवा को वहां तक तेजी से पहुंचाती है, तो इसमें कोई नशा युक्त पदार्थ नहीं है, इससे आदि होने का खतरा नहीं है। जब तक आपके चिकित्सक आपको सलाह दे तब तक आपको ये इन्हेलर लेना चाहिए। जब आपके चिकित्सक आपको बताए कि अब आप बेहतर हो गए हैं, आपके इन्हेलर हट सकती या कम हो सकती है, उनकी सलाह मान के आप इनको हटा सकते हैं। लेकिन कृपया इन्हेलर नाम से डरे नहीं, ये बहुत सेफ होते हैं और ये जीवन बचाते हैं। अगर आपको अस्थमा हो तो हमेशा आप कहीं भी जा रहे हो एक इन्हेलर आपके साथ रहना चाहिए, और एक इन्हेलर खत्म होने से पहले एक दूसरा इन्हेलर आपके पास हो जाना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, आज कल देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे भी अस्थमा की बीमारी से पीड़ित हो जा रहे हैं, क्या कारण डॉक्टर साहब कि छोटे बच्चे इस तरह की बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं? बेचारे माँ बाप परेशान रहते हैं और बच्चा हमेशा हाँफता रहता है, छींकता रहता है।
1: ये हम चिकित्सकों के लिए की भी काफ़ी परेशानी की बात है, क्योंकि जब हम लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, बच्चों में अस्थमा 7-8 साल के बाद होती थी, लेकिन आजकल मैं खुद देख रहा हूँ 2 साल 3 साल 4 साल में अस्थमा होने का। शहरी बच्चों में इसका सबसे बड़ा कारण, कुछ भी बोलिए, वायु प्रदूषण है। तो सरकार या समाज वायु प्रदूषण के खिलाफ जितने कदम ले सकते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे नन्हे बच्चों के फेफड़े को बचाएगी, नंबर वन। दूसरा, फिर से प्रकृति से दूर होना। पहले जो पानी का सेवन किया जाता था, आज के डेट में उन पानियों का सेवन नहीं होता है, कई तरह का ट्रीटेड वाटर चलती है। तो कृपया इन सब से दूर रह के जो पहले पानियों का सेवन होता था उसको करने से कहीं ना कहीं बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी और इन सब बीमारियों से हम लोग बच्चों को बचा सकेंगे।
0: और दूसरी बात कि हमारा खान पान भी काफ़ी बिगड़ गया है, बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड का सेवन हम बहुत करने लग गए हैं, तो क्या कहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को और

0: खासकर ऐसे छोटे छोटे बच्चे के माता पिताओं को।
1: कभी कभी मनोरंजन के लिए बाहर का खाना स्वाद चखना अच्छी बात है, जो 15 दिन में एक बार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपने घरों पे भरोसा रखिए, अपने घरों के रसोई पे भरोसा रखिए और कोशिश करिए उस घर का खाना जितना ज़्यादा खाने का, तो आपको इस तरह की कृत्रिम पदार्थों से होने वाली बीमारियों से आपको बचा के रखेगी।
0: घर का बना हुआ खाना ही खाइए। यदि घर का बना हुआ खाना खाते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हम स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा और देश स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अत्री गंगोपाध्याय, छाती रोग विशेषज्ञ। आज आपने अस्थमा पर बड़ी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, आज के दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो। कल एक फिर नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अस्थमा कारण और उपचार, आप सुन रहे थे भेंटवार्ता। विशेषज्ञ थे डॉक्टर अत्री गंगोपाध्याय, इनसे बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया गया।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। खुला आकाश में सुनते हैं वार्ता। वर्तमान समय में गांधी की प्रासंगिकता, वार्ताकार राशिराज, प्रस्तुति प्रभु शरण की।
1: मैं आपसे उस व्यक्तित्व के बारे में संवाद करने आई हूँ जिसका नाम सुनते ही सत्य, अहिंसा और नैतिक साहस की छवि हमारे मन में उभर के आती है। महात्मा गांधी। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ प्रगति की गति तेज है, तकनीक हमारे जीवन।
0: क्षमा कीजिएगा, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली। शुरुआत करते हैं फिल्म सूर्यवंशम के इस गीत से, कुमार सानू और चित्रा सिंह की आवाज में।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुबह सुरीली कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म खुदगर्ज से नितिन मुकेश की आवाज। इस गीत को लिखा इंदिवर ने, संगीतवत किया राजेश रोशन ने।

आइए सुनते हैं फिल्म बहारों के सपने से ये गाना। आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की है। इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

आइए सुनते हैं फिल्म चोरी चोरी से ये गाना। आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की है, शब्दों में पिरोया है शैलेंद्र ने, संगीतवत किया शंकर जय किशन ने।

0: से न पूछो कि तुम।
1: कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं फिल्म उजाला से। आवाज लता मंगेशकर और मन्ना डे की है। शब्द रचना हसरा जयपुरी के, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खुला आकाश। सुनते हैं वार्ता, वर्तमान समय में गांधी की प्रासंगिकता। वार्ताकार राशिराज, प्रस्तुति प्रभु शरण की।
1: आज मैं आपसे उस व्यक्तित्व के बारे में संवाद करने आई हूँ जिसका नाम सुनते ही सत्य, अहिंसा और नैतिक साहस की छवि हमारे मन में उभर के आती है, महात्मा गांधी। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ प्रगति की गति तेज है, तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, लेकिन इसी के साथ हमारे समाज में असहिष्णुता, हिंसा, स्वार्थ और नैतिक भ्रम भी बढ़ते जा रहे हैं। रिश्तों में संवाद कम होता जा रहा है, विचारों में धैर्य घट रहा है और शक्ति को ही सत्य मानने की प्रवृत्ति पनप रही है। ऐसे समय में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या गांधी आज भी प्रासंगिक हैं? महात्मा गांधी को अक्सर केवल भारत की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वास्तव में गांधी एक ऐतिहासिक व्यक्ति से अधिक एक जीवंत विचार भी हैं। उनका चिंतन केवल अपने समय के लिए ही नहीं था, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी था। सत्य और अहिंसा उनके लिए केवल एक राजनीतिक हथियार नहीं थे, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण पद्धति थे। आज दुनिया संघर्षों से घिरी है, जब मानवता बार बार संकट में दिखाई देती है, तब गांधी के विचार हमें रुककर सोचने को विवश करते हैं। क्या विकास बिना नैतिकता के संभव है? क्या शक्ति के बिना भी परिवर्तन लाया जा सकता है? और क्या प्रेम और करुणा आज भी समाज को दिशा दे सकते हैं? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को खोजने का प्रयास है हमारा यह संवाद वर्तमान समय में गांधी की प्रासंगिकता के माध्यम से। महात्मा गांधी को समझना केवल उनके जीवन की घटनाओं को जानना नहीं, बल्कि उनके विचारों को समझना है, जिसने एक साधारण मनुष्य को असाधारण नेतृत्व में बदल दिया। मोहनदास करमचंद गांधी का जीवन सत्य की खोज से ही आरंभ होता है और आत्मशुद्धि की साधना में ही विकसित होता है। उनके लिए सत्य कोई अमूर्त सिद्धांत नहीं था, बल्कि हर विचार, हर कर्म और हर निर्णय का आधार था। गांधी जी का जीवन दर्शन आत्मबल पर टिका हुआ था। वे मानते थे कि बाहरी शक्ति से पहले भीतर की शक्ति का निर्माण आवश्यक है। इसी कारण उन्होंने आत्मसंयम, सादगी और अनुशासन को ही अपने जीवन का मूल बनाया। उनके वस्त्र, उनका खान पान और उनके आचरण सब उनके विचारों के जीवंत उदाहरण थे। वे जो कहते थे वही जीते थे। उनके लिए अहिंसा कायरता नहीं बल्कि सबसे बड़ा साहस थी। अन्याय के सामने झुक जाना अहिंसा नहीं बल्कि अन्याय का शांत और नैतिक विरोध करना ही सच्ची अहिंसा है। इसी सिद्धांत ने सत्याग्रह को जन्म दिया, जिसने बिना हथियार उठाए साम्राज्य की नींव को हिला दिया। गांधी जी राजनीति को सेवा का माध्यम मानते थे। सत्ता उनके लिए लक्ष्य नहीं बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने का साधन थी। उनका अंत्योदय का विचार आज भी हमें याद दिलाता है कि किसी भी नीति या निर्णय की सफलता का मापदंड समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति होना चाहिए। महात्मा गांधी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि साधन और साध्य को अलग नहीं किया जा सकता। यदि लक्ष्य पवित्र है तो उसके

रास्ते भी पवित्र होने चाहिए। यही गांधी को एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व से आगे बढ़ाकर एक शाश्वत विचार बढ़ा देता है। एक महिला वक्ता के रूप में मैं ये महसूस करती हूँ कि गांधी का विचार हमें संवेदनशीलता, धैर्य और नैतिक स्पष्टता प्रदान करता है, जो सार्वजनिक जीवन और निजी संबंधों दोनों में समान रूप से आवश्यक है। उनका दर्शन हमें शोर नहीं, आत्मचिंतन से परिवर्तन की ओर ले जाता है। रेडियो के इस माध्यम से उनका यही मानवीय स्वर आज फिर जीवित करना मेरा उद्देश्य है। वर्तमान समय को यदि एक शब्द में परिभाषित किया जाए तो वह शब्द होगा असंतुलन। आज का समाज तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन यह प्रगति केवल बाहरी है, भीतर कहीं न कहीं हम ठहर गए हैं। तकनीक ने जीवन को सुविधाजनक बनाया है, परंतु मनुष्य को मनुष्य से दूर भी कर दिया। संवाद की जगह शोर ने ले ली है और समझ की जगह प्रतिक्रिया ने। सबसे गंभीर चुनौती बढ़ती हुई हिंसा और असहिष्णुता। मतभेद अब विचारों तक सीमित नहीं रह गए, वे टकराव का रूप लेने लगे हैं। धर्म, जाति, भाषा और विचारधारा के नाम पर समाज खंडित हो रहा है। असहमति को शत्रुता समझा जाना लगा है और वातावरण में शांति, सहिष्णुता और करुणा जैसे मूल्य कमजोर पड़ते दिखाई देते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है नैतिक मूल्यों का क्षरण। आज सफलता को ही जीवन का अंतिम उद्देश्य मान लिया गया है और साधन और साध्य के बीच का अंतर धुंधला हो गया है। ईमानदारी, सच्चाई और नैतिकता को व्यवहारिक जीवन में बोझ समझा जाने लगा है। व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे किसी को भी पीछे क्यों न छोड़ना पड़े। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी के विचारों के दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर उनका पूरा जीवन और संघर्ष टिका हुआ है। गांधी के लिए सत्य केवल सच बोलना नहीं था, बल्कि विचार, वाणी और कर्म के बीच पूर्ण सामंजस्य था। आज के समय में जब सूचनाओं की बाढ़ है और भ्रम को ही सत्य की तरह प्रस्तुत किया जाने लगा है, तब सत्य की यह अवधारणा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। डिजिटल युग में सत्य की चुनौती और भी गहरी हो गई है। सोशल मीडिया, त्वरित समाचार और आभासी पहचान के इस दौर में अफवाहें तेजी से फैलती हैं और सत्य अक्सर शोर में दब जाता है। गांधी का सत्य हमें यह सिखाता है कि बिना जांच, बिना विवेक और बिना नैतिक जिम्मेदारी के किसी भी सूचना को स्वीकार करना स्वयं के साथ अन्याय है। सत्य के लिए धैर्य चाहिए, साहस चाहिए और कभी-कभी अकेले खड़े होने की शक्ति भी। व्यक्तिगत जीवन में भी सत्य और अहिंसा की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। पारिवारिक संबंधों में, कार्यस्थलों पर और सामाजिक जीवन में हम प्रतिदिन छोटे छोटे संघर्षों से गुजरते रहते हैं। वहाँ संवाद, सहानुभूति और संयम ही स्थायी समाधान दे सकते हैं। गांधी का विचार हमें सिखाता है कि संबंध जीतने होते हैं, तर्क नहीं। वैश्विक स्तर पर देखें तो युद्ध, आतंक और हिंसा आज भी मानवता के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। हथियारों की दौड़ में लगी दुनिया बार बार यह भूल जाती है कि स्थायी शांति केवल भय से नहीं, विश्वास से आती है। गांधी का सत्य और अहिंसा हमें यह स्मरण कराते हैं कि मानव गरिमा किसी भी राजनीतिक या आर्थिक हित से ऊपर है। एक महिला वक्ता के रूप में मैं यह भी अनुभव करती हूँ कि सत्य और अहिंसा हमें आत्मबल प्रदान करते हैं। वे हमें बिना आक्रामक हुए दृढ़ बनाते हैं, बिना कटु हुए स्पष्ट बनाते हैं। यही गुण आज समाज, राजनीति और व्यक्तिगत जीवन तीनों स्तरों पर अत्यंत आवश्यक हो गई है। महात्मा गांधी का सामाजिक चिंतन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था। उनके लिए स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ था मानव गरिमा की स्थापना। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां व्यक्ति की पहचान उसकी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति से नहीं, बल्कि उनके मानवीय मूल्यों से हो। सामाजिक समरसता गांधी के विचारों का मूल तत्व थी। गांधी जी ने जाति भेद और छुआछूत के विरुद्ध अपने पूरे जीवन संघर्ष किया। उन्होंने समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग को हरिजन कहकर सम्मान देने का प्रयास किया और यह स्पष्ट किया कि जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति सम्मान पूर्वक जीवन नहीं जी सकता, तब तक स्वतंत्रता अधूरी है। आज भी जब हम सामाजिक न्याय और समानता की बात करते हैं, तो गांधी का यह दृष्टिकोण हमें आत्म परीक्षण के लिए प्रेरित करता है। धर्म के प्रश्न पर भी गांधी का विचार अत्यंत समावेशी था। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और मानते थे कि प्रत्येक धर्म मानवता की सेवा का मार्ग दिखाता है। वर्तमान समय में जब धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता समाज में तनाव पैदा कर रही है, तब गांधी हमें यह सिखाता है कि विविधता में ही समाज की शक्ति निहित है। नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में भी गांधी के विचार अपने समय से कहीं आगे थे। वे स्त्री को केवल सहानुभूति के पात्र नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की वाहक मानते थे। उन्होंने स्त्रियों को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के रूप में प्रेरित किया और उनके नैतिक साहस को समाज की शक्ति बताया। गांधी का यह विश्वास आज भी हमें आत्मविश्वास और वैचारिक स्पष्टता देता है। युवा पीढ़ी किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है और महात्मा गांधी
इसी तथ्य को भली भांति समझते थे। वे युवाओं को केवल भविष्य का नागरिक नहीं बल्कि वर्तमान का

0: निर्माण कर्ता मानते थे। आज की युवा पीढ़ी ऐसे समय में जीवन जी रही है जहां अवसर भी है और दबाव भी, स्वतंत्रता भी है और असमंजस भी। ऐसे में गांधी जी का यह विचार उन्हें संतुलन प्रदान कर सकता है। आज का युवा तीव्र प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा है। सफलता को ही जीवन की कसौटी बना दिया गया है। करियर, प्रतिष्ठा और आर्थिक सुरक्षा के दबाव में कई बार मूल्य पीछे छूट जाते हैं। गांधी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सफलता का अर्थ केवल आगे बढ़ना नहीं बल्कि सही दिशा में बढ़ना है। उनके लिए आत्मसंतोष और नैतिक स्पष्टता किसी भी उपलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण थे। गांधी युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करते थे। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक स्वावलंबन नहीं बल्कि वैचारिक स्वतंत्रता भी है। आज जब युवा अक्सर भीड़ का अनुसरण करने लगते हैं, तब गांधी का विचार उन्हें स्वयं सोचने, प्रश्न करने और विवेक के आधार पर निर्णय लेने का साहस देता है। अनुशासन और आत्मसंयम भी गांधी के जीवन के केंद्रीय मूल्य थे। आधुनिक जीवन शैली में जहां त्वरित सुख और त्वरित परिणाम की अपेक्षा बढ़ गई है, वहां धैर्य और निरंतर प्रयास का महत्व कम होता जा रहा है। गांधी जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि स्थायी परिवर्तन समय और संयम की मांग करता है। मैं भी यह अनुभव करती हूँ कि गांधी के विचार युवा लड़कियों को विशेष रूप से आत्मबल देते हैं। वे बिना आक्रामक हुए भी दृढ़ रहना सिखाते हैं, बिना भय के भी अपनी आवाज उठाना सिखाते हैं। आत्मसम्मान, साहस और संवेदनशीलता, ये गुण आज की युवा पीढ़ी के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज के युवाओं के सामने पहचान और उद्देश्य का प्रश्न भी गहराता जा रहा है। गांधी का जीवन इस प्रश्न का उत्तर देता है कि जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए उपयोगी बनना है। सेवा, करुणा और सत्य, ये मूल्य युवाओं को केवल बेहतर नागरिक ही नहीं बेहतर मनुष्य भी बनाते हैं। इस प्रकार गांधी युवाओं के लिए अतीत की स्मृति नहीं बल्कि वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की दिशा है। उनका विचार आज भी युवा मन को स्थिरता, साहस और नैतिक दृष्टि प्रदान करने की क्षमता रखता है। आज के समय में यह प्रश्न अक्सर उठाया जाता है कि क्या महात्मा गांधी के विचार आधुनिक युग के लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं। तेज गति, तकनीकी विकास और बदलती वैश्विक राजनीति के संदर्भ में कई लोग यह तर्क देते हैं कि सत्य, अहिंसा और सादगी जैसे मूल्य व्यवहारिक नहीं रहे। यह विमर्श अपने आप में ही महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी विचार की जीवंतता प्रश्नों से ही सिद्ध होती है। गांधी को अप्रासंगिक कहने वालों का पहला तर्क यह होता है कि आज की दुनिया शक्ति की भाषा समझती है, नैतिकता की नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में युद्ध, हथियार और आर्थिक दबाव निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अहिंसा को आदर्शवादी और अव्यवहारिक बताया जाता है, परंतु हम अगर गहराई से देखें तो हिंसा ने आज तक किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं दिया है। युद्ध समाप्त हो सकते हैं लेकिन घृणा जीवित रहती है। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि गांधी का विचार केवल संघर्ष के समय उपयोगी था, शांति के समय नहीं। यह धारणा भी अधूरी है। वास्तव में शांति के समय ही गांधी के विचारों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि तभी समाज अपने नैतिक आधार को मजबूत कर सकता है। संघर्ष में तो प्रतिक्रियाएं होती हैं लेकिन शांति में ही चरित्र का निर्माण होता है। कुछ लोग गांधी की सादगी को आधुनिक जीवन से असंगत मानते हैं। उपभोक्तावाद और सुविधा के इस युग में संयम का पिछड़ापन समझ लिया जाता है, परंतु आज जब पर्यावरण संकट, मानसिक तनाव और असंतोष बढ़ रहा है, तब गांधी जी की सादगी समाधान के रूप में सामने आती है। सीमित आवश्यकताओं का सिद्धांत आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। गांधी जी के विचारों को अक्सर सतही रूप से समझा जाता है। उन्हें मूर्ति बनाकर पूजना तो आसान है लेकिन उनके विचारों को जीना बहुत कठिन। अप्रासंगिकता का आरोप कई बार हमारी असुविधा को छिपाने का तरीका भी होता है। वास्तविकता यह है कि गांधी अप्रासंगिक नहीं हुए हैं बल्कि हम उनसे दूर हो गए हैं। उनके विचार आज भी प्रश्न पूछते हैं, असहज करते हैं और आत्मचिंतन के लिए विवश करते हैं। यही किसी भी महान विचार की सबसे बड़ी प्रासंगिकता होती है। आज के संवाद के माध्यम से हमने यह समझने का प्रयास किया कि महात्मा गांधी केवल इतिहास की पुस्तक में दर्ज एक नाम नहीं बल्कि वे आज के समय की एक गहरी आवश्यकता है। जिस दौर में हम जी रहे हैं वह हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा तो देता है लेकिन यह नहीं बताता कि किस दिशा में बढ़ना है। ऐसे समय में गांधी का विचार हमें दिशा देता है, गति नहीं रोकता। गांधी हमें यह सिखाते हैं कि परिवर्तन की शुरुआत बाहर से नहीं भीतर से होती है। समाज तभी बदलता है जब व्यक्ति का बदलता है। सत्य, अहिंसा, करुणा और नैतिक साहस, ये मूल्य किसी युग के बंधन में बंधे नहीं होते। ये हर समय, हर समाज और हर व्यक्ति के लिए समान रूप से प्रासंगिक रहते हैं। आज जब हम असहिष्णुता, हिंसा और अविश्वास से जूझ रहे हैं, तब गांधी का शांत स्वर हमें ठहर कर सोचने की शक्ति देता है। मैं यह भी मानती हूँ कि गांधी के विचार हमें बिना कठोर हुए दृढ़ बनाना सिखाते हैं। वे हमें यह भरोसा देते हैं कि संवेदनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति होती है। निजी जीवन हो या सार्वजनिक क्षेत्र, गांधी का मार्ग हमें संतुलन और स्पष्टता प्रदान करता है। गांधी को अपनाने का अर्थ उनके जैसा दिखना नहीं बल्कि उनके जैसा सोचना है। यह आवश्यक नहीं कि हम बड़े आंदोलन करें, लेकिन यह आवश्यक है कि हम छोटे छोटे निर्णयों में सत्य और नैतिकता को स्थान दें। यही सच्ची गांधीवादिता है। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करती हूँ। यदि हमें एक शांत, न्यायपूर्ण और मानवीय समाज की कल्पना को साकार करना है, तो हमें गांधी को स्मृति नहीं मार्गदर्शन बनाना होगा।
1: वर्तमान समय में गांधी की प्रासंगिकता। वार्ताकार राशि राज। ये कार्यक्रम खुला आकाश रांची से प्रसारित किया गया।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज सुनेंगे।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुरमुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
3: Peacekeeping has been a crucial element of
4: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
3: Across 10 of the 11 active missions.
2: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं।

0: व्यय की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी लापता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एकतरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमरीका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
2: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच

0: सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
1: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और 200 रूपये के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद फरत। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमरीका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमरीका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी।

0: इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है। आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में 9 दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। इंडिया ऑफिशियली लॉन्चेस इट्स कैंपेन फॉर इलेक्शन एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2028-29 टर्म। Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. US launches strikes on Iran for the 3rd consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India script history at Lord's in London with 270-run win over England in one of women's test. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
3: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
2: Highlighting India's credentials, Dr. Jaishankar said, India has contributed nearly 3 lakh personnel to about 50 UN peacekeeping missions since the organization's inception.
3: Peacekeeping has been a crucial element of maintenance of international peace and security since the very inception of the United Nations. And India has always been in the forefront of discharging that responsibility. Our cumulative contribution is nearly 300,000 deployments in about 50 missions worldwide. Currently, we have 4,300 personnel across 10 of the 11 active missions. As we all know, most of these missions are in Africa. Few countries would have our experience in preparing peacekeeping to be future ready.
2: If elected, India will serve a 2-year term beginning in 2028. India has previously served 8 terms as a non-permanent member of the Security Council, most recently in 2021-22. The mortal remains of 15 Indian tourists who lost their lives in a boat tragedy near the Phu Quoc Island in Vietnam arrived in Mumbai last night. The victims were flown from Ho Chi Minh City on a Vietnam Airlines flight after Indian diplomatic missions coordinated the repatriation process with Vietnamese authorities. State governments of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala have been asked to coordinate with the bereaved families for the onward transportation of the bodies to their hometowns. Indian Embassy in Vietnam has also expressed gratitude to the Vietnamese authorities for their support during the rescue, identification and repatriation process following the tragedy.

0: Ivanovic, who took him to 5 sets, the Italian became the first man in 48 years to survive and win the cup at London's SW19. Resilience has been the remarkable quality in Sinner's journey to a 5th Grand Slam in the final. And finally, Amar Chitrakatha, set to launch Hindustan Aeronautics Limited, HAL, comic book, reports Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India officially launches its campaign for election as non-permanent member of UN Security Council for 2028-29 term. Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. U.S. launches strikes on Iran for the 3rd consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India slipped history at Lord's in London with 270-run win over England in a one-off women's test. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में आज सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ बीएलए 2 की बैठक और चुनाव पाठशाला का आयोजन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स से भाग लेने की अपील की। लातेहार जिला पुलिस ने 20 लाख रुपए के इनामी नक्सली रविंद्र गंजू को किया गिरफ्तार। ईडी ने 3,87,00,000 रुपए की 11 अचल संपत्ति की जब्त। श्रावणी मेले की सुरक्षा को लेकर डीजीपी तदाशा मिश्रा ने की समीक्षा बैठक। ड्रोन एआई और सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट और रिकॉर्ड किए गए उत्तर जारी किए। कल तक चुनौती की सुविधा। और राज्य में अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ बीएलए 2 की बैठक और चुनाव पाठशाला का आयोजन होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आज होने वाली बैठक और चुनाव पाठशाला के सफल आयोजन में सहयोग की अपील की।
3: सभी पोलिंग स्टेशन में बीएलओ बीएलए 2 का सेकंड मीटिंग, साथ में चुनाव पाठशाला भी आयोजन किया जा रहा है। मीटिंग में अभी वर्तमान में रोल में है उसका नाम में ये एसडीडी सूची बोला जाता है, उन्हीं के बारे में चर्चा होगी। उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगी, अतः एब्सेंट है, शिफ्टेड है, डेट डुप्लीकेट, भारत का नागरिकता यहाँ छोड़कर दूसरा देश में नागरिकता प्राप्त कर लिया, उनका भी नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं जाएगी, उसका बारे में चर्चा होगी। फिर 22 तारीख को उसी सूची फाइनल किया।
2: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि चतरा, मझगांव, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, गुमला और लोहरदगा विधानसभा क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं तथा अन्य क्षेत्रों में भी शीघ्र शत प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मतदाताओं से अपील की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत घर घर पहुंच रहे बीएलओ को इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में पूरा सहयोग दें। उपायुक्त ने सभी मतदाताओं, राजनीतिक दलों और मीडिया से अभियान को सफल बनाने में सहयोग की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस के अवसर पर रांची स्थित रिम्स के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने स्मृति क्विज प्रतियोगिता और शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ चिकित्सकों, संकाय सदस्यों और रेजिडेंट डॉक्टरों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन डॉ. प्रिंस गुप्ता ने प्लास्टिक सर्जरी के वर्तमान परिदृश्य, नई तकनीकों और करियर की संभावनाओं पर व्याख्यान दिए। प्लास्टिक सर्जन डॉ. प्रियंका करकेट्टा ने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी केवल सौंदर्य उपचार तक सीमित नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण और जटिल शल्य चिकित्सा में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लातेहार जिला पुलिस ने 20 लाख रुपए के इनामी भाकपा माओवादी नक्सली रविंद्र गंजू को गिरफ्तार किया है। उस पर झारखंड पुलिस ने 15 लाख रुपए और एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।

0: झारखंड में माओवाद के वित्त पोषण से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लगभग 3,87,00,000 रुपए मूल्य की 11 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कर ली हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक तदाशा मिश्रा ने आगामी राजकीय श्रावणी मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रांची पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तथा आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था सहित सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। डीजीपी ने अधिकारियों को संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी, ड्रोन और एआई आधारित निगरानी, महिला सुरक्षा तथा विभिन्न एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र में हुए ज्वेलर्स डकैती कांड में मुख्य साजिशकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत ने संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी।
1: डकैती की घटना हुई थी, उस कांड के मुख्य साजिशकर्ता शमशेर आलम को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसकी निशानदेही पर कांड में प्रयुक्त एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 2 जिंदा गोली, 1 बिना नंबर की मोटरसाइकिल, इसी के साथ करीब 370 ग्राम सोने जैसा दिखने वाला पदार्थ, 160 ग्राम चांदी जैसा दिखने वाले पदार्थ बरामद किया गया है। इस घटना में संलिप्त अन्य सभी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।
0: रांची में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि डोरंडा थाना क्षेत्र से 4 ब्राउन शुगर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।
2: डोरंडा थाना अंतर्गत साकेत नगर एरिया है, वहां से सबसे पहले मुकेश कुमार को पकड़ा और मुकेश कुमार के पोजीशन से उस ब्राउन शुगर की पुड़िया मिली। उसके पश्चात आगे जब कंटिन्यूअसली रेड करेगी तो संदीप कुमार दांगी है, इनकी पोजीशन से लगभग 1350 पुड़िया जो है ब्राउन शुगर मिली है, तो इन टोटल 1444 पुड़िया ब्राउन शुगर पुलिस के द्वारा बरामद की गई है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट और रिकॉर्ड किए गए उत्तर जारी किए हैं। वेबसाइट neet.nta.nic.in पर आवेदन नंबर लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देखे जा सकते हैं। ओएमआर चुनौती सुविधा कल तक उपलब्ध रहेगी। राज्य में अगले 4 दिनों तक आंधी के साथ भारी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने मॉनसून की कम बारिश में किसानों को खेती को लेकर सलाह दी है।
3: मानसून जो थोड़ा सा है वो बेरुखी भी दिखाएगा, बारिश भी होगा, तो स्थिति को देखते समझते हुए ही जैसा डायरेक्शन जाता आप उसको फॉलो कर सकते हैं और उस हिसाब से ही खेती करेंगे, जिससे कि इस सिचुएशन को हम लोग अच्छे से निपट पाएंगे। आपको प्रेफरेंस धान को ना देते हुए उसको आपको डाइवर्सिफाई करना है। अगर धान लगाना भी है तो आप निचले खेतों में उसको प्राथमिकता दें और ऊपर वाले खेतों में आप मकई है, तिलहन दलहन है, दाल है, इस टाइप का चीजें कर सकते हैं।
0: 22वीं रांची जिला सब जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2026 में विभिन्न विद्यालयों, क्लबों और अकादमियों के 226 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में सांडा और ताउली की 35 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया तथा विजेताओं को पदक और प्रमाण पत्र दिए गए। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने इनामी नक्सली रविंद्र गंजू की गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान ने लिखा है शिकंजा, 20 लाख का इनामी नक्सली रविंद्र गंजू गिरफ्तार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है बीआईटी सिंदरी बनेगी यूनिटरी यूनिवर्सिटी, 15 दिनों में यूनिवर्सिटी सेवा आयोग सक्रिय होगा। प्रभात खबर ने लिखा है भारतीय महिलाओं की लॉर्ड्स फतेह, आज मतदान केंद्रों पर सुनाई जाएगी एएसडीडी की सूची

इस खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में आज सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ बीएलए2 की बैठक और चुनाव पाठशाला का आयोजन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स से भाग लेने की अपील की। लातेहार जिला पुलिस ने 20 लाख रुपए के इनामी नक्सली रविंद्र गंजू को किया गिरफ्तार। ईडी ने 3,87,00,000 रुपए की 11 अचल संपत्ति की जब्त। श्रावणी मेले की सुरक्षा को लेकर डीजीपी तदाशा मिश्रा ने की समीक्षा बैठक। ड्रोन एआई और सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट और रिकॉर्ड किए गए उत्तर जारी किए। कल तक चुनौती की सुविधा। और राज्य में अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आज के प्रसारण में आपके साथ रेणु, नमस्कार।

हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। लोकगीत का कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गोविंदा उरांव और साथियों से उरांव लोकगीत।

0: पदंता जो कमो कुल दिर बेचना इंगन यायो सासुरता है धीरे इंगन यायो सासुरता।
1: अभी आप गोविंदा उराव और साथियों से उराव लोकगीत सुन रहे थे। इसी के साथ लोक गीत का कार्यक्रम लोक रंग यहीं समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया गया। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर में।

हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। शुरुआत करते हैं फिल्म दिलवाले के इस गाना से। आवाज कुमार सानू की है। इस गीत को लिखा समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं, फिल्म साजन की बाहों में। आवाज़ें आशा भोसले और कुमार सानू की है, शब्दों में पिरोया समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

आशा भोसले और नितिन मुकेश की आवाज में सुनते हैं फिल्म बालमा से ये गाना। शब्दों में पिरोया समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं फिल्म आदमी खिलौना है से। आवाज अलका याग्निक और पंकज उधास की है, शब्द रचना समीर के, इस गीत को संगीतबद्ध किए नदीम श्रवण ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम रसरंजन यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और 100.5 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, कलाकार हैं पंडित मोर मुकुट केड़िया। इनसे सुनते हैं सितार पर राग अहिर भैरव में आलाप और जोड़ के बाद दो गते प्रस्तुत होंगी, दोनों ही गते तीन ताल में निबद्ध होंगे।

0: अभी आप पंडित मोर मुकुट केड़िया से सितार पर राग अहिर भैरव में आलाप और जोड़ के बाद दो गते सुन रहे थे। दोनों ही गते तीन ताल में निबद्ध थे। तबले पर संगत कर रहे थे श्रीजीत चटर्जी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और 100.5 मेगा हर्ट्स पर प्रस्तुत है क्रीड़ा जगत। रिपोर्ट संकलन प्रस्तुति स्वर विश्वजीत, प्रस्तुति और संयोजन प्रभु शरण।
1: क्रीड़ा जगत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत पात्र और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची का साप्ताहिक खेल कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। खेल की दुनिया हर दिन नए रोमांच, नए रिकॉर्ड और नई चुनौतियों की कहानी लिखती है। आज के अंक में भी हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की खेल जगत की ऐसी बड़ी खबरें जिन पर पूरे खेल जगत की निगाहें टिकी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय T20 क्रिकेट की। आयरलैंड के बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी टीम इंडिया को व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। आखिर लगातार हार की वजह क्या रही? क्या ये सिर्फ खराब फॉर्म है या रणनीति में बदलाव की जरूरत? इस पर होगा तथ्यपूर्ण और संतुलित विश्लेषण। इसके बाद रुख करेंगे विंबलडन 2026 का, जहां महिला वर्ग को नई चैंपियन मिल चुकी है। चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने शानदार प्रदर्शन से इतिहास रचा है। वहीं पुरुष वर्ग के फाइनल पर भी रहेगी हमारी खास नजर। फिर बात होगी फीफा विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल की। विश्व फुटबॉल की चार महाशक्तियां फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अर्जेंटीना फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए आमने सामने है। जानेंगे इन टीमों की रणनीति, ताकत, प्रमुख खिलाड़ियों और रोमांचक मुकाबलों की पूरी कहानी। और अंत में चर्चा होगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की। इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट मैच में स्मृति मानधना की शानदार बल्लेबाजी और युवा तेज गेंदबाज क्रांति गौर के दमदार प्रदर्शन ने भारतीय महिला क्रिकेट की नई ताकत का एहसास कराया। इस मुकाबले के साथ साथ आगे की चुनौतियों और संभावनाओं पर भी होगी विशेष चर्चा। तो आइए खेल के इन सभी बड़ी खबरों, रोचक विश्लेषण और दिलचस्प तथ्यों के साथ शुरू करते हैं क्रीड़ा जगत। भारतीय क्रिकेट के लिए पिछले कुछ सप्ताह किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। पहले आयरलैंड जैसी अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाने वाली टीम के खिलाफ T20 श्रृंखला गंवाना और उसके बाद इंग्लैंड के हाथों व्हाइट वॉश, ये सिर्फ दो हार नहीं बल्कि भारतीय T20 क्रिकेट के सामने खड़े गंभीर सवालों की कहानी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाने वाली भारत लगातार लड़खड़ाती नजर आई? आइए तथ्यों और तर्कों के साथ समझते हैं। सबसे पहले बात बल्लेबाजी की। भारतीय बल्लेबाज का दृष्टिकोण आधुनिक T20 क्रिकेट के अनुरूप नहीं दिखा। आज का T20 पहले 6 ओवर्स में मैच की दिशा तय कर देता है। इंग्लैंड जैसी टीम शुरू से आक्रमण खेलती है जबकि भारतीय बल्लेबाज अक्सर शुरुआत में विकेट बचाने की सोच में फंस जाते हैं। नतीजा ये होता है कि बीच के ओवर्स में रन गति बढ़ाने का दबाव आता है और विकेट लगातार गिरते हैं। दूसरी बड़ी समस्या रही मिडिल ऑर्डर्स की अस्थिरता। हर मैच में अलग अलग बल्लेबाजों से उम्मीद की गई लेकिन कोई भी लगातार जिम्मेदारी नहीं निभा सका। बड़े स्कोर का पीछा हो या सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना, टीम को ऐसा बल्लेबाज नहीं मिला जो अंत तक टिक कर मैच निकाल सके। अब बात गेंदबाजी की। भारत की गेंदबाजी में सबसे बड़ी कमी डेथ ओवर्स में दिखाई दी। अंतिम 4-5 ओवर्स में लगातार रन लुटे। यॉर्कर की जगह फुलटॉस और स्लॉट गेंदें फेंकी गई जिसका इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पूरा फायदा उठाया। दूसरी ओर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ पर शानदार नियंत्रण रखा और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। फील्डिंग भी चिंता का विषय रही। आसान कैच छूटे, रनआउट के मौके गंवाए गए

मैच खत्म करना है, यह स्पष्ट होना चाहिए। इंग्लैंड की सफलता का सबसे बड़ा कारण यही रहा। हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को अच्छी तरह जानता है और उसी के अनुसार खेलता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है मानसिकता। भारत के कई खिलाड़ी आईपीएल में बेखौफ बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वही खिलाड़ी जरूरत से ज्यादा सतर्क नजर आते हैं। आधुनिक T20 क्रिकेट में डर कर खेलने की कोई जगह नहीं। अगर आप जोखिम नहीं लेंगे तो फिर बड़े लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। क्या इसका मतलब भारतीय क्रिकेट संकट में है? बिल्कुल नहीं। भारत के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं। युवा खिलाड़ियों की लंबी कतार है, मजबूत घरेलू ढांचा है और दुनिया की सबसे प्रतिस्पर्धा T20 लीग IPL भी है। जरूरत है सही खिलाड़ियों को लगातार मौके देने की, टीम में स्थिरता लाने की और खिलाड़ियों को बिना डर के खेलने की आजादी देने की। साथ ही चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन को यह तय करना होगा कि भविष्य की टीम तैयार कर रहे हैं या हर श्रृंखला में नए प्रयोग कर रहे हैं। दोनों बातें एक साथ लंबे समय तक नहीं चल सकती। आने वाले महीनों में भारत के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। यदि अभी इन कमियों पर काम नहीं किया गया तो आगामी ICC टूर्नामेंट में भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन भारतीय क्रिकेट का इतिहास बताता है कि यह टीम मुश्किल दौर से निकलना और मजबूत होकर लौटना जानती है। यही उम्मीद इस बार भी रहेगी। हार कभी कभी आईना भी होता है। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ मिली लगातार हार भारतीय क्रिकेट के लिए एक चेतावनी है। अब ये टीम प्रबंधन, चयनकर्ताओं और खिलाड़ियों पर निर्भर करेगा कि वे इस चेतावनी को समय रहते समझते हैं या नहीं। अगर सीख सही मिली तो यही हार भविष्य की बड़ी जीत की नींव भी बन सकती है। अब बात करते हैं टेनिस की। टेनिस की दुनिया में इन दिनों सारी निगाहें लंदन के ऐतिहासिक ऑल इंग्लैंड क्लब पर टिकी है, जहां घास की कोर्ट पर खेला जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम विंबलडन संपन्न हुआ। महिला एकल वर्ग को इस साल एक नई चैंपियन मिल चुकी है। चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपनी हमवतन कोरोलिना मुचोवा को रोमांचक मुकाबलों में 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया। लेकिन यह मुकाबला सिर्फ एक फाइनल नहीं था, बल्कि धैर्य, अनुशासन, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती की मिसाल थी। पहला सेट पूरी तरह नोस्कोवा के नाम रहा। दूसरे सेट में वे कई बार चैंपियनशिप के बेहद करीब पहुंची, लेकिन दबाव में लगातार मौके गवा बैठी और कोरोलिना मुचोवा ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबले को तीसरे सेट तक खींच दिया। लेकिन असली चैंपियन वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में खुद को संभाल ले। तीसरे और निर्णायक सेट में नोस्कोवा ने बेहतरीन वापसी करते हुए इतिहास रच दिया। दोनों खिलाड़ी एक ही देश चेक गणराज्य से थी। ऐसे में ये मुकाबला केवल खिताब का नहीं बल्कि चेक टेनिस की शानदार परंपरा का भी उत्सव बन गया। पिछले कुछ वर्षों में चेक महिला खिलाड़ियों ने विंबलडन में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है और नोस्कोवा की जीत उसी विरासत को आगे बढ़ाती है। महिला वर्ग में नया इतिहास रचने के बाद अब रुख करते हैं पुरुष एकल वर्ग की ओर। टेनिस की दुनिया में एक नया युग तेजी से आकार ले रहा है और इस युग का सबसे चमकता सितारा है इटली के 24 वर्षीय यानिक सीरन। दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सीरन ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित करते हुए विंबलडन 2026 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया। फाइनल में उन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को 4 सेटों के संघर्षपूर्ण मुकाबले में 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराकर लगातार दूसरा विंबलडन और अपने करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। यानिक सीरन की सबसे बड़ी खासियत है उनका शांत स्वभाव। कोर्ट पर ना कोई अनावश्यक आक्रोश, ना ही भावनाओं का प्रदर्शन, सिर्फ सटीक रणनीति, दमदार सर्विस और बेहतरीन बेस लाइन खेल। यही कारण है कि उन्हें आज आधुनिक टेनिस का सबसे संतुलित खिलाड़ी माना जा रहा है। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि सीरन बचपन में टेनिस नहीं बल्कि स्किंग के बेहतरीन खिलाड़ी थे। बाद में उन्होंने टेनिस को अपना करियर चुना और आज वे इटली के सबसे सफल खिलाड़ी में गिने जाते हैं। इस विंबलडन में उनका सफर भी शानदार रहा। सेमीफाइनल में उन्होंने 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराया
और फाइनल में जेवरेवे के खिलाफ पहला सेट गंवाने के बाद जबरदस्त वापसी कर यह साबित कर दिया कि बड़े खिलाड़ी दबा

में और मजबूत होकर उभरते हैं। 24 वर्ष की उम्र में 5 ग्रैंड स्लैम जीतकर यानिक सीरन ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले वर्षों में पुरुष टेनिस पर उनका दबदबा और मजबूत हो सकता है। कई विशेषज्ञों ने उन्हें रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच के बाद की पीढ़ी का सबसे बड़ा सितारा मान रहे हैं। संघर्ष, अनुशासन और निरंतरता, यही है यानिक सीरन की सफलता का मंत्र। 24 साल की उम्र में उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसका सपना हर टेनिस खिलाड़ी देखता है। अब दुनिया की नजरें इस युवा चैंपियन पर है कि आने वाले वर्षों में और कितने इतिहास रचता है। अब जरा विंबलडन की उस खास परंपरा की बात कर लें जो इसे दुनिया की बाकी ग्रैंड स्लैम से अलग बनाती है। क्या आप जानते हैं विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है? इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। यहां आज भी खिलाड़ी सफेद रंग के ड्रेस पहनते हैं और यह नियम इतना सख्त है कि खिलाड़ियों के कपड़ों पर दूसरे रंग की मात्रा भी बेहद सीमित होती है। यही परंपरा विंबलडन की पहचान है। विंबलडन की एक और खास बात है इसकी प्राकृतिक घास की कोर्ट। आज चारों ग्रैंड स्लैम अलग अलग सतहों पर खेली जाती है, लेकिन घास का कोर्ट केवल विंबलडन की पहचान है। घास पर गेंद की रफ्तार तेज होती है और उछाल अपेक्षाकृत कम, इसलिए यहां सर्विस, नेट प्ले और तेज रिफ्लेक्स सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। दर्शकों के बीच बैठकर स्ट्रॉबेरी और क्रीम खाना भी विंबलडन की सदियों पुरानी परंपरा है। हर साल हजारों किलो स्ट्रॉबेरी और क्रीम दर्शकों के बीच परोसी जाती है। विंबलडन केवल एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि खेल संस्कृति, अनुशासन और परंपरा का उत्सव है। यहां हर जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा बन जाती है। अब बात दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल महाकुंभ फीफा विश्व कप 2026 की। फीफा विश्व कप 2026 अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी गलती 4 साल का सपना तोड़ सकती है और एक शानदार गोल पूरी दुनिया को झूमने पर मजबूर कर सकता है। 48 टीमों के साथ शुरू हुआ यह विश्व कप अब सिर्फ 4 दिग्गजों तक सिमट चुका है, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अर्जेंटीना। खास बात यह है कि पहली बार विश्व कप इतिहास में फीफा की शीर्ष 4 रैंकिंग वाली टीमें सेमीफाइनल में पहुंची है। पहला सेमीफाइनल होगा फ्रांस और स्पेन के बीच, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में आमने सामने होगी इंग्लैंड और अर्जेंटीना। दोनों मुकाबले किसी फाइनल से कम नहीं माने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की। दुनिया की नंबर एक टीम फ्रांस इस विश्व कप में बेहद संतुलित नजर आ रही है। कोच दिदिये देंसा की टीम ने आक्रमण और रक्षा दोनों विभागों में बेहतरीन तालमेल दिखाया है। कप्तान किलियन एम्बापे एक बार फिर अपनी रफ्तार, फिनिशिंग और निर्णायक मौकों पर गोल में बदलने की कला से विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। एम्बापे गोल्डन बूट की दौड़ में भी सबसे आगे चल रहे खिलाड़ियों में शामिल हैं। उनके साथ उस्मान डेम्बेले और माइकल ओलिसे जैसे खिलाड़ी फ्रांस के आक्रमण को और भी धार देते हैं। अब बात करते हैं स्पेन की। अगर फ्रांस ताकत और गति का नाम है तो स्पेन तकनीक और धैर्य की पहचान है। स्पेन की सबसे बड़ी ताकत है उसका टिकी टका फुटबॉल, छोटे छोटे पास, गेंद पर नियंत्रण और विपक्षी टीम को लगातार दबाव में रखना। युवा स्टार लामिन यामाल इस विश्व कप के सबसे बड़े आकर्षण बनकर उभरे हैं, जबकि अनुभवी कप्तान अल्बारो मोराटा टीम को नेतृत्व दे रहे हैं। मिडफील्ड में स्पेन का नियंत्रण किसी भी टीम के लिए चुनौती है। अब रुख करते हैं दूसरे सेमीफाइनल की ओर। ये मुकाबला सिर्फ फुटबॉल नहीं बल्कि इतिहास, जुनून और प्रतिद्वंदिता की कहानी है। इंग्लैंड बनाम अर्जेंटीना। इन दोनों देशों के बीच विश्व कप की कई यादगार मुकाबले खेले जा चुके हैं। डिएगो माराडोना का हेड ऑफ गार्ड गोल हो या 1998 का रोमांचक मैच, हर बार ये मुकाबला इतिहास बना है। इंग्लैंड की बात करें तो कप्तान हैरी केन अनुभव का बड़ा नाम है, लेकिन इस विश्व कप में सबसे ज्यादा प्रभावित किया है जूड बेलिंगहैम ने। बेलिंगहैम ने क्वार्टर फाइनल में 2 गोल कर टीम को जीत दिलाई और इस समय इंग्लैंड के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड की ताकत है उसका मजबूत मिडफील्ड, हवाई गेंदों पर शानदार पकड़ और सेट पीस से गोल करने की क्षमता। दूसरी ओर है मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना। पूरी दुनिया की नजरें इस बार फिर लियोनेल मेसी पर है। शायद ये मेसी का आखिरी विश्व कप हो
और वो इससे

0: एक और खिताब के साथ यादगार बनाना चाहेंगे। मैसी सिर्फ गोल नहीं करते बल्कि पूरे खेल की दिशा बदल देते हैं। उनके साथ है जूलियन अल्वारेज, लोतारो मार्टिनेज और एलेक्सिस मैक एलिस्टार जैसे खिलाड़ी अर्जेंटीना को बेहद संतुलित टीम बनाते हैं। अर्जेंटीना की सबसे बड़ी ताकत है दबाव में भी संयम और बड़े मैच का अनुभव। अगर रणनीति की बात करें तो फ्रांस तेज काउंटर अटैक पर भरोसा करता है, स्पेन गेंद पर कब्जा रखकर विरोधी को थकाता है, इंग्लैंड शारीरिक मजबूती और सेट पीस में माहिर है और अर्जेंटीना मैसी की रचनात्मकता के साथ सामूहिक फुटबॉल खेलती है। यही वजह है कि दोनों सेमीफाइनल पूरी तरह अलग अंदाज के मुकाबले होंगे। अब एक दिलचस्प तथ्य, इस बार विश्व कप में कोई भी टीम संयोग से यहां तक नहीं पहुंची है। चारों टीमों ने क्वार्टर फाइनल में दमदार प्रदर्शन कर अपनी जगह बनाई है और चारों पहले भी विश्व कप जीत चुकी है। यानी इस बार ट्रॉफी किसी नए देश के पास नहीं जाएगी बल्कि एक पुराना चैंपियन ही फिर से विश्व फुटबॉल का बादशाह बनेगा। पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा जबकि दूसरा मुकाबला इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होगा। इन दोनों मैचों के विजेता 19 जुलाई को फाइनल में आमने सामने होंगे। तो सवाल सिर्फ इतना ही है कि कौन जीतेगा। सवाल यह भी है, क्या मैसी अपने करियर में एक और विश्व कप फाइनल खेलेंगे? क्या एम्बापे फ्रांस को फिर विश्व विजेता बनाएंगे? क्या यामाल स्पेन के लिए नया इतिहास लिखेंगे या फिर हैरी केन इंग्लैंड का 6 दशक लंबा इंतजार खत्म करेंगे? इन सवालों का जवाब अगले 2 मुकाबलों में मिलेगा। अब जिक्र उस भारतीय महिला टीम की जिसने लॉर्ड्स की ऐतिहासिक धरती पर अपने जज्बे, अनुशासन और बेहतरीन खेल से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारतीय महिला क्रिकेट इन दिनों एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। ये मुकाबला कई मायनों में ऐतिहासिक है क्योंकि लॉर्ड्स में पहली बार महिला टेस्ट मैच आयोजित किया गया है और इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय खिलाड़ियों ने यादगार प्रदर्शन किया है। इस मुकाबले की शुरुआत भारत की अनुभवी सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना ने शानदार बल्लेबाजी से की। उन्होंने दोनों पारियों में धैर्य और तकनीक का बेहतरीन प्रदर्शन किया। दूसरी पारी में उनकी अर्धशतकीय पारी ने भारत को बड़ी बढ़त दिलाने की मजबूत नींव रखी। स्मृति की बल्लेबाजी की सबसे खास बात यह रही, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को छोड़ने का धैर्य और खराब गेंदों को सीमा रेखा के बाहर भेजने की कला। टेस्ट क्रिकेट में यही परिपक्वता बड़े बल्लेबाजों की पहचान होती है। लेकिन इस टेस्ट मैच की सबसे बड़ी खोज रही युवा तेज गेंदबाज क्रांति गौड़। क्रांति गौड़ ने पहली पारी में 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। वो लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला तेज गेंदबाज बनी। उनकी गेंदबाजी में गति, स्विंग और सटीक लाइन लेंथ का शानदार मेल देखने को मिला। उन्होंने इंग्लैंड के शीर्ष क्रम को झकझोर दिया और भारत को मैच में निर्णायक बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। एक और बड़ी उपलब्धि रही यास्तिका भाटिया की। दूसरी पारी में उन्होंने शानदार शतक जड़कर लॉर्ड्स में महिला टेस्ट इतिहास का पहला शतक बनाने का गौरव हासिल किया। उनकी इस पारी ने भारत की बढ़त को 450 रन से आगे पहुंचा दिया और इंग्लैंड पर जीत का दबाव कई गुना बढ़ा दिया। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी पूरे मैच में आक्रमण कप्तानी की। गेंदबाजों का प्रभावी इस्तेमाल, सही समय पर फील्ड में बदलाव और लगातार आक्रमण की रणनीति ने इंग्लैंड को वापसी का मौका नहीं दिया। अनुभवी स्पिनर स्नेहा राणा और दीप्ति शर्मा ने भी दूसरे छोर से दबाव बनाए रखा। अगर इस टेस्ट से भारत की सबसे बड़ी सीख देखें तो वो है युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का शानदार संतुलन। एक और स्मृति मानधना जैसी अनुभवी बल्लेबाज हैं, तो दूसरी ओर क्रांति गौड़ और यास्तिका भाटिया जैसे युवा खिलाड़ी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। यही संतुलन भारतीय महिला क्रिकेट का भविष्य और मजबूत बनाता है। अब बात आगे की। इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट मैच के बाद भारतीय महिला टीम एक दिवसीय श्रृंखला खेलेगी। यह सीरीज इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आने वाले ICC टूर्नामेंट की तैयारी के इतिहास से हर मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है। टीम चाहेगी टेस्ट की इस शानदार लय को वनडे क्रिकेट में भी बरकरार रखा जाए। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द वीक में आज बात उस खिलाड़ी की जिसकी मौजूदगी भर से विपक्षी टीम की रक्षा पंक्ति सतर्क हो जाती है, जिसकी रफ्तार, ताकत और गोल करने की क्षमता ने उसे विश्व फुटबॉल के सबसे खतरनाक स्ट्राइकरों में शामिल कर दिया है। हम बात कर रहे हैं नॉर्वे के स्टार फुटबॉलर एर्लिंग हालैंड की। 24 वर्षीय एर्लिंग हालैंड का जन्म 21 जुलाई 2000 को इंग्लैंड के लीड्स शहर में हुआ। उनके पिता अल्फ इगे हालैंड भी पेशेवर फुटबॉलर रहे हैं। बचपन से ही हालैंड की पहचान उनकी असाधारण शारीरिक क्षमता, तेज रफ्तार और गोल के सामने बेहतरीन फिनिशिंग के लिए होने लगी थी। रेड बुल साल्ज़बर्ग, बोरुसिया डॉर्टमुंड और फिर मैनचेस्टर सिटी तक का उनका सफर लगातार रिकॉर्ड तोड़ने वाला रहा। क्लब फुटबॉल में उन्होंने गोल करने की ऐसी आदत बना ली कि उन्हें दुनिया भर में गोल मशीन कहा जाने लगा। लेकिन इस बार फीफा विश्व कप 2026 में हालैंड ने वो कर दिखाया जिसका नॉर्वे के प्रशंसक वर्षों से इंतजार कर रहे थे। लगभग 28 वर्षों के बाद नॉर्वे ने विश्व कप में वापसी की और इस शानदार अभियान में सबसे बड़े नायक बने एर्लिंग हालैंड। विश्व कप के पहले ही मुकाबले में इराक के खिलाफ हालैंड ने 2 गोल दागकर नॉर्वे को 4-1 से जीत दिलाई। इसके बाद सेनेगल के खिलाफ भी उन्होंने 2 गोल किए और अपनी टीम को नॉकआउट चरण में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन उनका सबसे यादगार पल आया ब्राजील के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल में। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील के विरुद्ध हालैंड ने 2 शानदार गोल दागे। खास तौर पर उनका दूसरा गोल शानदार नियंत्रण, ताकत और सटीक फिनिशिंग का बेहतरीन उदाहरण था। इस गोल को फीफा ने राउंड ऑफ 16 का हुंडई गोल ऑफ द राउंड चुना। हालांकि क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ नॉर्वे का सफर समाप्त हो गया, लेकिन हालैंड का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट की सबसे बड़ी चर्चाओं में रहा। नॉर्वे भले ही सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सका, लेकिन इस टीम ने दुनिया को यह संदेश जरूर दिया है कि अब विश्व फुटबॉल की नई ताकत बनकर उभर रही है। अब बात करते हैं हालैंड की सबसे बड़ी ताकत की। लगभग 1.95 मीटर लंबे हालैंड अपने शारीरिक मजबूती, विस्फोटक गति और हवा में शानदार खेल के लिए जाने जाते हैं। बॉक्स के अंदर अपनी पोजीशनिंग इतनी सटीक होती है कि उन्हें एक छोटा सा मौका भी मिल जाए तो वो उसे गोल में बदल देते हैं। उनका बायां पैर बेहद खतरनाक है, लेकिन हेडर और दाएं पैर से भी उतने ही प्रभावी हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई कोच उन्हें मौजूदा दौर का सबसे घातक नंबर 9 स्ट्राइकर मानते हैं। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि हालैंड गोल करने के बाद अक्सर ध्यान मुद्रा यानी मेडिटेशन सेलिब्रेशन करते हैं। उनका मानना है कि मानसिक शक्ति और एकाग्रता ही बड़े खिलाड़ियों की सबसे बड़ी ताकत होती है। खास खबरों में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में भारत की शूटर नीरू ढाडा ने ट्रैप स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। हरियाणा की नीरू ने फाइनल मुकाबले में जबरदस्त निरंतरता दिखाते हुए 30 में से 27 सटीक निशाने लगाए और शीर्ष स्थान हासिल किया। 26 साल की नीरू वर्ल्ड कप में इंडिविजुअली ट्रैप गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वे इस साल एशियन गेम में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। क्रीड़ा जगत के आज के इस अंक में बस इतना ही। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रभु शरण। कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए अब मुझे यानी विश्वजीत पात्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार, फिर मिलेंगे खेल जगत की नई खबरों, नए रिकॉर्ड और नई उपलब्धियों के साथ।
1: क्रीड़ा जगत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। रिपोर्ट संकलन प्रस्तुति स्वर विश्वजीत, प्रस्तुति एवं संयोजन प्रभु शरण। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया गया। अगला कार्यक्रम

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आपको बताते चलते हैं कि आज 3 बजे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे उमंग, रांची मेलोडीज आप सुनेंगे 3:30 पर, शाम 4:02 पर क्रीड़ा जगत का पूरा प्रसारण आप सुनेंगे, रिपोर्ट संकलन प्रस्तुति स्वर विश्वजीत, प्रस्तुति और संयोजन प्रभु शरण की होगी, और फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम आप सुनेंगे 4:35 पर। शाम 5:02 पर युवाणी कार्यक्रम होगा, इसमें चर्चा सुनिए सोशल मीडिया का सही उपयोग, डिजिटल डिटॉक्स क्यों जरूरी है, और फिल्म संगीत का भी आनंद आप लेंगे, और इतिहास में आज का दिन क्या होगा इस पर भी बातें होंगी, और रोचक तथ्य से भी आपको अवगत कराया जाएगा। सूत्रधार होंगे प्रज्ञा और या छावड़ा। श्रमिक लोग कार्यक्रम आप सुनते हैं 5:30 पर, इसमें चर्चा सुनिए सही पोषण देश रोशन, नशा मुक्त जीवन अपनाएं, श्रमिकों के अधिकार एवं कानूनी प्रावधान, और भी बातें होंगी। लघु और कुटीर उद्योग में महिला श्रमिक, कंपियर होंगे मीनाक्षी शर्मा और पूजा बोस, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की। मुख्य समाचार आप सुनते हैं शाम 4:00, 5:00 और 6:00। किसान वाणी कार्यक्रम होगा 6:02 पर, इसमें चर्चा सुनिए मौसम पूर्वानुमान से लाभ, आज की बात में होगी धान की फसल से अधिकतम उपज कैसे प्राप्त करें, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कार्तिक शर्मा, और सूत्रधार होंगे विष्णु उरांव और कृष्ण जीवन पौराणिक, प्रस्तुति प्रभु शरण की। छह बजकर 32 मिनट पर कार्यक्रम होगा हमारी दुनिया, इसमें चर्चा सुनिए बेटी घर की शान, पसंद के आप लोग गीत सुनेंगे, सूत्रधार होंगे विष्णु उरांव और कृष्ण जीवन पौराणिक, प्रस्तुति प्रभु शरण की। 7:00 प्रादेशिक समाचार, जिले में आजकल 7:11 पर आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम आप सुनते हैं 7:15 पर, आज का ये कार्यक्रम खड़िया भाषा में, इसमें चर्चा सुनिए दारू हरिया का जो हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार, और रथ मेला में बरते सावधानियां, सूत्रधार होंगी इम्मा सरोजनी क्रिकेटा और अनुरंजन कीड़ो, प्रस्तुतकर्ता गौरव कुमार पांडे। 7:45 पर अंग्रेजी वार्ता सुनेंगे, लाइफ स्टाइल फॉर सक्सेस, वार्ताकार केसी जैन, प्रस्तुति प्रभु शरण की। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे 8:00, सुर्खियों में 8:30 पर, समाचार संध्या 8:45 पर। नौ बजे न्यूज एट 9 उर्दू में समाचार 9:15 पर, मनी टॉक 9:30 पर, मंथन 9:45 पर, ये सब करके आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। गूंजे झारखंड 10:00 आप सुनेंगे, वर्षा ऋतु पर आधारित लोकगीत सुनेंगे, संकलन वाचन संध्या नीलमा टोपनो का, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की। शास्त्रीय संगीत 10:30 पर आप कलाकार होंगे अली अकबर खान, इनसे सुनेंगे उस्ताद अली अकबर खान से सरोद पर राग रामदासी मल्हार में एक रचना। हिंदी में समाचार 11:00 और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये थे कुछ प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे रहे थे। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: कार्यक्रम जोहार रांची में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ अमृता
1: और मैं रेणु।
0: दोस्तों आप सभी को हमारी ओर से
1: नमस्कार,
0: जोहार। दोस्तों हम आपको देंगे अलग अलग क्षेत्रों की ढेरों जानकारियां और आपसे करेंगे बहुत सारी बातें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ।
1: जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे, खुद को निर्मल मानोगे तो निर्मल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे।
0: हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसका अर्थ है कि हमारे विचार ही हमारे व्यक्तित्व और भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि आप स्वयं को कमजोर मानेंगे तो आप वास्तव में कमजोर बन जाएंगे, लेकिन यदि आप खुद को शक्तिशाली और साहसी मानेंगे तो आप अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे।
1: हमारी सबसे बड़ी ताकत या कमजोरी हमारी अपनी सोच है। परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, यदि मन में अजैव शक्ति का भाव है तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो अमृता, अब आगे बढ़ते हैं और मौसम तो आज काफी बदलने वाला है, सुनने में आ रहा है, मौसम विभाग का
1: जी
0: अनुमान है।
1: जी बिल्कुल। और बारिश का इंतजार जो है हमारे रांची वाले कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों से बारिश हुई नहीं है और गर्मी जो है बढ़ चुकी है।
0: हाँ, और रांची को छोड़ो तो 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया
1: बिल्कुल
0: गया
1: बिल्कुल।
0: है।
1: साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बिहार व मणिपुर में सक्रिय रहने के कारण रांची में फिलहाल भारी बारिश के लिए 2 से 3 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। मंगलवार को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा व साहेबगंज जिले में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में आकाश में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं मेघ गर्जन हो सकते हैं। रांची में बुधवार और गुरुवार को बादल छाए रहने तथा 1-2 बार मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है।
0: सच में, और ये भी कहा जा रहा है कि आज से 17 जुलाई तक रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
1: बिल्कुल।
0: और इस अवधि में वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तेज हवा चलने की आशंका है। अब वहीं झारखंड में 1 जून से

0: 13 जुलाई तक झारखंड में 316.7 मिलीमीटर बारिश हो जाती थी, लेकिन वर्तमान में इतना बारिश नहीं हो पाई जो सामान्य से बहुत कम है
1: जी।
0: और एक माह के अब तक के आंकड़ों के अनुसार सिमडेगा में सबसे अधिक बारिश हो चुकी है और दूसरे स्थान पे रांची में है। और
1: बारिश के इंतजार जो है हमारे किसान भाई भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खेती करने के लिए
0: सबका जरूरत है
1: जी।
0: और मौसम में थी पर नजर डालें, तापमान पर नजर डालें तो अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस है और बादल छाए रहेंगे। एक बार या दो बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश आज हो सकती है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: अमृता, अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं, जानते हैं क्या क्या घटनाएं घटी, किस आज क्या क्या आज के दिन हुआ।
2: बिल्कुल, आज के दिन आज क्या क्या खास हुई है, तो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज ही के दिन 1636 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया था,
1: और 1789 में ईस्वी में बास्टिल के पतन के साथ फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। इसे निरंकुश राजशाही के अंत की ओर एक बड़ा कदम माना जाता है।
2: आज के दिन 1850 ईस्वी में मशीन द्वारा जमाई गई बर्फ का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया।
1: 1942 ईस्वी में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता की मांग करते हुए भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था।
2: आज के दिन 1965 ईस्वी में नासा के अंतरिक्ष यान मरिफर 4 ने पहली बार मंगल ग्रह की क्लोजअप तस्वीरें ली, जो किसी दूसरे ग्रह की पहली अंतरिक्ष तस्वीर थी।
1: 2015 ईस्वी में नासा का न्यू होरो इंजिन्स अंतरिक्ष यान प्लूटो के सबसे करीब से गुजरा, जो इतिहास का पहला प्लूटो फ्लाईवी था।
2: तो अब बातों के साथ अपने श्रोताओं को सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: इतिहास का अगला पन्ना पलटते हैं, जानते हैं आज के दिन किन महापुरुषों का जन्म हुआ।
1: हाँ, तो अपने श्रोताओं को बता दें कि आज के दिन सन 1902 में चंद्र भानुगुप्त, जो कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका जन्म हुआ था।
0: और 1909 ईस्वी में M.S.
1: नम्बूदरी पद, प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेताओं में से एक और केरल के प्रथम मुख्यमंत्री, उनका भी जन्म हुआ था।
0: हाँ, और 1900 ईस्वी में देशबंधु गुप्त, प्रसिद्ध राष्ट्रभक्त स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था।
1: और 1856 में गोपाल गणेश अगरकर, जो कि प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनका भी जन्म हुआ था।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है ये।

0: கட்டளை கட்டினால் சுயமதி கட்டுப்படை பாரதிய சேனா.
1: इतिहास का आखिरी पन्ना पलटते हैं, जानते हैं आज किन महापुरुषों का निधन हुआ, उन्हें करते हैं शतरत्न नमन।
2: जी, तो आज जो है 2008 ईस्वी में वाईई चंद्रचूड़, जो कि भारत के भूतपूर्व 16वें मुख्य न्यायाधीश थे, उनका निधन हुआ था।
1: 2003 में लीला चिटनिस, प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेत्री थी, उनका निधन आज ही के दिन हुआ।
2: 1982 में रमन विश्वनाथन, जो कि जाने माने भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक थे, उनका भी निधन हुआ था आज ही के दिन।
1: और 1896 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह, हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े सुप्रसिद्ध इतिहासकार थे, साहित्यकार थे।
2: 1975 ईस्वी में मदन मोहन, जो कि हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध 1950, 1960 और 1970 के दशक के बॉलीवुड फिल्म संगीत निर्देशक थे, उनका भी निधन आज ही के दिन हुआ था।
1: मदन मोहन हिंदी सिनेमा के एक महान संगीतकार थे, गजलों और नजमों की रूहानी धुनों के लिए मशहूर इस संगीतकार ने वो चुप रहे तो लग जा गले और आपकी नजरों ने समझा जैसे अमर गीत दिए।
2: संगीत की दुनिया में आने से पहले मदन मोहन सेना में थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर काम किया, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए। तो आइए सुनते हैं उनका ये खूबसूरत नगमा।

0: अमृता, ये चिलचिलाती धूप के बाद ना मानसून की बारिश भले ही राहत लेकर आती है, लेकिन इसी राहत के बीच ना कई संक्रामक बीमारियों का भी खतरा भी बढ़ जाता है।
1: हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। बारिश के दौरान जो है जमा पानी में मच्छरों के पनपने की आशंका सबसे अधिक रहती है, और यही मच्छर कई बार जानलेवा साबित होते हैं। ऐसे में मच्छरों को पनपने से रोकना बेहद जरूरी है, तभी मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों से बचाव संभव है।
0: हाँ, तो हम कैसे उसे ये कर सकते हैं? जैसे मलेरिया फैलाने वाला जो है ना एनोफिलीज मच्छर जो है अक्सर गंदे

0: छत पर रखे कबाड़, फालतू जानवरों के पानी के बर्तन और फ्रिज में के पीछे लगी ट्रे में जो पानी आप जमा नहीं होने दें।
1: और एक मच्छर जो है ना, कई बीमारियों का जड़ है। एक छोटा सा मच्छर कई गंभीर बीमारियों का वजह बन सकता है। एडीज मच्छर जो है डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस फैलाता है, जबकि एनोफिलीज मच्छर मलेरिया का कारण बनता है। क्लूलेक्स मच्छर जापानी इंसेफ्लेराइटिस जैसी बीमारियां फैला सकता है। और विशेषज्ञों के अनुसार कहना है कि मच्छरों की बढ़ती संख्या के पीछे घरों के आसपास जमा साफ या गंदा ठहरा पानी प्रमुख कारण है। और पानी का जमाव रोकने के से बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है।
0: हाँ बिल्कुल। तो हम मलेरिया के जो प्रमुख लक्षण हैं उसको जानते हैं। जब आपको तेज बुखार के साथ ठंड लगे और कंपकपी हो, ठंड के साथ बार बार बुखार आए, सिर दर्द हो और शरीर में दर्द हो, कमजोरी और अत्यधिक थकान हो और गंभीर स्थिति होने से बेहोशी और सांस लेने में भी तकलीफ होती है।
1: और ऐसा ही डेंगू के लक्षण भी देखने के लिए मिलते हैं अमृता, जैसे अचानक तेज बुखार हो जाता है, सिर दर्द, तेज सिर दर्द और अच्छे मतलब आंखों के पीछे दर्द हो जाता है, मांसपेशियों और जोड़ों में तेज दर्द हो जाता है, और त्वचा पर लाल चकते दिखाई देने लगते हैं, मिटली उल्टी और अत्यधिक कमजोरी होने लगती है। और गंभीर स्थिति में नाक और मसूड़ों से खून आना और उल्टी या पखाने से खून आना दिखता है।
0: ये सारे जब आप में ये सारे लक्षण हो, घर के किसी भी सदस्य में अगर इस तरह के लक्षण हो तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं।
1: हाँ, तो घरों में ऐसे करें मच्छरों का, जैसे कि कैसे हम संयम
0: बचाव
1: रख
0: करें।
1: सकते, बचाव
0: बिल्कुल।
1: कर सकते हैं। जैसे अब घरों में है तो घर के भीतर जो है आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दीजिए। सप्ताह में एक दिन तय करें कि आज कूलर, फ्रिज और पीछे का जो ट्रे है और गमलों के नीचे रखी प्लेट और पालतू जानवरों के बर्तनों को पूरी तरह खाली करके सुखाएं। कुछ कुछ बातें जो हैं जिससे मच्छर ना आ सके उस पर हम लोगों को ध्यान देना होगा।
0: हाँ, जैसे छतों पे रखे हुए पुराने टायर, प्लास्टिक के डब्बे या टूटे बर्तनों में बारिश का पानी जमा हो जाता है, तो इन्हें आप हटा दें या उल्टा करके रखें। घर के आसपास जो है गेंदे का पौधा, तुलसी, लेमन ग्रास या पुदीना लगाएं। इनकी खुशबू से मच्छर जो है वो दूर भागते हैं।
1: थोड़ा कुछ भी हुआ और सोते समय जो है हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें, चाहे आप दिन में भी सो रहे हो या रात में। डेंगू के मच्छर अमूमन दिन के साथ समय ज्यादा सक्रिय होते हैं। और शाम के समय बच्चों को बाहर खेलने भेजते समय आस्तीन के कपड़े पहनाए, पूरा मतलब ढका हुआ हाथ का ढका हुआ कपड़ा पहना के भेजें ताकि मच्छर उनको ना काटें। इसी तरह से छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम सतर्क रह के बच सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे जो बचाव हैं अगर वो हम करते हैं तो फिर मलेरिया और डेंगू जैसे बीमारियों से हम दूर रह
1: दूर
0: पाते
1: रह सकते
0: हैं।
1: हैं। और थोड़ा भी कहीं भी कुछ लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
0: जी
1: आज 2 दिन 3 दिन आप देख लीजिए भी, लेकिन फिर भी डॉक्टर से मिलने में नहीं सकुचाना चाहिए। और खान पान दुरुस्त रखें,
0: बिल्कुल।
1: पौष्टिक आहार
0: हेल्दी
1: लें।
0: खाएं, ज्यादा तला बोला ना
1: हाँ,
0: खाएं और बाहर का खाना जो है अवॉइड करें।
1: और ये तो मौसम जो है इसमें सर्दी खांसी मतलब ये है क्या बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा संक्रमित हो गया है अभी।
0: हाँ
1: तो भाई सर्दी खांसी के साथ हम लोग गाना भी सुनते चले।
0: हाँ जी बिल्कुल।

0: देखो भाई, हम लोग स्वस्थ रहेंगे, रोगों से
1: दूर
0: कम
1: रहेंगे
0: दूर रहेंगे,
1: जी,
0: तो हम लोग घूमने फिरने जा सकते
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: अगर स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारा घूमने का भी मन करेगा, है ना?
0: हाँ, तो आज कहाँ आप घुमाने ले जा रहे हो, कहाँ का
1: बिल्कुल
0: बताने वाले हो?
1: जी, तो हम अपने श्रोताओं को आज ले चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्ली जिले में स्थित मणिकर्ण।
0: अच्छा,
1: ऐसी जगह है जहाँ बार बार जाने का मन करेगा, और यहाँ का मुख्य आकर्षण है लगभग 5,800 फीट की ऊंचाई पर सदियों से बहती पार्वती नदी, जो पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है। हाँ,
0: और जो है पहाड़ों पर फैली हरियाली, नीले आसमान तले घाटियों के बीच बहते पानी का आकर्षण कभी कम नहीं होगा। गाड़ियों और लोगों की भीड़ हो, थका देने वाला जाम हो, या क्या फर्क पड़ता है, असली चीज है घूमने का मजा। सच में ये मौसम जो है, गर्मी के मौसम में तो यहाँ बर्फ को देखना, उसे छूना, कहीं भी खड़े होकर फोटो खिंचवाना, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित मणिकर्ण ऐसी ही जगह है जहाँ बार बार जाने का मन करता है।

0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ का मुख्य आकर्षण है लगभग 5,800 फीट की ऊंचाई पर सदियों से बहती पार्वती नदी, जो पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है। नदी का खिलंदर पानी बर्फ की मानिंद ठंडा, और इसी के पड़ोस में उबलते जल के स्रोत भी हैं जो नदी के साथ खेलते रहते हैं, और ठंडा और गर्म जल का कुदरती मिलन सभी को हैरान करता है। पानी में गंधक और अन्य रेडियोधर्मी तत्व मिले हुए हैं जो अनेक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, इस कारण भी यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं।
1: और मणिकर्ण में घुमक्कड़ी के दौरान सुंदर पेड़ पौधों के साथ साथ अनेकों रंगों की मिट्टी के सम्मिश्रण से रची लुभावनी पर्वत श्रृंखलाओं के दृश्य मानस पटल पर छप जाते हैं। कैमरा यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पर्यटकों के कलात्मक प्रतिभा इस यात्रा को यादगार बनाने में उनके मित्र बन जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और जो मणिकर्ण अन्य दिलकश पर्यटक स्थलों का आधार स्थल भी है। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर ब्रह्म गंगा है, यहीं पार्वती नदी व ब्रह्म गंगा मिलती है। यहाँ जो है आपको
1: वो कुदरत का खुला दीदार हो मतलब कर
0: देख
1: सकते
0: सकते
1: हैं।
0: हैं।
1: हाँ
0: हाँ
1: सच में नारायणपुरी, राक्षट, बरसेनी और पुलगा जा
0: जा सकते
1: सकते
0: हैं।
1: हैं।
0: पवित्र स्थल रुद्रनाथ लगभग 8,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है, और मणिकर्ण से लगभग 25 किलोमीटर दूर अनुमानतः 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित खीर गंगा भी गर्म जल स्रोत के लिए जानी जाती है, और यहाँ से पांडव पुल जो है 45 किलोमीटर की दूर पर स्थित है।
1: और इस क्षेत्र में जहाँ चाहे रुककर आप गाना का भरपूर आनंद ले सकते हैं और मनोरम प्रकृति का भी आनंद ले सकते हैं।
0: तो
1: तो
0: बिल्कुल जो मौसम है हम
1: जब भी
0: अपने
1: मौका मिले अपना प्रोग्राम बनाइए और गीत संगीत सुनते चलिए।
0: बिल्कुल।

0: अमृता, चलते चलते चलते हैं खेल की दुनिया में और
1: हाँ,
0: बता दें कि लॉर्ड्स में महिलाओं का पहला टेस्ट इंग्लैंड हारा, भारतीय महिलाओं की लॉर्ड्स फतह।
1: जी, ये तो बहुत बड़ी खबर है। 142 साल लगे महिला टेस्ट आयोजित करने में, है ना?
0: हाँ, ऐतिहासिक लॉर्ड्स ग्राउंड पर 1884 में पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की पुरुष टीमों के बीच खेला गया था। यहाँ पहला महिला टेस्ट मैच होने में 142 साल लग गए, जो 10 जुलाई से खेला गया था।
1: हाँ, और जो 270 रन से हराया भारत ने, और रन के लिहाज से टेस्ट में भारत की दूसरी जीत है। इसके पहले इंग्लैंड को ही 347 रन से हराया था।
0: तो ये तो है भाई, भारतीय महिला टीम ने इतिहास रचते हुए लॉर्ड्स पर आयोजित पहला महिला टेस्ट रिकॉर्ड 270 रन से जीत लिया है, और 757 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की दूसरी पारी सिर्फ 186 रन पर सिमट गई। भारतीय टीम बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में मेजबान टीम पर भारी पड़ी।
1: हाँ,
0: तीन लोगों को देते हैं शाबाशियां, शुभकामनाएं, ऐसे ही उन लोग आगे बढ़ते रहें।

0: विनीता, अब तो हम लोग का समय भी होते समाप्त हो रहा है
1: जी, बिल्कुल।
0: ऐसे में बस दोस्तों को सबको यही कहना चाहेंगे कि भाई मौसम को देखते हुए अपना स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिए, खाते पीते अच्छे से घूमिए फिरिए, मस्ती कीजिए, मतलब किसी चीज का गुंजाइश मत रखिए कि ये चीज नहीं कर पाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जीवन जो है एक बार मिलता है तो अपने जीवन को भरपूर जिए और खुशी से जिए। अगर किसी प्रकार का आपको तनाव हो या किसी प्रकार का दुख हो तो उसे आप दूर करें और जो जिसमें आपको खुशी मिलती है।
0: हाँ, किसी का गिले शिकवे लेकर बहुत आगे तक नहीं चलना चाहिए। जो है बस वहीं तक सुन ले और बस हो गया, ठीक है कहते हुए आगे बढ़ें। मन में दुराभाव नहीं रखें और इसी सब अच्छे विचारों के साथ इस कार्यक्रम से, जोहार रांची कार्यक्रम से रेणु
1: और अमृता को दे इजाजत। आप सभी को हमारी ओर से
0: नमस्कार,
1: नमस्कार, जोहार, जोहार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आप ये प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। दोस्तों आइए अब सुनते हैं आपके पसंदीदा गीत कार्यक्रम आपकी पसंद में। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। स्वर है उदित नारायण और अलका याग्निक के, बोल लिखे हैं महबूब ने और धुन बनाई है इस्माइल दरबार ने। इस गीत को सुनना चाहा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नवेदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय।

दोस्तों कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म चुपके चुपके से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, संगीतकार हैं एसडी बर्मन और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। इस गीत को सुनना चाहा है बड़ा बॉम्बे सुपाई साई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश ताती, ललित प्रधान और देवेन जी, चक्रधरपुर गोलिया लोहार से कोमल बेसरा, बासंती बनमाली, सिद्ध कुमारी, पूजा, अनु। तो आइए सुनते हैं इन सबों के फरमाइश पे ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा की। श्रीमती विमला देवी जैन, श्री हरक चंद्र जैन, स्टील ट्रेनिंग कॉरपोरेशन, सेवा सदन रोड, रांची, बिहार से। और इन सबों ने फरमाइश की है दोस्तों फिल्म लव स्टोरी की इस प्यारे से गीत की, जिसे गाया है अमित कुमार और लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

दोस्तों अगली फरमाइश आई है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय की, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा निवेदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय की। और ये सारे लोग सुनना चाहते हैं फिल्म नाम का ये प्यारा सा गीत पंकज उदास के स्वर में। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: पड़े भारतीय सेना।
1: दोस्तों, इसी के साथ हमारा कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: नमस्कार बहनों, स्वागत है गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में। आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, रोज़ाना की तरह हम लीजिए हाजिर हैं। मैं महजबिन और आजा हमारे साथ है एक और रेडियो सखी।
1: मैं हूँ शिल्पी। बहनों नमस्कार। तो इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो गई, क्योंकि इस आधे घंटे के सफ़र में हमें बहुत सारी बातें करनी हैं आपसे। तो चलिए कार्यक्रम की हम आज शुरुआत करते हैं।
0: बहनों, चाहे परिवार हो या घर, महिलाओं की अहमियत सर्वोपरि होती है। वो न केवल परिवार की भावनात्मक नींव होती हैं, बल्कि घर की व्यवस्था, बच्चों की परवरिश के साथ साथ घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरकर घर को स्वर्ग बनाती हैं।
1: क्या बात कही मैजविन आपने। यही नहीं, घर को एक सूत्र में बांधकर भी रखती हैं, और सुबह से लेकर रात तक बिना थके बिना रुके सभी का, यानी घर के बड़े का, बुजुर्ग का, सबका ध्यान रखती हैं। लेकिन भाई, हम तो यही कहेंगे मैजवीन कि सबका ध्यान बहनों रखिए, लेकिन साथ साथ अपने आप का भी ध्यान रखिए।
0: हाँ, महिलाएं अपनी जिंदगी में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी नहीं रख पाती हैं, यहाँ तक कि जब तक वो बीमार ना हो जाएं। ये तो बात सही है शिल्पी, क्योंकि बहनों, हम आपकी जो आपको इसकी नौबत ना आए, इसके लिए हम कुछ टिप्स से आपको बताएंगे। आज बहुत सारी बातें होंगी कि आप अपना ध्यान किस तरह से रख सकती हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति किस तरह से जागरूक हो सकती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं को मैजबिन परिवार की धुरी कहा गया है। महिलाएं स्वस्थ हैं तो परिवार स्वस्थ। तो बहनों, आइए जानते हैं कि वो कौन सी बात है। सबसे पहले तो आपको हम कहेंगे कि आप जागरूक बनिए और स्वास्थ्य के प्रति आप सतर्क रहिए। शारीरिक, मानसिक और प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति आपको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए नियमित जाँच, संतुलित पोषण और बीमारियों के शुरुआती जो लक्षण होते हैं उसे आप पहचानिए। कुछ भी ऐसा लगता है बहनों कि आपके शरीर में कुछ थकावट लग रही है, नींद अधिक लग रही है, या काम करने का मन नहीं कर रहा है, थका थका लग रहा है, तो सबसे पहले आप है कि आप अपनी जांच कराइए।
0: बहनों, यहाँ पे जो कहा गया है कि बीमारियों की शुरुआती लक्षणों की पहचान, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, वो सिग्नल देता है कि आपको यहाँ पे तकलीफ है, आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है, आप अपने आप को यहाँ पे ध्यान दें। कुछ गंभीर बीमारियों की भी सही जानकारी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गंभीर बीमारियों में जैसे कि हम सर्वाइकल कैंसर, स्तन कैंसर, एनीमिया और PCOD, ये जैसे भी समस्याओं से बचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही जानकारी का होना और समय समय पर चिकित्सा से मशवरा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप इन बातों का ख्याल रखती हैं तो इन बीमारियों से भी बच सकती हैं, क्योंकि ये बीमारियाँ थोड़ी मतलब गंभीर मानी जाती है।
1: बिल्कुल, इसलिए बहनों, नियमित जांच में एक्सपर्ट के अनुसार कहा जाता है कि 21 वर्ष की बाद के बाद सर्वाइकल कैंसर की जांच, 30-35 वर्ष के बाद नियमित रूप से सुगर, ब्लड प्रेशर और बहुत तरह की जो होती है किडनी का, लीवर का फंक्शन जो भी होता है, इन सब चीज़ों की जाँच समय समय पर आप करवाती रहें, ये बहुत जरूरी है आज के समय में।
0: हाँ बहनों, इसके अलावा आप स्तन कैंसर की जांच खुद से, यानी स्वयं जांच इन्हें कर सकती हैं। एनीमिया से बचाव कभी हो सकता है, हार्मोनल संतुलन, मानसिक स्वास्थ्य, इन सारी बातों का भी ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ना, आपको ज़्यादा थकाती हैं, आपको ज़्यादा बीमार करती हैं। बहनों, आपको थोड़ी सी आप जो आपकी जो जागरूकता है, अगर आपने जागरूक और सततता से काम लिया ना, तो इन गंभीर बीमारियों से आप बच सकती हैं। और हाँ, आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही गंभीर परिणाम को जन्म दे सकते हैं, इसलिए आप सभी अपना ख्याल रखें और समय समय पर आप अपना खुद का ध्यान रखें, अपने का और अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवार के लोगों का भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आप सबका ख्याल रखेंगे और आप अपना खुद पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही हैं।
1: बिल्कुल, मैजविन की बात बहुत सही है बहनों, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं सब काम करती हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा, सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन जब बारी अपनी आती है ना मैजविन, तो कहीं ना कहीं अपने आप स्वास्थ्य को अनदेखा कर लेते हैं। लेकिन बहनें ये नहीं जानती कि वो खुद अपने घर की रौनक है, तो इस रौनक और जगमगाते जो घर है, खुशियों को बरकरार रखें और खुश रहें। और खुश रहने के लिए एक बात और है कि भाई, आपके जो भी मनपसंद गीत है, आप उसको काम करते समय गुनगुनाते रहिए।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बहनों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और मैं ज़ेबीन, आज कार्यक्रम में आगे क्या है बताइए।
6: बहनों, समय है अब आपको मेहमान से मिलवाने का, और बातचीत का विषय है बरसात में संक्रमण का खतरा और बचाव जरूरी है। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर आकाश अम्बास्था, और इनसे बातचीत कर रही है हमारी रेडियो सखी शिल्पी सिन्हा।
7: बारिश की रिमझिम फुहारें जहां धरती को हरियाली की चादर ओढ़ा देती है, तो उसकी बूंदें हमें भी बचपन की कई यादें दिला देती है। गली मोहल्ले में कागज की नाव बनाकर पानी में बहाना, उसे घंटों निहारना, जानबूझकर भीग जाना, छाता न होने का बहाना बनाना, फिर घर आकर सर्दी बुखार, बड़े बुजुर्गों की सलाह न मानने का नतीजा होता है। याद है ना सखियों, बारिश अपने साथ कई तरह की बीमारियों का खतरा भी लेकर आती है। यानी यह मौसम जितना सुहावना होता है उतना ही सतर्क रहने का इशारा भी करता है। जगह जगह जमा पानी, गंदगी, मच्छरों की संख्या इस मौसम में बढ़ जाती है, और इसका नतीजा है कि वायरल बुखार तेजी से बढ़ने लगता है लोगों के बीच, यानी कि संक्रमण का खतरा ज्यादा हो जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि थोड़ी सी सावधानी और साफ सफाई की आदत अगर हम अपनाएं तो इन बीमारियों से अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। और आज हम जानेंगे कि बरसात के मौसम में क्या क्या सावधानियां बरतें, किन किन उपायों को हम करें ताकि हम स्वस्थ रहें। और आज हमारे साथ इन्हीं सब विषय के लिए जुड़े हैं एक खास मेहमान, आप हैं डॉक्टर आकाश। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। नमस्कार
8: जी। नमस्कार
7: सर। सबसे पहला सवाल है कि बरसात के मौसम में सबसे अधिक कौन कौन सी बीमारियां फैलती है?
8: जी, एक्चुअली होता क्या है कि समर्स के बाद जब रेनी सीजन आता है तो सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चिलचिलाती हुई गर्मी से राहत मिलता है हमें, पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, वेदर में अचानक से एक बदलाव आता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे ये चेंजेस आता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पानी जगह जगह पर जमने लगता है, जहाँ पर अच्छा ड्रेनेज ना हो, जहाँ पर अच्छा नुकसान निकास ना हो, मच्छर उसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा पनपने लगते हैं, कोई भी घर में रखी हुई चीज़ें जल्दी से ख़राब होने लगती हैं, हमारे बॉडी में कई तरह के बदलाव भी आते हैं, हमारा इम्यूनिटी तुरंत उसे अडाप्ट नहीं कर पाता है।

0: जिसके कारण कुछ हमारी बीमारियां होती हैं जो बहुत कॉमन है रेनी सीजन में होना, जैसे कि डेंगू। हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि डेंगू फीवर बहुत ही आसानी से फैलने लगता है लोगों में। पहले एक केस, फिर दो केस, फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते कई लोग आने लगते हैं। मलेरिया के केसेस आते हैं, चिकनगुनिया भी हो रहा है आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा। एक और बीमारी जो आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल रही है वो लिप्टोस्पिरोसिस के नाम से जानी जाती है। टाइफाइड होता है क्योंकि खाने पीने की चीज़ें हैं, वाटर कंटामिनेशन होता है, हैज़ा होता है, वायरल फीवर होता है लोगों में। हेपेटाइटिस ए बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, इन्फ्लुएंजा भी कॉमन होता है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए एक ऐसी बीमारी है जो कि वाटर के कंटामिनेशन से होती है, इसीलिए फीवर और रूट से ये फैली जाती है। ये सारी बीमारियाँ देखने को मिलती हैं।
1: सर, आपने कही कि बहुत सारे मच्छर भी अभी हो जाते हैं, तो मच्छर से बचाव के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए ताकि हम मच्छर से कटने वाले जो काटने वाली बीमारी है उसे हम बच पाएं?
0: जी, मच्छर से बचने का जो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो हम अपने घर पे तरीके कर सकते हैं वो हम क्या कर सकते हैं कि मच्छरदानी का प्रयोग, जो बहुत बेसिक सी बात है, अगर हम मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे तो हम मच्छर से बच सकते हैं घर के अंदर। हम ऐसा करते हैं कि हमें समझ में आदत हो जाता है छोटे छोटे कपड़े पहनने का, स्लीवलेस पहनने का, शॉर्ट्स पहनने का, लेकिन हम क्या करें, रेनी सीजन में थोड़ा फुल स्लीव्स पहने, शर्ट पहने, जीन्स पहने, जो पैर पैंट्स पहने जो पैंट को ढक सके। मच्छर भगाने का बहुत सारा ऐसा जो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम आती है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें DET ये सब होता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है। कहीं भी वाटर को जमने ना दे, मतलब वाटर स्टैग्नेशन ना होने दे। कोई भी बहता पानी कभी भी मच्छर का घर नहीं होता, लेकिन कोई भी जमा हुआ पानी वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। कूलर में पानी को ना जमने दें, गमलों में, आपके घर में बालकनी में गमले रखे हुए होते हैं वो सब पे ना, टायर पे, गाड़ियों पे, ये सब पे पानी ना जमने दें। खिड़की और दरवाजों में जाली का प्रयोग ज़रूर करें। अगर आपके घर में ये नहीं है तो इसको आप ज़रूर से यूज़ करें, इससे आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। आप कमरे में स्प्रे कर सकते हैं रात को सोने से पहले, शाम के टाइम में। मच्छर भगाने के जितने भी उपकरण आते हैं आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ है वो है कि आप अपने दरवाजे खिड़की को शाम के पहले बंद कर ले, ताकि वो मच्छर आपके घर के अंदर ना आए।
1: जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। और सर, एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि दूषित पानी और भोजन से होने वाली बीमारी जो होती है उससे हम कैसे बचें, क्या उपाय करें ताकि मतलब इन बीमारी से हम बच पाएं?
0: जैसा कि मैंने बताया कि टेम्परेचर चेंज होने से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो जो खाना और पानी है उसको कभी भी ओपन ना रखें, उसको हमेशा ढक करके रखें। अगर आपको बाद में थोड़ा खाना है, पर जो प्रायोरिटी चीज़ होती है वो होता है कि हमेशा रेनी सीजन में फ्रेश खाना खाएं, फ्रेश खाना बनाएं, फ्रेश खाना खाएं। गर्मियों के टाइम में ऐसा होता है कि हम ज़्यादा फ्रिज का यूज़ करने लगते हैं कि कुछ भी खाना बचा चलो फ्रिज में डाल दो, उसको फिर नेक्स्ट टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा रेनी सीजन में ना करें, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण वो खाना जल्दी से कंटामिनेट हो जाता है। इसीलिए आप फ्रेश खाना बनाएं, फ्रेश खाना खाएं, कुछ भी चीज़ को खुला ना छोड़ें। खुला रखने से उसमें मच्छर या कोई भी तरह का कीड़ा या कुछ भी ऐसा चीज़ जा सकता है जो कि आपको हानि कर सकता है। स्ट्रीट फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो किस तरह से बनाया गया है, कि ऐसा कितने देर का है वो ऐसा। और उबला हुआ खाना या फिल्टर किया हुआ पानी ज़्यादातर खाएं, पिए। फिल्टर किया हुआ पानी ज़रूर पीना चाहिए, और थोड़ा लाइट फूड खाना चाहिए इस टाइम हमें, ताकि वो हमारे पेट पे ऐसा हानि ना करे या जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो।
1: जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि आम लोगों में देखा जाता है आजकल कि स्ट्रीट फूड बहुत खाते हैं लोग। सर, बच्चों और बुजुर्गों को बरसात में किन विशेष सावधानियों की जरूरत होती है, क्योंकि इस मौसम में संक्रमण होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसके बारे में कुछ थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपसे।
0: जी, बहुत अच्छी सवाल आपने करी। एक्चुअली होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े होते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है कि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। उन बच्चों में ये होता है कि उनकी इम्यूनिटी उतनी डेवलप नहीं होती है, और बूढ़ों में ये होता है कि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है एज के कारण। तो उनमें हम ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि उन्हें हम कोई ऐसी चीज़ें ना दें जिनके कारण उनको हानि हो सकता है। जैसे कि हमें ठंडा पानी पीने की आदत होती है समर्स के टाइम, तो वो धीरे धीरे उसको चेंज आप कर दे कि वो जैसे ही वो रेनी सीजन आ रहा है बच्चों को थोड़ा सा नॉर्मल पानी दे, उबला हुआ पानी दे। अगर वो बाहर जा रहे हैं तो उनको कोशिश करें कि आप फुल कपड़े पहना करके भेजें, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस रेनी सीजन में, तो मच्छर के काटने से भी जो बीमारी होंगी वो तो होंगी। अगर मौसम अचानक से बदलाव आ गया, अगर कहीं पर तेज हवा चलने लगी, बारिश चलने लगी, तो उनकी वजह से उनको वायरल हो सकता है। और ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आप घर में हैं तो आप घर में शाम के वक्त उनको काढ़ा दे सकते हैं। काढ़ा में आप अदरक, गुड़, ये सब का प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी, तुलसी पत्ता, ये सब खाने से उनका इम्यूनिटी और स्ट्रांग बनेगा और उनको बाहर जाने के टाइम उतना खतरा नहीं होगा। और बच्चों के लिए भी आप ये सब ख्याल रख सकते हैं कि बच्चों को फ्रेश चीज़ें दें, फ्रूट्स ज़्यादा खिलाएं इस सीज़न में, और वो जब भी बाहर जाएं तो उनका खास ध्यान रखें कि वो ज़्यादा धूल मिट्टी वाली जगह पर, ज़्यादा गंदे पानी वाले जगह पर, ऐसा जगह पर ना खेलें।
1: जी सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। सर, आपने खान पान के बारे में तो बताया, लेकिन जानना हम चाहेंगे कि बारिश के जो मौसम में खान पान कैसा होना चाहिए, मतलब किस तरह का आहार लेना चाहिए, चाहे हमारे बड़े हों घर में या छोटे बच्चे। खान पान के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए।
0: जी शिल्पी जी, ऐसा रेनी सीजन में करना चाहिए। मज़ा तो सबको आता है फ्राइड फूड खाने में, पकौड़िया खाने में, लेकिन इस मौसम में थोड़ा सा ये सब चीज़ों को अवॉइड करें, थोड़ा कम खाएं। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही बंद कर सकते ये सब चीज़ें, हमारा इंडियन पैलेट ये सब चीज़ के लिए बहुत आदी हो रहता है। इसीलिए आप अगर खा भी रहे हैं पकौड़ियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें, तो कोशिश करिए उनको आप घर पर बनाएं, फ्रेश बनाएं, फ्रेश खाएं। हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए रेनी सीजन में, क्योंकि हल्दी बहुत ही ज्यादा इम्यूनिटी बूस्ट करता है आपकी। अदरक अगर आपके घर में यूज होता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। जो भी खाना बनाए उसको उसमें कोशिश करें कि जो तेज वाले मसाले होते हैं वो कम कम कर दे, और जो इम्यूनो प्रोटेक्टिव मसाले हैं उनको ज्यादा इस्तेमाल करें। आप लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अदरक लहसुन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो तेज वाली चीजें उनका कम इस्तेमाल करें। अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि स्टीम फूड खा सकते हैं तो आप स्टीम फूड भी ले सकते हैं, बॉईल करके खा सकते हैं, उसमें नमक काली मिर्च डाल करके खा सकते हैं। काली मिर्च बहुत ही अच्छा वो होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो खांसी में इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। और कोशिश करें कि रेनी सीजन में हमेशा ताज़ा खाना पकाएं, बिना फ्रिज में डाले खाएं और उनको जल्दी से इस्तेमाल कर लें।
1: सर, यदि किसी को बुखार या अन्य लक्षण दिखाई दे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये बताइए।
0: जी, ऐसा कहा जाता है हमारे मेडिसिन में कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप अपनी कोई भी बीमारियां होने से पहले ही चेतावनी से उसको देख रहे हैं, उसको आप वो केयरफुल हैं, तो वो आपको नहीं होंगी। अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जैसे कि गले में खराश आना, थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाना आपका, या हेडेक होना, तो कोशिश करें कि पहले अपने जो घर के जो चीज़ें होती है इम्यून बूस्टर उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि जो होता क्या है, रेनी सीजन के टाइम में मैक्सिमम चीज़ें वायरल होती हैं, तो बैक्टीरिया के ना होने से आप एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते, वो आपके ऊपर काम नहीं करेगा। इसीलिए उससे हॉस्पिटल जाना तभी अच्छा है, उससे पहले आप घर के जितने उपाय हो सकते हैं वो कर ले। आप घर में काढ़ा बना करके पी सकते हैं, आप रात को हल्दी दूध पी करके सो सकते हैं, आप स्टीम ले सकते हैं। स्टीम लेना आपके कंजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आप उबाले हुए आलमंड्स को खा सकते हैं, 10-12 आलमंड्स खा ले, हेडेक आपका कम हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें हो सकती है। अगर आपको बुखार है तब आप स्ट्रॉन्ग काढ़ा बना करके पी सकते हैं, चाय का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो आपको अच्छा राहत दे, ग्रीन टी में करने का मतलब है। और ये सारी चीजें आप घर में कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वो 3 दिन 4 दिन के बाद भी वो लक्षण आपके अंदर हैं, वो रह रहे हैं, तो आप जरूर डॉक्टर को विजिट करें और अपने सिम्टम्स बताएं, और वो उस हिसाब से वो आपका इलाज करेगा। और मैक्सिमम बीमारियां जो इस टाइम में होती है वो 1 वीक के अंदर रिजॉल्व हो जाती है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। जरूरी हॉस्पिटल जाए और अपना ट्रीटमेंट कराएं और सारे सिम्टम्स को ध्यान में रख करके काम करें।
1: सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज बहुत अच्छे तरीके से आपने जानकारी दी। उम्मीद है हमारी सखियां इसे सुन रही होंगी, और अगर ऐसा करेंगी तो निश्चित है उन्हें लाभ होगा। और हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि इस बरसात में सतर्क रहेंगे, जैसा कि सर ने कहा, और उनकी बातों को बहनें अगर पालन करेंगी और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगी तो बरसाती बीमारियों से और संक्रमण से खुद को और अपने परिवार

0: को हम सुरक्षित रख सकते हैं। सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारी सखियों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ।
1: जी, आपको भी थैंक यू।
2: बहनों, अभी आप सुन रहे थे ये बातचीत, बरसात में संक्रमण का खतरा और बचाव जरूरी है। हमारे आज के मेहमान थे डॉक्टर आकाश अम्बास्ता। हमारी और जो हमारी मेहमान से बातचीत कर रही थी हमारी रेडियो सखी शिल्पी सिन्हा। तो बहनों, अब सुनते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: पहनो फिर से स्वागत है गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में। और आज हम आपको जानकारी के तहत बताएंगे कि बारिश के दिनों में त्वचा और बालों का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए। बरसात में नमी और प्रदूषण की वजह से बाल जो रुखे और त्वचा संबंधी बहुत सारी समस्या होती है, जिससे कि इन्फेक्शन और ये भी हो सकता है कि इन्फेक्शन के साथ साथ रूसी भी हो सकती है। तो आइए हम बालों और त्वचा के ये कुछ जो बातें जानकारी दे रहे हैं उनको ध्यान में रखें ताकि आप इस बारिश के मौसम में होने वाली परेशानियों से बच सकें।
1: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि बहनों की बारिश में आप बाल को गीला ना होने दें, क्योंकि ये भी कारण होता है ना कि जब बाल भीग जाते हैं तो ज्यादा टूटते हैं। और माइल्ड शैम्पू का आप उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा।
0: और त्वचा के लिए जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। बहनों बरसात में डैंड्रफ की समस्या बहुत ज्यादा होने लगती है। शैम्पू के साथ साथ आप त्वचा का भी ध्यान रखें, बालों का भी ख्याल रखें।
1: बिल्कुल, तो और हमारी जो बहनें हैं ना बाल को लेकर काफी मतलब सजग रहती हैं, तो भाई सजग रहेंगी। और इसी के साथ अब हम भी सजग होते हैं अपने कार्यक्रम के प्रति और बताते हैं कि आज प्रस्तुति थी गौरव पांडे की और इसी के साथ अपनी सखी शिल्पी
0: और मह जमीन को दे इजाजत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं फिल्म मन का ये गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में। रचना समीर की है और धुन बनाई है संजीव दर्शन ने।

दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म कयामत से कयामत तक से, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। संगीतकार हैं आनंद मिलिंद, रचना मजरू सुल्तानपुरी की है।

दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म मैंने प्यार किया से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। संगीतकार हैं राम लक्ष्मण और गीत के बोल लिखे हैं देव कोहली ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: せえな。
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है रविंद्र जैन ने, रचना है हसरत जयपुरी की।

दोस्तों कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं फिल्म एक दूजे के लिए से। इस गीत को गाया है एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर ने। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रचनाकार हैं आनंद बख्शी।

दोस्तों, इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए आपको ले चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन पाएंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार बस कुछ ही पलों में।

0: भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा है, हो गया है कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया।

तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। यह समझौता भारत और ब्रिटेन के रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्ध लाने की। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा एक अदालत द्वारा आम पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के तीन पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। वियतनाम के फोकवोक द्वीप के पास हुई स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कुनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जर्डन भूमध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े दो टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुस जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
1: India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, "The world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever."
2: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
1: India participated in the second ministerial meeting of the Palestine donor group in Brussels yesterday. Addressing the meeting, Secretary in the Ministry of External Affairs, Sri Priya Ranganathan, emphasized that India has been a long-standing partner of the Palestinian people. She underlined India's ongoing developmental assistance, including capacity-building programs and humanitarian assistance to the people of Palestine. Ms. Ranganathan noted that India's projects are demand-driven and largely centered on healthcare, education, capacity-building, and vocational training. The United States launched strikes on Iran for the third consecutive night, marking a new escalation in the resumption of hostilities. The U.S. military's Central Command said it struck areas around Abu Musa, Bandar Abbas, Bushehr, Chabahar, Jask and Konarak, targeting Iranian coastal defense systems, missile and drone sites, and maritime capabilities. Iran acknowledged the strikes but did not report any casualties or damage. Iran responded with attacks targeting Bahrain, Jordan, and two tankers associated with the United Arab Emirates traveling through the strait, killing one mariner and injuring eight others. In men's cricket, the Indian team will take on hosts England in the first one-day international of a three-match series in Birmingham at 3:30 p.m. today. In FIFA World Cup, France will take on Spain in the first semi-final at Dallas Stadium in Texas, U.S. tonight. France reached the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the quarter-finals, while Spain advanced with a hard 4-1 victory over Belgium. Domestic equity benchmark indices did lower today, tracking weak global markets after a sharp rebound in crude oil prices to $85 per barrel mark amid escalating tensions in West Asia. And with that, we end this news bulletin.
3: Akashvani Ranchi se prastut hai pradeshik samachar. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 दिनों के अंदर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग को कार्यरत करने का दिया निर्देश। बीआईटी सिंदरी बनेगी यूनिटरी यूनिवर्सिटी। लोहरदगा के आवासीय विद्यालय में सर्पदंश की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। एसआईआर अभियान में पश्चिमी सिंहभूम की बीएलओ अनीता देवी और विजय लक्ष्मी ने गणना प्रपत्रों का किया 100% डिजिटाइजेशन, बनी उत्कृष्ट बीएलओ। झारखंड के पूर्व मंत्री मन्नान मलिक का निधन, राजनीतिक जगत में शोक की लहर, मुख्यमंत्री ने व्यक्त की शोक संवेदना। और मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में बोकारो, गिरिडीह समेत कई जिलों में बादल गर्जन वज्रपात के साथ बारिश का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगले 15 दिनों के अंदर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग को कार्यरत करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने हायर एजुकेशन और रोजगार परक कोचिंग के लिए 15 दिनों के अंदर कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी को पूर्ण रूप से कार्यरत करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही बीआईटी सिंदरी को यूनिटरी यूनिवर्सिटी के रूप में अपग्रेड करने के लिए सहमति दी गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि चाईबासा और सारंडा क्षेत्र के विकास के लिए पिछले 10 वर्षों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत लगभग 3,700 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी राशि मिलने के बावजूद भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण खनन प्रभावित क्षेत्रों में अपेक्षित विकास

0: नहीं हो सका। श्री मरांडी ने कहा कि इन क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
1: जिस क्षेत्र में खदान का इलाका होता है वहाँ लोग एक प्रकार से नरकीय जीवन जीने को विवश होते, लेकिन नारंडा की इस आयरन और खदान से सिंहभूम के डीसी के खजाने में डीएमएफटी पर 3700 करोड़ से अधिक रुपया इकट्ठा हुआ। सब जगह सड़कें अच्छी हो जाती, सब जगह लोगों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध हो जाता, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस बनते।
0: झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार कल दुमका के सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और विश्वविद्यालय की शैक्षणिक तथा प्रशासनिक स्थिति की समीक्षा करेंगे। साथ ही कुलपति, कुल सचिव एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं और लंबित कार्यों की प्रगति की जानकारी लेंगे। लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड स्थित आवासीय विद्यालय में 4 छात्राओं के सांप काटने और 1 छात्रा की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले की बूथ लेवल अधिकारी अनीता देवी और विजय लक्ष्मी ने क्षेत्र के सभी गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस उपलब्धि के साथ उनका नाम राज्य के बेहतर प्रदर्शन करने वाले बीएलओ की सूची में भी शामिल हो गया है। चक्रधरपुर की बीएलओ विजय लक्ष्मी ने बताया कि एसआईआर कार्य में 100% लक्ष्य हासिल करने में सबका सहयोग मिला। वहीं अनीता देवी ने अन्य बीएलओ से भी निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने का आह्वान किया।
2: बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत मेहनत भी किया लेकिन मेहनत करने में उतना ही आनंद भी आया। पूरे जनता का भी, पूरे वोटर का भी सपोर्ट रहा, उनके सहयोग से भी हम लोग 100% का हो पाया। अभी जिनके माता पिता का हो रहा है आगे उनके बच्चे के लिए फायदा होगा।
0: झारखंड पुलिस ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सहयोग से रांची के होटवार स्थित अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय में अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय विशेष अनुसंधान प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रशिक्षण में जिला पुलिस, एटीएस और अन्य इकाइयों के 45 अधिकारी प्रभावी अनुसंधान और अभियोजन की बारीकियां सीख रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन आईजी प्रशिक्षण ए विजय लक्ष्मी ने किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन्नान मल्लिक का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और रांची के एक निजी अस्पताल में इलाजरत थे। उनके निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। दुमका में युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में 1 दिवसीय प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। प्रभारी प्राचार्य शंकर हाजरा ने बताया कि इस दौरान युवाओं को प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना, पंजीकरण प्रक्रिया, उद्योग में प्रशिक्षण के अवसर तथा रोजगार की संभावनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। जमशेदपुर पुलिस ने ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार के खिलाफ सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में छापेमारी की। इस कार्रवाई में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने इसकी जानकारी दी।
3: इंदिरा नगर क्षेत्र, मुंबई इंदिरा नगर क्षेत्र में कुछ लोगों को ब्राउन शुगर के साथ में गिरफ्तार किया गया। इनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक है भारती केबरतो, दूसरे हैं विशाल केबरतो और एक बालक है जो 18 वर्ष से कम उम्र का है, तो उसको नियुक्त किया गया है। 2 लोग हैं, उनका आपराधिक इतिहास है। इसमें टोटल 38 पुड़िया मादक पदार्थ इनके पास से बरामद किया गया।

0: सीआईएसएफ कोयला क्षेत्र करगली रांची के उप महानिरीक्षक सुमंत सिंह ने करकट्टा जंगल का दौरा कर अवैध कोयला खनन प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को अवैध खनन, कोयला तस्करी और उससे जुड़े नेटवर्क के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखने तथा ड्रोन और अन्य तकनीकी संसाधनों के माध्यम से निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। घरेलू शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक दोपहर के कारोबारी सत्र में नुकसान के साथ काम कर रहा था। सेंसेक्स 356 अंक लुढ़क कर 77,272 पर और निफ्टी 87 अंक घटकर 24,125 पर कारोबार कर रहा था। इधर राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपये प्रति किलो है। विश्व युवा कौशल दिवस को लेकर हजारीबाग में 3 दिवसीय शिल्पोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें 100 से अधिक कलाकारों को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई। खासकर हजारीबाग की लोकप्रिय हजारों साल पुरानी सोहराय कला की झलक देखने को मिली। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि शहर में इन्हें एक बेहतर स्थान भी देना चाहिए ताकि सालों भर इन कलाकारों के उत्पाद बिक सकें।
1: टैलेंट को कमी नहीं, मार्केटिंग का उचित व्यवस्था अगर हो जाए, हमारे जितना भी उद्यमी यहाँ लगे हुए हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जैसे पुराना समरणालय भी रो रहा है, वहाँ बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। धार क्राफ्ट बीमार हो गया है, उसको अगर जीर्णोद्धार करके बढ़िया से उसको बनाया जाए तो वहीं भी इन लोग सारे लोग अपना अगर मार्केटिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर इन लोग का जो स्थिति है वो बेहतर हो पाएगा।
0: और अब मौसम। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में बोकारो, गिरिडीह समेत कई जिलों में बादल गर्जन वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम केंद्र रांची ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 दिनों के अंदर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग को कार्यरत करने का दिया निर्देश। बीआईटी सिंदरी बनेगी यूनिटरी यूनिवर्सिटी। लोहरदगा के आवासीय विद्यालय में सर्पदंश की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। एसआईआर अभियान में पश्चिमी सिंहभूम की बीएलओ अनीता देवी और विजया लक्ष्मी ने गणना प्रपत्रों का किया 100% डिजिटाइजेशन, बनी उत्कृष्ट बीएलओ। झारखंड के पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक का निधन। राजनीतिक जगत में शोक की लहर। मुख्यमंत्री ने व्यक्त की शोक संवेदना। और मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में बोकारो, गिरिडीह समेत कई जिलों में बादल गर्जन वज्रपात के साथ बारिश का जताया पूर्वानुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी। कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार हैं अनीता सेन।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 110.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत में होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
0: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे

0: को निशाना बनाना बंद होना चाहिए ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने पर ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम ज़ोल्फ़ग़ी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो चि मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री

0: ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर चला एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
2: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
3: जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है, आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। यह आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में NIA द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के दो दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ

0: यात्रा से पहले की रस्म पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सस के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता होगा। 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों आइए सुनते हैं फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म बॉर्डर के इस प्यारे से गीत के साथ। आवाजें हैं रूप कुमार राठौर की, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

दोस्तों आइए सुनते हैं फिल्म परदेश का ये प्यारा सा गीत। हरिहरन और शंकर महादेवन, आदित्य नारायण, कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में, संगीत है नदीम श्रवण का, रचना आनंद बख्शी की है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल जलेगा गीत कुमार सानू और आदित्य नारायण के स्वर में। संगीत था अनु मलिक का और रचना जावेद अख्तर की थी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य के कानून व्यवस्था और विकास कार्यों में सुस्ती को लेकर प्रशासन को संवेदनहीन बताया। श्री सेठ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया है कि केंद्र से मिलने वाले फंड के बावजूद राज्य सरकार की उदासीनता के कारण विकास योजनाएं फाइलों में अटकी हुई हैं। रांची ट्रेजरी घोटाले में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा ट्रेजरी अफसरों को क्लीन चिट देने पर भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने इस बयान को जांच प्रभावित करने वाला बताया है।
2: हजारों करोड़ का ट्रेजरी स्कैम हुआ, कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन सिर्फ छोटी मछलियों तक ये जो है जांच पहुंची है। और जो SIT है उसमें उन अधिकारियों को रखा गया जिनके कार्यकाल में SP रहते हुए खुद घोटाले का आरोप लगा। SIT ने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, लेकिन राज्य के वित्त मंत्री ने इन ट्रेजरी अफसरों को क्लीन चिट दे दिया। कहा इनकी संलिप्तता नहीं है, यानी सरकार पहले से निष्कर्ष पर बैठी हुई है।
1: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आगामी 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद चलो विरोध प्रदर्शन करेगी। रांची में प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी डॉ सुधा प्रसाद ने बताया कि पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला आरक्षण को देश में अविलंब लागू करने और परिसीमन की शर्त हटाने की मांग कर रही है।
3: कि अगर आप नारी के इतने हितैषी है, इतने शुभचिंतक है, तो 2023 में ये पारित हो चुका था, इसको आप त्वरित लागू कर दे। आपकी मंशा साफ नहीं है, परिसीमन लागू करना चाह रहे हैं, इसमें BJP अपना स्वार्थ देख रही है, परिसीमन ये अपने हिसाब से कर रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा परिसर में राज्य के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय मन्नान मल्लिक के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कई अन्य मंत्रियों व विधायकों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि

0: दी। सभी नेताओं ने इसे राज्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा के कुड़ू में आवासीय स्कूल में सांप काटने से एक छात्रा की मौत और तीन के घायल होने के मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव से दो हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। घायल तीनों छात्राओं की स्थिति अब खतरे से बाहर है। फुलमनिया उरांव का इलाज रांची स्थित रिम्स में जारी है, जबकि अनीशा और मनीषा का उपचार लोहरदगा सदर अस्पताल में किया गया। पलामू में भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता गणना प्रपत्र का वितरण तेजी से जारी है। अधिकांश प्रखंडों में 94 से 98% घरों तक प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं। वितरण में डाल्टनगंज और डिजिटलीकरण में विश्रामपुर प्रखंड सबसे आगे है। प्रशासन ने मतदाताओं से समय पर प्रपत्र भरने की अपील की है। जमशेदपुर के सदर अस्पताल में अगले महीने से बोन मैरो की जांच पूरी तरह मुफ्त शुरू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से भी सैंपल यहां भेजे जा सकेंगे।
1: कोल्हान के मरीजों को अब बोन मैरो जांच के लिए निजी पैथोलॉजी लैब या बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जमशेदपुर स्थित सदर अस्पताल में अगले महीने ये महत्वपूर्ण जांच सुविधा पूरी तरह से निशुल्क शुरू होने जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भी सैंपल एकत्र कर जांच के लिए सदर अस्पताल भेजे जाएंगे। वर्तमान में इस जांच के लिए मरीजों को 4,000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। साथ ही गंभीर बीमारियों के निदान और उपचार में तेजी आए। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
0: गोड्डा के अंतर्राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट खिलाड़ी देवगन मरांडी भारत नेपाल प्रतियोगिता जीतकर झारखंड लौट आए हैं। नेपाल के खिलाड़ी को हराकर देश का मान बढ़ाने वाले देवगन का उनके गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। सीमित संसाधनों के बावजूद इस बड़ी सफलता को हासिल कर उन्होंने युवाओं को लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में बोकारो, गिरिडीह समेत कई जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम केंद्र रांची ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियां अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानिए की यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात

0: की जाए किताबों की।
1: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
0: जी।
1: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
0: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
1: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
0: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओं, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
1: जी हाँ श्रोताओं, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है।
0: जी,
1: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
0: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
1: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
0: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
1: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
0: जी,
1: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
0: जी जी जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे।
1: जी,
0: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
1: जी जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर।
0: जी,
1: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी?
0: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियां हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
1: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
0: जी,
1: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
0: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
1: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
0: जी,
1: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
0: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियाँ, कहानियाँ और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
1: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है।
1: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा

0: शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
1: यस मैम।
0: आह क्या बात है
2: मैम।
0: हाँ बेटी।
2: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
0: बिल्कुल कहा।
2: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
0: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते? पहाड़ी कहते हैं।
2: जी पहाड़ी।
3: अरे वाह। अच्छा लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
0: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
1: यस मैम।
0: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
1: अच्छा।
0: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
0: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
3: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम,
2: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही हैं।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: हाँ, जी मैम।
2: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
2: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
5: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार,

0: चिड़ी, नील गाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
5: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
4: जंगल के साथी।
6: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
7: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुन।

आती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो।

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ आप सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यू?

0: क्या कुछ खोया है तुम्हारा? क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
1: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
0: क्या तुम मेरे साथी बनोगे? मेरे साथ खेलोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश, छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। पंख फैला कर नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर?
1: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: खरगोश, हिरन और मोर।
1: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
0: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम दत्ता,
4: जगबंधु,
3: चेतना
4: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रांची मेलोडीज। कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के साथ आज मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अमृता। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म जिंदा दिल के इस प्यारे से गीत के साथ। स्वर है उदित नारायण के, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म खुदगर्ज से। इस गीत को गाया है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने, धुन बनाई है राजेश रोशन ने और गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने।

दोस्तों उदित नारायण के स्वर में आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म वीर जारा से। रचना है जावेद अख्तर की और धुन बनाई है मदन मोहन ने।

दोस्तों कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने और शब्दबद्ध किया है आनंद बख्शी ने।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज लोहरदगा के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को एएसडीडी सूची के कड़े सत्यापन और केवल भारतीय नागरिकों के नाम जोड़ने के निर्देश दिए। रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों में सुस्ती को लेकर प्रशासन को संवेदनहीन बताया। श्री सेठ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया है कि केंद्र से मिलने वाले फंड के बावजूद राज्य सरकार की उदासीनता के कारण विकास योजनाएं फाइलों में अटकी हुई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा परिसर में राज्य के पूर्व मंत्री स्वर्गीय मन्नान मल्लिक के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। कांग्रेस पार्टी आगामी 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद चलो विरोध प्रदर्शन करेगी। रांची में प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी डॉ. सुधा प्रसाद ने बताया कि पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला आरक्षण को देश में अविलंब लागू करने और परिसीमन की शर्त हटाने की मांग कर रही है। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सघन पैदल गश्ती की। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुस्लिम बस्ती और एस टाइप कॉलोनी जैसे संवेदनशील इलाकों में दुकानदारों और आम जनता से संवाद किया। रांची में आज अभ्यर्थियों ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के विरोध में आयोग कार्यालय का घेराव किया। आज सुबह छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने प्रश्न पत्र लीक और सीटों की बिक्री का गंभीर आरोप लगाया है। रांची को अतिक्रमण मुक्त बनाने के नगर निगम के अभियान के विरोध में आज फुटपाथ दुकानदारों ने निगम कार्यालय का घेराव किया। दुकानदारों का कहना है कि बिना नोटिस दिए उन्हें उजाड़ा जा रहा है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। प्रस्तुति स्वर है विश्वजीत की। प्रस्तुति एवं संयोजन प्रभु शरण की है।
2: क्रीड़ा जगत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत पात्र और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची का साप्ताहिक खेल कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। खेल की दुनिया हर दिन नए रोमांच, नए रिकॉर्ड और नई चुनौतियों की कहानी लिखती है। आज के अंक में भी हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की खेल जगत की ऐसी बड़ी खबरें जिन पर पूरे खेल जगत की निगाहें टिकी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय टी20 क्रिकेट की। आयरलैंड के बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी टीम इंडिया को व्हाइट वॉश का सामना

करना पड़ा। आखिर लगातार हार की वजह क्या रही? क्या ये सिर्फ खराब फॉर्म है या रणनीति में बदलाव की जरूरत? इस पर होगा तथ्यपूर्ण और संतुलित विश्लेषण। इसके बाद रुख करेंगे बिबल दल 2026 का, जहां महिला वर्ग को नई चैंपियन मिल चुकी है। चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने शानदार प्रदर्शन से इतिहास रचा है। वहीं पुरुष वर्ग के फाइनल पर भी रहेगी हमारी खास नजर। फिर बात होगी फीफा विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल की। विश्व फुटबॉल की चार महाशक्तियां फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अर्जेंटीना फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए आमने सामने हैं। जानेंगे इन टीमों की रणनीति, ताकत, प्रमुख खिलाड़ियों और रोमांचक मुकाबलों की पूरी कहानी। और अंत में चर्चा होगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की। इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट मैच में स्मृति मांदना की शानदार बल्लेबाजी और युवा तेज गेंदबाज क्रांति गौर के दमदार प्रदर्शन ने भारतीय महिला क्रिकेट की नई ताकत का एहसास कराया। इस मुकाबले के साथ साथ आगे की चुनौतियों और संभावनाओं पर भी होगी विशेष चर्चा। तो आइए खेल के इन सभी बड़ी खबरों, रोचक विश्लेषण और दिलचस्प तथ्यों के साथ शुरू करते हैं क्रीड़ा जगत। भारतीय क्रिकेट के लिए पिछले कुछ सप्ताह किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। पहले आयरलैंड जैसी अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाने वाली टीम के खिलाफ T20 श्रृंखला गंवाना और उसके बाद इंग्लैंड के हाथों व्हाइट वॉश, ये सिर्फ दो हार नहीं बल्कि भारतीय T20 क्रिकेट के सामने खड़े गंभीर सवालों की कहानी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाने वाली भारत लगातार लड़खड़ाती नजर आई? आइए तथ्यों और तर्कों के साथ समझते हैं। सबसे पहले बात बल्लेबाजी की। भारतीय बल्लेबाज का दृष्टिकोण आधुनिक T20 क्रिकेट के अनुरूप नहीं दिखा। आज का T20 पहले 6 ओवर्स में मैच की दिशा तय कर देता है। इंग्लैंड जैसी टीम शुरू से आक्रमण खेलती है, जबकि भारतीय बल्लेबाज अक्सर शुरुआत में विकेट बचाने की सोच में फंस जाते हैं। नतीजा ये होता है कि बीच के ओवर्स में रन गति बढ़ाने का दबाव आता है और विकेट लगातार गिरते हैं। दूसरी बड़ी समस्या रही मिडिल ऑर्डर्स की अस्थिरता। हर मैच में अलग अलग बल्लेबाजों से उम्मीद की गई, लेकिन कोई भी लगातार जिम्मेदारी नहीं निभा सका। बड़े स्कोर का पीछा हो या सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना, टीम को ऐसा बल्लेबाज नहीं मिला जो अंत तक टिक कर मैच निकाल सके। अब बात गेंदबाजी की। भारत की गेंदबाजी में सबसे बड़ी कमी डेथ ओवर्स में दिखाई दी। अंतिम 4-5 ओवर्स में लगातार रन लुटे। यॉर्कर की जगह फुलटॉस और स्लॉट गेंदें फेंकी गई, जिसका इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पूरा फायदा उठाया। दूसरी ओर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ पर शानदार नियंत्रण रखा और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। फील्डिंग भी चिंता का विषय रही। आसान कैच छूटे, रनआउट के मौके गंवाए गए और मैदान पर वो ऊर्जा नहीं दिखी जिसके लिए भारतीय टीम कभी जानी जाती थी। आधुनिक क्रिकेट में सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी नहीं बल्कि फील्डिंग भी मैच जिताती है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ खिलाड़ियों की खराब फॉर्म है? शायद नहीं, यह रणनीति का भी मामला है। पिछले कुछ समय में भारतीय टीम लगातार प्रयोग कर रही है। कभी ओपनिंग जोड़ी बदल रही है, कभी मिडिल ऑर्डर्स, कभी गेंदबाजी संयोजन। प्रयोग जरूरी है, लेकिन लगातार बदलाव खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी प्रभावित करते हैं। T20 क्रिकेट में खिलाड़ियों को स्पष्ट भूमिका चाहिए। किसे पावर प्ले में आक्रमण करना है, किसे पारी संभालनी है और किसे अंत तक मैच खत्म करना है, यह स्पष्ट होना चाहिए। इंग्लैंड की सफलता का सबसे बड़ा कारण यही रहा। हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को अच्छी तरह जानता है और उसी के अनुसार खेलता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है मानसिकता। भारत के कई खिलाड़ी IPL में बेखौफ बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वही खिलाड़ी जरूरत से ज्यादा सतर्क नजर आते हैं। आधुनिक T20 क्रिकेट में डर कर खेलने की कोई जगह नहीं। अगर आप जोखिम नहीं लेंगे तो फिर बड़े लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। क्या इसका मतलब भारतीय क्रिकेट संकट में है? बिल्कुल नहीं। भारत के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं। युवा खिलाड़ियों की लंबी कतार है, मजबूत घरेलू ढांचा है और दुनिया की सबसे प्रतिस्पर्धा T20 लीग IPL भी है। जरूरत है सही खिलाड़ियों को लगातार मौके देने की।
टीम में स्थिरता लाने की और खिलाड़ियों को बिना डर के खेलने की आजादी देने की। साथ ही चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन को यह तय करना होगा कि भविष्य की टीम तैयार कर रहे हैं या हर श्रृंखला में नए

सीख सही मिली तो यही हार भविष्य की बड़ी जीत की नींव भी बन सकती है। अब बात करते हैं टेनिस की। टेनिस की दुनिया में इन दिनों सारी निगाहें लंदन के ऐतिहासिक ऑल इंग्लैंड क्लब पर टिकी है, जहां घास की कोर्ट पर खेला जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम विंबलडन संपन्न हुआ। महिला एकल वर्ग को इस साल एक नई चैंपियन मिल चुकी है। चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपनी हमवतन कोरोलिना मुचोवा को रोमांचक मुकाबलों में 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया। लेकिन ये मुकाबला सिर्फ एक फाइनल नहीं था, बल्कि धैर्य, अनुशासन, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती की मिसाल थी। पहला सेट पूरी तरह नोस्कोवा के नाम रहा। दूसरे सेट में वे कई बार चैंपियनशिप के बेहद करीब पहुंची, लेकिन दबाव में लगातार मौके गवा बैठी और कोरोलिना मुचोवा ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबले को तीसरे सेट तक खींच दिया। लेकिन असली चैंपियन वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में खुद को संभाल ले। तीसरे और निर्णायक सेट में नोस्कोवा ने बेहतरीन वापसी करते हुए इतिहास रच दिया। दोनों खिलाड़ी एक ही देश चेक गणराज्य से थी, ऐसे में ये मुकाबला केवल खिताब का नहीं बल्कि चेक टेनिस की शानदार परंपरा का भी उत्सव बन गया। पिछले कुछ वर्षों में चेक महिला खिलाड़ियों ने विंबलडन में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है और नोस्कोवा की जीत उसी विरासत को आगे बढ़ाती है। महिला वर्ग में नया इतिहास रचने के बाद अब रुख करते हैं पुरुष एकल वर्ग की ओर। टेनिस की दुनिया में एक नया युग तेजी से आकार ले रहा है और इस युग का सबसे चमकता सितारा है इटली के 24 वर्षीय यानिक सीरन। दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सीरन ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित करते हुए विंबलडन 2026 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया। फाइनल में उन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को 4 सेटों के संघर्षपूर्ण मुकाबले में 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराकर लगातार दूसरा विंबलडन और अपने करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। यानिक सीरन की सबसे बड़ी खासियत है उनका शांत स्वभाव। कोर्ट पर ना कोई अनावश्यक आक्रोश, ना ही भावनाओं का प्रदर्शन, सिर्फ सटीक रणनीति, दमदार सर्विस और बेहतरीन बेस लाइन खेल। यही कारण है कि उन्हें आज आधुनिक टेनिस का सबसे संतुलित खिलाड़ी माना जा रहा है। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि सीरन बचपन में टेनिस नहीं बल्कि स्किंग के बेहतरीन खिलाड़ी थे। बाद में उन्होंने टेनिस को अपना करियर चुना और आज वे इटली के सबसे सफल खिलाड़ी में गिने जाते हैं। इस विंबलडन में उनका सफर भी शानदार रहा। सेमीफाइनल में उन्होंने 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराया और फाइनल में ज़ेवरेव के खिलाफ पहला सेट गंवाने के बाद जबरदस्त वापसी कर यह साबित कर दिया कि बड़े खिलाड़ी दबाव में और मजबूत होकर उभरते हैं। 24 वर्ष की उम्र में 5 ग्रैंड स्लैम जीतकर यानिक सीरन ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले वर्षों में पुरुष टेनिस पर उनका दबदबा और मजबूत हो सकता है। कई विशेषज्ञों ने उन्हें रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच के बाद की पीढ़ी का सबसे बड़ा सितारा मान रहे हैं। संघर्ष, अनुशासन और निरंतरता, यही है यानिक सीरन की सफलता का मंत्र। 24 साल की उम्र में उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसका सपना हर टेनिस खिलाड़ी देखता है। अब दुनिया की नजरें इस युवा चैंपियन पर है कि आने वाले वर्षों में और कितने इतिहास रचता है। अब जरा विंबलडन की उस खास परंपरा की बात कर लें जो इसे दुनिया की बाकी ग्रैंड स्लैम से अलग बनाती है। क्या आप जानते हैं विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है? इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। यहां आज भी खिलाड़ी सफेद रंग के ड्रेस पहनते हैं और यह नियम इतना सख्त है कि खिलाड़ियों के कपड़ों पर दूसरे रंग की मात्रा भी बेहद सीमित होती है। यही परंपरा विंबलडन की पहचान है। विंबलडन की एक और खास बात है इसकी प्राकृतिक घास की कोर्ट। आज चारों ग्रैंड स्लैम अलग अलग सतहों पर खेली जाती है, लेकिन घास का कोर्ट केवल विंबलडन की पहचान है। घास पर गेंद की रफ्तार तेज होती है और उछाल अपेक्षाकृत कम, इसलिए यहां सर्विस, नेट प्ले और तेज रिफ्लेक्स सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। दर्शकों के बीच बैठकर स्ट्रॉबेरी और क्रीम खाना भी विंबलडन की सदियों पुरानी परंपरा है। हर साल हजारों किलो स्ट्रॉबेरी और क्रीम दर्शकों के बीच परोसी जाती है। विंबलडन केवल एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि खेल संस्कृति

अनुशासन और परंपरा का उत्सव है। यहाँ हर जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा बन जाती है। अब बात दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल महाकुंभ फीफा विश्व कप 2026 की। फीफा विश्व कप 2026 अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी गलती 4 साल का सपना तोड़ सकती है और एक शानदार गोल पूरी दुनिया को झूमने पर मजबूर कर सकता है। 48 टीमों के साथ शुरू हुआ ये विश्व कप अब सिर्फ 4 दिग्गजों तक सिमट चुका है, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अर्जेंटीना। खास बात यह है कि पहली बार विश्व कप इतिहास में फीफा की शीर्ष 4 रैंकिंग वाली टीमें सेमीफाइनल में पहुंची है। पहला सेमीफाइनल होगा फ्रांस और स्पेन के बीच, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में आमने सामने होगी इंग्लैंड और अर्जेंटीना। दोनों मुकाबले किसी फाइनल से कम नहीं माने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की। दुनिया की नंबर 1 टीम फ्रांस इस विश्व कप में बेहद संतुलित नजर आ रही है। कोच दिदिये डेंसा की टीम ने आक्रमण और रक्षा दोनों विभागों में बेहतरीन तालमेल दिखाया है। कप्तान किलियन एम्बापे एक बार फिर अपनी रफ्तार, फिनिशिंग और निर्णायक मौकों पर गोल में बदलने की कला से विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। एम्बापे गोल्डन बूट की दौड़ में भी सबसे आगे चल रहे खिलाड़ियों में शामिल हैं। उनके साथ उस्मान डेम्बेले और माइकल ओलिसे जैसे खिलाड़ी फ्रांस के आक्रमण को और भी धार देते हैं। अब बात करते हैं स्पेन की। अगर फ्रांस ताकत और गति का नाम है तो स्पेन तकनीक और धैर्य की पहचान है। स्पेन की सबसे बड़ी ताकत है उसका टिकी टका फुटबॉल, छोटे छोटे पास, गेंद पर नियंत्रण और विपक्षी टीम को लगातार दबाव में रखना। युवा स्टार लामिन यामाल इस विश्व कप के सबसे बड़े आकर्षण बनकर उभरे हैं, जबकि अनुभवी कप्तान अल्बारो मोराटा टीम को नेतृत्व दे रहे हैं। मिडफील्ड में स्पेन का नियंत्रण किसी भी टीम के लिए चुनौती है। अब रुख करते हैं दूसरे सेमीफाइनल की ओर। ये मुकाबला सिर्फ फुटबॉल नहीं बल्कि इतिहास, जुनून और प्रतिद्वंदिता की कहानी है। इंग्लैंड बनाम अर्जेंटीना। इन दोनों देशों के बीच विश्व कप की कई यादगार मुकाबले खेले जा चुके हैं। डिएगो माराडोना का हेड ऑफ गार्ड गोल हो या 1998 का रोमांचक मैच, हर बार ये मुकाबला इतिहास बना है। इंग्लैंड की बात करें तो कप्तान हैरी केन अनुभव का बड़ा नाम है, लेकिन इस विश्व कप में सबसे ज्यादा प्रभावित किया है जूड बेलिंगहैम ने। बेलिंगहैम ने क्वार्टर फाइनल में 2 गोल कर टीम को जीत दिलाई और इस समय इंग्लैंड के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड की ताकत है उसका मजबूत मिडफील्ड, हवाई गेंदों पर शानदार पकड़ और सेट पीस से गोल करने की क्षमता। दूसरी ओर है मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना। पूरी दुनिया की नजरें इस बार फिर लियोनेल मेसी पर है। शायद ये मेसी का आखिरी विश्व कप हो और वो इसे एक और खिताब के साथ यादगार बनाना चाहेंगे। मेसी सिर्फ गोल नहीं करते बल्कि पूरे खेल की दिशा बदल देते हैं। उनके साथ है जूलियन अल्वारेज, लोतारो मार्टिनेज और एलेक्सिस मैक एलिस्टार जैसे खिलाड़ी अर्जेंटीना को बेहद संतुलित टीम बनाते हैं। अर्जेंटीना की सबसे बड़ी ताकत है दबाव में भी संयम और बड़े मैच का अनुभव। अगर रणनीति की बात करें तो फ्रांस तेज काउंटर अटैक पर भरोसा करता है, स्पेन गेंद पर कब्जा रखकर विरोधी को थकाता है। इंग्लैंड शारीरिक मजबूती और सेट पीस में माहिर है और अर्जेंटीना मेसी की रचनात्मकता के साथ सामूहिक फुटबॉल खेलती है। यही वजह है कि दोनों सेमीफाइनल पूरी तरह अलग अंदाज के मुकाबले होंगे। अब एक दिलचस्प तथ्य है, इस बार विश्व कप में कोई भी टीम संयोग से यहां तक नहीं पहुंची है। चारों टीमों ने क्वार्टर फाइनल में दमदार प्रदर्शन कर अपनी जगह बनाई है और चारों पहले भी विश्व कप जीत चुकी है। यानी इस बार ट्रॉफी किसी नए देश के पास नहीं जाएगी बल्कि एक पुराना चैंपियन ही फिर से विश्व फुटबॉल का बादशाह बनेगा। पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा जबकि दूसरा मुकाबला इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होगा। इन दोनों मैचों के विजेता 19 जुलाई को फाइनल में आमने सामने होंगे। तो सवाल सिर्फ इतना ही है कि कौन जीतेगा। सवाल यह भी है क्या मेसी अपने करियर में एक और विश्व कप फाइनल खेलेंगे,
क्या एम्बापे फ्रांस को फिर विश्व विजेता बनाएंगे, क्या यामाल स्पेन के लिए नया इतिहास लिखेंगे, या फिर हैरी केन इंग्लैंड का 6 दशक लंबा इंतजार खत्म करेंगे? इन सवालों का जवाब अगले 2 मुकाबलों में मिलेगा। अब जिक्र उस भारतीय महिला टीम की जिसने लॉर्ड्स की ऐतिहासिक धरती पर अपने जज्बे, अनुशासन और बेहतरीन खेल से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारतीय महिला क्रिकेट इन दिनों एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। ये मुकाबला कई मायनों में ऐतिहासिक है क्योंकि लॉर्ड्स में पहली बार महिला टेस्ट मैच आयोजित किया गया है और इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय खिलाड़ियों ने यादगार प्रदर्शन किया है। इस मुकाबले की शुरुआत भारत की अनुभवी सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना ने शानदार बल्लेबाजी से की। उन्होंने दोनों पारियों में धैर्य और तकनीक का बेहतरीन प्रदर्शन किया। दूसरी पारी में उनकी अर्धशतकीय पारी ने भारत को बड़ी बढ़त दिलाने की मजबूत नींव रखी। स्मृति की बल्लेबाजी की सबसे खास बात यह रही, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को छोड़ने का धैर्य और खराब गेंदों को सीमा रेखा के बाहर भेजने की कला। टेस्ट क्रिकेट में यही परिपक्वता बड़े बल्लेबाजों की पहचान होती है, लेकिन इस टेस्ट मैच की सबसे बड़ी खोज रही युवा तेज गेंदबाज क्रांति गौड़। क्रांति गौड़ ने पहली पारी में 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। वो लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला तेज गेंदबाज बनी। उनकी गेंदबाजी में गति, स्विंग और सटीक लाइन लेंथ का शानदार मेल देखने को मिला। उन्होंने इंग्लैंड के शीर्ष क्रम को झकझोर दिया और भारत को मैच में निर्णायक बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। एक और बड़ी उपलब्धि रही यास्तिका भाटिया की। दूसरी पारी में उन्होंने शानदार शतक जड़कर लॉर्ड्स में महिला टेस्ट इतिहास का पहला शतक बनाने का गौरव हासिल किया। उनकी इस पारी ने भारत की बढ़त को 450 रन से आगे पहुंचा दिया और इंग्लैंड पर जीत का दबाव कई गुना बढ़ा दिया। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी पूरे मैच में आक्रमण कप्तानी की। गेंदबाजों का प्रभावी इस्तेमाल, सही समय पर फील्ड में बदलाव और लगातार आक्रमण की रणनीति ने इंग्लैंड को वापसी का मौका नहीं दिया। अनुभवी स्पिनर स्नेहा राणा और दीप्ति शर्मा ने भी दूसरे छोर से दबाव बनाए रखा। अगर इस टेस्ट से भारत की सबसे बड़ी सीख देखें तो वो है युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का शानदार संतुलन। एक और स्मृति मानधना जैसी अनुभवी बल्लेबाज हैं, तो दूसरी ओर क्रांति गौड़ और यास्तिका भाटिया जैसी युवा खिलाड़ी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। यही संतुलन भारतीय महिला क्रिकेट का भविष्य और मजबूत बनाता है। अब बात आगे की। इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट मैच के बाद भारतीय महिला टीम एक दिवसीय श्रृंखला खेलेगी। यह सीरीज इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आने वाले ICC टूर्नामेंट की तैयारी के इतिहास से हर मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है। टीम चाहेगी टेस्ट की इस शानदार लय को वनडे क्रिकेट में भी बरकरार रखा जाए। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द वीक में आज बात उस खिलाड़ी की जिसकी मौजूदगी भर से विपक्षी टीम की रक्षा पंक्ति सतर्क हो जाती है, जिसकी रफ्तार, ताकत और गोल करने की क्षमता ने उसे विश्व फुटबॉल के सबसे खतरनाक स्ट्राइकरों में शामिल कर दिया है। हम बात कर रहे हैं नॉर्वे के स्टार फुटबॉलर एर्लिंग हालैंड की। 24 वर्षीय एर्लिंग हालैंड का जन्म 21 जुलाई 2000 को इंग्लैंड के लिड्स शहर में हुआ। उनके पिता अल्फ इगे हालैंड भी पेशेवर फुटबॉलर रहे हैं। बचपन से ही हालैंड की पहचान उनकी असाधारण शारीरिक क्षमता, तेज रफ्तार और गोल के सामने बेहतरीन फिनिशिंग के लिए होने लगी थी। रेड बुल साल्ज़बर्ग, बोरुसिया डॉर्टमुंड और फिर मैनचेस्टर सिटी तक का उनका सफर लगातार रिकॉर्ड तोड़ने वाला रहा। क्लब फुटबॉल में उन्होंने गोल करने की ऐसी आदत बना ली कि उन्हें दुनिया भर में गोल मशीन कहा जाने लगा। लेकिन इस बार फीफा विश्व कप 2026 में हालैंड ने वो कर दिखाया जिसका नॉर्वे के प्रशंसक वर्षों से इंतजार कर रहे थे। लगभग 28 वर्षों के बाद नॉर्वे ने विश्व कप में वापसी की और इस शानदार अभियान में सबसे बड़े नायक बने एर्लिंग हालैंड। विश्व कप के पहले ही मुकाबले में इराक के खिलाफ हालैंड ने 2 गोल दागकर नॉर्वे को 4-1 से जीत दिलाई। इसके बाद सेनेगल के खिलाफ भी उन्होंने 2 गोल किए और अपनी टीम को नॉकआउट चरण में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।
लेकिन उनका सबसे यादगार पल आया ब्राजील के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल में। पांच बार की विश्व चैंपियन ब्राजील के विरुद्ध हालांड ने दो शानदार गोल दागे। खास तौर पर उनका दूसरा गोल शानदार नियंत्रण, ताकत और सटीक फिनिशिंग का बेहतरीन उदाहरण।

था। इस गोल को फीफा ने राउंड ऑफ 16 का हुंडई गोल ऑफ द राउंड चुना। हालांकि क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ नॉर्वे का सफर समाप्त हो गया, लेकिन हालांड का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट की सबसे बड़ी चर्चाओं में रहा। नॉर्वे भले ही सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सका, लेकिन इस टीम ने दुनिया को यह संदेश जरूर दिया है कि अब विश्व फुटबॉल की नई ताकत बनकर उभर रही है। अब बात करते हैं हालांड की सबसे बड़ी ताकत की। लगभग 1.95 मीटर लंबे हालांड अपनी शारीरिक मजबूती, विस्फोटक गति और हवा में शानदार खेल के लिए जाने जाते हैं। बॉक्स के अंदर अपनी पोजीशनिंग इतनी सटीक होती है कि उन्हें एक छोटा सा मौका भी मिल जाए तो वो उसे गोल में बदल देते हैं। उनका बायां पैर बेहद खतरनाक है, लेकिन हेडर और दाएं पैर से भी उतने ही प्रभावी हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई कोच उन्हें मौजूदा दौर का सबसे घातक नंबर 9 स्ट्राइकर मानते हैं। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि हालांड गोल करने के बाद अक्सर ध्यान मुद्रा यानी मेडिटेशन सेलिब्रेशन करते हैं। उनका मानना है कि मानसिक शक्ति और एकाग्रता ही बड़े खिलाड़ियों की सबसे बड़ी ताकत होती है। खास खास खबरों में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में भारत की शूटर नीरू ढाडा ने ट्रैप स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। हरियाणा की नीरू ने फाइनल मुकाबले में जबरदस्त निरंतरता दिखाते हुए 30 में से 27 सटीक निशाने लगाए और शीर्ष स्थान हासिल किया। 26 साल की नीरू वर्ल्ड कप में इंडिविजुअली ट्रैप गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वे इस साल एशियन गेम में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। क्रीड़ा जगत के आज के इस अंक में बस इतना ही। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रभु शरण। कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए अब मुझे यानी विश्वजीत पात्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार, फिर मिलेंगे खेल जगत की नई खबरों, नए रिकॉर्ड और नई उपलब्धियों के साथ।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण के माध्यम से आज की विभिन्न सभाओं में शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी कि 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। 5 बजे का समय होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का। 5:02 पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युव वाणी। 5:30 पर आप सुनेंगे श्रमिक साथियों का कार्यक्रम श्रमिक लोक, प्रस्तुति होंगी गौरव कुमार पांडे की। 6 बजे का समय होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का। 6:02 पर आप सुनेंगे किसान वाणी, प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। 6:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया, प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:11 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 का समय होगा खड़िया भाषा में आदिवासी अखरा का, प्रस्तुत करता होंगे गौरव कुमार पांडे। 7:45 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी वार्ता, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता लाइफस्टाइल फॉर सक्सेस के बारे में और वार्ताकार होंगे केसी जैन, प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनी गंधा। 8:30 का समय होगा सुर्खियों में। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9 बजे का समय होगा न्यूज एट 9 का। 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार। 9:30 पर आप सुनेंगे मनी टॉक। 9:45 पर आप सुनेंगे मंथन।

10 बजे का समय होगा कार्यक्रम गूंजे झारखंड का। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत।

11 बजे का समय होगा हिंदी में समाचार का। 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। ये थी आज की विभिन्न सभाओं में शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। पहला गीत हमने लिया है रांझना फिल्म से, श्रेया घोषाल की आवाज में। शब्द रचना इरशाद कामिल के हैं, धुन बनाई है AR रहमान ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म फना से। प्रशून जोशी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने। आवाजें हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान की।

अभी आप सुन रहे थे प्रेम रतन धन पायो फिल्म से ये खूबसूरत संगीत, जिसे गाया था पलक मुछल ने। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। अगला गीत आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। शब्द रचना इरशाद कामिल के हैं, तर्स बनाई है ए आर रहमान ने, फिल्म है आई।

0: इसी प्यारे से गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। राज्य में चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में आज मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत चुनाव पाठशालाएं आयोजित की गईं। इस दौरान बूथों पर मृत, एब्सेंट और शिफ्टेड मतदाताओं की सूचियों का मिलान हुआ। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने वोटरों से सहयोग की अपील की है। राज्य के पूर्व मंत्री और धनबाद के पूर्व विधायक मन्नान मल्लिक का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। पूर्व मंत्री को अंतिम विदाई देने के लिए उनका पार्थिव शरीर रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस भवन लाया गया। इस मौके पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हजारीबाग के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने दारू प्रखंड में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान दिव्यांग पेंशन, पीएम आवास, पेयजल, सड़क और बिजली से जुड़े दर्जनों आवेदन प्राप्त हुए। रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा और मेले के मद्देनजर सुचारू यातायात के लिए 16 से 25 जुलाई तक विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। ट्रैफिक एसपी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई प्रमुख मार्गों पर रूट डायवर्जन और नो एंट्री लागू रहेगी। बिरसा चौक, प्रभात तारा मैदान और तिरिल मोड़ के पास पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। जामताड़ा पुलिस ने कर्माटांड थाना क्षेत्र से साइबर अपराधी नसीरुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि अपराधी के पास से 4,04,500 रुपए नगद, 2 मोबाइल, 3 फर्जी सिम और 1 बाइक बरामद की गई है। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के हुटुकदाग गांव में आज जमीन विवाद को लेकर एक बुजुर्ग को गोली मार दी गई। घायल बुजुर्ग के पेट से मेदनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने सफल ऑपरेशन कर गोली निकाल दी है। पुलिस फरार आरोपी और उसके भाइयों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सड़क किनारे कुल्फी वाले की घंटी की आवाज़, चाय की दुकान से उठती अदरक की खुशबू और दिन भर की भाग दौड़ के बाद अपनी बालकनी में कुछ सुकून के पल, और ऐसे ही खूबसूरत पल में अगर साथ मिल जाए युवाओं के अपने कार्यक्रम युववाणी का, उफ़ क्या कॉम्बिनेशन है ना। तो दोस्तों, अपने चाय की प्याली संभाल लीजिए, कुल्फी का मजा लेते रहिए, अपने पसंदीदा कोने में आराम से बैठ जाइए
1: और आ जाइए अपने रेडियो के करीब, क्योंकि हम लेकर आए हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। और कर लीजिए अपने रेडियो के वॉल्यूम को थोड़ा सा हाई,
0: क्योंकि आज के इस आधे घंटे के सफर में आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त प्रज्ञा।
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त रिया।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: प्रज्ञा, जरा सच सच बताना, सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम लेती हो या मोबाइल उठाकर नोटिफिकेशन चेक करती हो?
0: रिया, पहले तो मैं अलार्म बंद करती हूँ, लेकिन उसके बाद हाथ अपने आप सोशल मीडिया

0: पर पहुंच जाते हैं, और शायद यही हाल हमारे ज्यादातर दोस्तों का भी है ना।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। आज सोशल मीडिया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। किसी की पढ़ाई के लिए चाहिए, किसी को बिजनेस के लिए चाहिए, किसी को अपने हुनर को दिखाने के लिए चाहिए, और किसी को बस दोस्तों से जुड़े रहने के लिए चाहिए।
0: लेकिन हर ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। सोशल मीडिया जितना फायदेमंद है उतना ही नुकसानदायक भी हो सकता है अगर उसका यूज़ बिना सोचे समझे किया जाए।
1: सोचिए कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी खबर को बिना जांचे परखे आगे भेज दिया, बाद में पता चलता है कि वो एक झूठी खबर थी।
0: यही वजह है कि किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसके स्रोत की जांच करना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी लापरवाही कई लोगों को गुमराह कर सकती है।
1: बिल्कुल। और एक आदत, बिना रुके घंटों तक स्क्रॉल करते रहना, 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाना और घंटों तक अपने फ़ोन में ही लगे रहना।
0: इतने समय में हम एक नई स्किल सीख सकते थे, कोई किताब पढ़ सकते थे, परिवार के साथ बैठ सकते थे या अपने किसी अधूरे सपने पर काम कर सकते थे।
1: बिल्कुल, सोशल मीडिया हमें दुनिया से जोड़ता है, लेकिन अगर हम सावधान ना रहे तो कभी कभी हमें अपने अपनों से दूर भी कर देता है।
0: और आजकल एक और समस्या बहुत बढ़ गई है, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से तुलना करना।
1: हाँ दोस्तों, याद रखिए, सोशल मीडिया पर हर तस्वीर के पीछे पूरी कहानी नहीं होती है। लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी खुशियाँ दिखाते हैं, उसके पीछे का संघर्ष नहीं दिखाते। इसलिए किसी की पोस्ट को देखकर खुद को कम मत आंकिए।
0: बिल्कुल।
1: अगर आपका फ़ोन सिर्फ एक दिन के लिए बंद हो जाए तो आप सबसे पहले किस चीज़ को ज़्यादा मिस करोगे, सोशल मीडिया को या रील स्क्रॉल करने को, या फिर बार बार अपने फ़ोन को चेक करने की आदत को?
0: देखो, सच कहें आज फ़ोन हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हमारी आदत बन चुका है। सुबह उठते ही सबसे पहले स्क्रीन, और रात को सोने से पहले आखिरी बार भी स्क्रीन।
1: और सबसे मज़ेदार बात यह है कि कई बार हम लोग फ़ोन उठाते हैं कुछ और काम करने के लिए, लेकिन पता ही नहीं चलता कब आधा घंटा, कब एक घंटा, और कब हम लोग अपने फ़ोन में ही लगे रहते हैं।
0: यही तो डिजिटल दुनिया का जादू है, या यूं कहें कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल डिटॉक्स की। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपना फ़ोन फेंक दें या इंटरनेट छोड़ दें।
1: बिल्कुल नहीं, डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए अपने स्क्रीन से दूरी बनाएं, अपने मन, शरीर और रिश्तों को थोड़ा सा टाइम दें।
0: क्योंकि लगातार स्क्रीन देखने से सिर्फ आंखें ही नहीं थकती, हमारा दिमाग भी लगातार जानकारी से भरता रहता है। धीरे धीरे फोकस कम होने लगता है, नींद प्रभावित होती है, और कई बार बिना वजह भी बेचैनी महसूस होने लगती है।
1: और सबसे बड़ी बात, हम उन लोगों के साथ बैठकर भी फ़ोन में व्यस्त रहते हैं जिनके साथ बिताया गया समय हमारे लिए सबसे खूबसूरत याद बन सकता था।
0: ज़रा याद कीजिए, बचपन में छुट्टियाँ कैसी होती थीं, गली में खेलना, दोस्तों के साथ हंसना, परिवार के साथ बैठकर बातें करना। तब इंटरनेट कम था लेकिन रिश्ते ज़्यादा जुड़े हुए थे।
1: आज इंटरनेट तेज़ हो गया है लेकिन रिश्ते नेटवर्क की तरह कमज़ोर पड़ गए हैं।
0: एक छोटी सी बात सोचिए, जब कोई अपना आपसे बात कर रहा होता है और आप बार बार फ़ोन देखने लगते हैं तो सामने वाले को कैसा महसूस होता होगा?
1: कभी कभी हम सोचते हैं कि बस एक मिनट, लेकिन वही एक मिनट सामने वाले को ये महसूस करा देता है कि शायद उसकी बातें बिल्कुल ज़रूरी नहीं हैं।
0: डिजिटल डिटॉक्स हमें यही सिखाता है कि हर नोटिफिकेशन ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता ज़रूरी है।
1: और हाँ, ये सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, बच्चे, युवा, कॉलेज स्टूडेंट्स, ऑफिस में काम करने वाले लोग, लगभग हर कोई अपना स्क्रीन टाइम से प्रभावित है।
0: दोस्तों, बातें आगे भी जारी रहेंगी, पर यहाँ लेते हैं एक म्यूज़िकल ब्रेक।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, अब हम आपको ले चलेंगे समय की उन गलियों में जहां इतिहास ने करवट ली थी। आज तारीख है 14 जुलाई और आज का यह दिन भारत और विश्व के इतिहास में कई बड़ी घटनाओं का गवाह रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं साल 1789 में, फ्रांस की राजधानी पेरिस। 14 जुलाई का यही वो दिन था जब पेरिस की उग्र जनता ने बास्टिल के किले पर धावा बोल दिया और उसे नेस्तनाबूद कर दिया था। यह घटना राजा लुई 16वें की निरंकुश सत्ता के अंत और आम जनता की जीत का प्रतीक बनी। इस ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 14 जुलाई को फ्रांस में बास्टिल दिवस मनाया जाता है। इसे फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है।
2: अब बात करते हैं अपने भारत की। साल 1942 में आज के ही दिन वर्धा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति की एक अहम बैठक हुई, जिसमें अंग्रेजों को भारत छोड़ने का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था। वहीं 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई, जिसके बाद महात्मा गांधी ने करो या मरो का ऐतिहासिक नारा दिया। इसी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी।
1: बिल्कुल रिया, अब वापस विश्व इतिहास का रुख करते हैं। दोस्तों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात तो हमने की, पर क्या आपको पता है आज ही के दिन विश्व में एक और महान क्रांति हुई थी। साल 1958 में आज ही के दिन यानी 14 जुलाई को ही इराक में एक बड़ा सैन्य तख्तापलट हुआ। इराकी क्रांतिकारियों ने बगदाद में शाही महल पर धावा बोल दिया था, जिसमें राजा फैजल द्वितीय और प्रधानमंत्री नूरी अल सैद मारे गए, जिससे हाशमी राजवंश का अंत हो गया और इराक को गणतंत्र घोषित कर जनरल कासिम ने प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता संभाली थी।
2: अब बात करते हैं अंतरिक्ष विज्ञान की। 14 जुलाई 1965 को नासा के अंतरिक्ष यान मैरिनर 4 ने मंडल ग्रह के बेहद करीब से उड़ान भरी और पृथ्वी पर

0: मंगल ग्रह की पहली नजदीकी तस्वीर भेजी या किसी भी दूसरे ग्रह की पहली क्लोजअप तस्वीर थी। इसने अंतरिक्ष अनुसंधान के एक नए युग की शुरुआत की थी।
1: बिल्कुल, अब साल 1957 में मिस्र की राविया अतेया अरब दुनिया की पहली महिला सांसद बनी। उनका यह कदम अरब देशों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ था।
0: साल 2015 का एक बेहद खास पल, नासा के न्यू होराइजन अंतरिक्षयान ने 14 जुलाई को प्लूटो के सबसे करीब से उड़ान भरी और प्लूटो की अब तक की सबसे स्पष्ट और विस्तृत तस्वीरें धरती पर भी भेजी।
1: दोस्तों, इसके अलावा आज ही के दिन अमेरिका के वाइल्ड वेस्ट के इतिहास की एक बेहद रोमांचक घटना घटी थी। दरअसल 14 जुलाई 1881 को न्यू मैक्सिको के फोर्ट स्मनर में शेरिफ पैट गैरेट ने कुख्यात अपराधी बिली द किट को मार गिराया था। बिली द किट की मौत के बाद भी यह कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। दशकों तक यह अफवाहें उड़ती रहीं कि वह बचकर भाग निकला था और कई लोगों ने खुद को असली बिली द किट होने का दावा किया था। आज भी यह घटना अमेरिकी लोक कथाओं, फिल्मों और गीतों में बार बार जीवंत होती रहती है।
0: दोस्तों, अब सुनते हैं करंट अफेयर्स। जुलाई 2026 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति और क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर विकसित करने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है।
1: एनुअल लीडर्स समिट में ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज के साथ इस समझौते का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज हमने न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में एक अहम समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता खुलेगा और हमारे स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को नई मजबूती मिलेगी। दोस्तों, यहाँ यूरेनियम का निर्यात सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए होगा और यह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के सुरक्षा नियमों के दायरे में होगा।
0: वहीं जुलाई 2026 में कन्याकुमारी के 17 वर्षीय अश्वथ एस भारत के 98 शतरंज ग्रैंड मास्टर भी बन गए हैं।
1: हाल ही में INS महेंद्र गिरि को भारतीय नौसेना में कमीशन यानी शामिल किया गया। महेंद्र गिरि प्रोजेक्ट 17A की नीलगिरी कैटेगरी का 6th स्टेल्थ फ्रिगेट यानी युद्धपोत है और सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने में 75% से भी ज़्यादा स्वदेशी उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसे भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने डिज़ाइन किया है और मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने इसे तैयार किया है।
0: दोस्तों, इसी के साथ ही इसके निर्माण में देश भर की कई MSME कंपनियों ने भी योगदान दिया है, जिससे रक्षा उत्पाद को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।
1: महेंद्र गिरि में मॉडर्न सर्फेस टू सर्फेस और सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए हैं। इसमें उन्नत स्टेल्थ तकनीक दी गई है जिससे इसकी रडार पर पहचान मुश्किल होगी। इसमें कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है जो इसे लंबी दूरी तक तेज गति से संचालन की क्षमता देता है।
0: बिल्कुल प्रज्ञा, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका नाम उड़ीसा की महेंद्र गिरि पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है।
1: हारिया, और इसके अलावा हाल ही में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह किर्गिस्तान की मानस नेशनल एकेडमी और नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर स्टडीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस CSIR के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत और किर्गिस्तान की प्राचीन सभ्यताओं, सांस्कृतिक विरासत और महाकाव्य परंपराओं के तुलनात्मक अध्ययन को बढ़ावा देना है।
0: चलिए दोस्तों, बातें तो और भी होंगी, लेते एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों, तकनीक ने हमारी ज़िंदगी आसान बनाई है। एक क्लिक में पढ़ाई, काम, बैंकिंग, मनोरंजन, सब कुछ हमारी मुट्ठी में ही है।
1: लेकिन सोचिए, अगर वही तकनीक हमें कंट्रोल करने लगे, हमारा समय, हमारी नींद और हमारे अपने लोगों से जुड़ाव छीनने लगे, तो क्या ये सही है?
0: नहीं, याद रखिए, तकनीक एक बेहतरीन साधन है, लेकिन ज़िंदगी का केंद्र बिल्कुल नहीं है।
1: कभी कभी फोन को साइड में रखिए, परिवार के साथ बैठिए, दोस्तों से खुलकर बातें कीजिए, क्योंकि असली कनेक्शन इंटरनेट से नहीं, रिश्तों से बनते हैं।
0: तो आज का छोटा सा संदेश है, तकनीक का उपयोग करें, लेकिन उसे अपनी आदत या लत बिल्कुल ना बनने दें। अपनी स्क्रीन टाइम को कम करें, और हाँ, ये बात हमेशा याद रखें कि जिंदगी ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, बातें तो हमें और भी करनी थी आपसे, लेकिन अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो दीजिए अपनी दोस्त रिया
1: और प्रज्ञा,
0: को इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: सही पोषण देश रोशन, स्वस्थ रहे जन जन, आए खुशहाली का पैगाम। इसी संदेश के साथ कार्यक्रम श्रमिक लोक में आज के आपके हम सफर मीनाक्षी आपके साथ है। श्रमिक साथियों, इस समय हमसे जुड़े तमाम सुनने वालों को का हम बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नमस्कार।
1: जी हाँ, पौष्टिक भोजन के साथ स्वस्थ जीवन शैली भी जरूरी है और आप इस बात को समझते भी होंगे। इसी गहरे विश्वास के साथ मैं आपकी दोस्त जया भी आपकी महफिल में हूँ और कहती हूँ प्यार भरा नमस्कार।
0: वाह, विश्वास, प्यार और स्नेहिल साथ, ये तो है ही जया। लेकिन ये बताओ, जब हम कहते हैं सही पोषण देश रोशन, इसका मतलब हम क्या समझे?
1: बेहद आसान भाषा में अगर बात करें ना मीनाक्षी दी, तो हम जो भोजन करते हैं ना, उसमें हमारे शरीर के लिए जरूरी मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, वसा, पानी, इन सब की मात्रा हो, ताकि हम बीमारियों से बच सके, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारी काम करने की जो क्षमता है ना, वो बढ़े और अपना तन और मन स्वस्थ रह सके। आई बात अब आपको समझ में, हमारे साथियों को भी समझ में आ गई?
0: अरे हाँ भाई जया, आ गई बात समझ में, तुम्हारी बात मैं पूरी तरह समझ गई। श्रमिक साथियों, हमें भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं करना चाहिए, हमारे हर दिन के भोजन में दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल और अगर हो सके तो मोटे अनाज जरूर होने चाहिए।
1: इसलिए तो कहा जाता है हमें तिरंगा भोजन करना चाहिए, हरी सब्जियां, सफेद भात और पीली दाल। श्रमिक साथियों, इसके साथ ही आप भरपूर पानी जरूर पीजिए, क्योंकि शरीर में पानी की कमी भी हमें बीमार कर देती है। क्योंकि मीनाक्षी जी, मैं अक्सर देखती हूँ कि ना, लोगों को जब प्यास लगती है ना, तभी पानी पीते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी जरूर पीते रहें।
0: बिल्कुल, और विशेषज्ञ ये भी बताते हैं ना जया, कि दिन भर में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी हमें पीना ही चाहिए, भले प्यास लगे या ना लगे। बाजे आज तो तुम बिल्कुल एक विशेषज्ञ की तरह बात कर रही
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: पता है, इसी बात के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए जया, हमारे देश में हर वर्ष 1 महीने तक हम पोषण माह मनाते हैं और सही पोषण देश रोशन का संकल्प जन जन तक इस दौरान पहुंचाया जाता है।
1: जी हाँ श्रमिक साथियों, अगर हमारे देश की ज्यादातर आबादी स्वस्थ रहेंगी ना, तो देश को दक्ष और सक्षम कार्यबल मिलेगा।
0: बिल्कुल,
1: जब लोग ज्यादा अच्छे से लंबे समय तक अपना काम करेंगे, तो यकीनन देश विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा।
0: बिल्कुल, ये बात तुमने सही कही जया, लेकिन इसी श्रृंखला में एक और बात मैं जोड़ना चाहती हूँ।
1: ओ, कौन सी बात है?
0: अब बहुत जरूरी बात है, वो ये है जया, कि जब हम राष्ट्र विकास की बात करते हैं ना, सबके अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो हमें इसमें नशा एक बहुत बड़ा बाधक नजर आता है। नशा मन को, शरीर को, कार्यक्षमता को, घर को, समाज को, मानो सब कुछ बर्बाद कर देता है जया। इसलिए किसी भी तरह के नशे से हमेशा दूर रहना भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी माना जाता है।
1: और श्रमिक साथियों, कहा भी जाता है नशा नाश का कारण है। नशा किसी भी परिस्थिति में दुख को भूलने का, दर्द को कम करने का और खुशी के इजहार का साधन नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: और नशा सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का कारण है। इसलिए नशे को हमेशा ना कहें और जिंदगी को हाँ कहें।
0: क्या बात है, इसलिए कहा जाता है कि अपनी रगों में नशा नहीं बल्कि जिंदगी को दौड़ने दीजिए। बिल्कुल सही ये बात तुमने कही। चलो इसे खुशहाल से जिंदगी को हाँ करते हैं और इस समय सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत जो हमने तैयार किया है अपने श्रमिक साथियों के लिए।
1: तो चलिए सुनते हैं।

0: सचमुच मीनाक्षी, गीत और संगीत जिंदगी के सबसे खूबसूरत एहसास होते हैं क्यों? और मालूम है, हाँ, जब भी मैं बहुत खुश होती हूँ तो भी गीत सुन लेती हूँ, और अगर मन कभी खराब हो तो भी एक गीत जरूर सुन लेती हूँ।
1: बिल्कुल, ये गीतों का सिलसिला बाद में भी चलेगा, लेकिन अभी कुछ संदेश सुन लेते हैं।
2: आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: चलो जया, जो तुमने गीत संगीत की बात की थी ना, वाकई गीत संगीत से मेरा भी इतना ही प्यारा सा और गहरा रिश्ता है। लेकिन अब देखो, गीत संगीत ऐसी चीज़ ही होती है जो हर तनाव से हमें दूर रखते हैं। लेकिन श्रमिक साथियों, मुझे लगता है जिंदगी के इस तनाव को कम करने के लिए अपने रोजगार, अपने व्यवसाय से जुड़े रहकर अगर हम ईमानदारी से काम करें ना जया, तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत सुकून देने वाली चीज़ होती है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप मीनाक्षी जी। और श्रमिक साथियों, आप तो जानते ही हैं कि इन हम सबके पास बहुत से अवसर होते हैं, और इनकी पूरी जानकारी लेकर अगर आप काम करेंगे ना, तो निश्चित रूप से आप सफल जरूर होंगे।
1: बिल्कुल जया, और गर्व इस बात पर होता है जया कि अब हमारे देश में महिलाएं भी उद्योगों में पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं, और बहुत अच्छे, बहुत बड़े अच्छे व्यवसाय में वो बहुत तरक्की कर रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं, या मैं कहूँ कि इतिहास भी लिख रही हैं ना।
0: यानी कहा जाता है कि पहले ऐसा समय भी था कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ सिर्फ पुरुषों का ही वर्चस्व होता था, लेकिन आज हमारी जो महिलाएं हैं ना, वो जमीन से लेकर आसमान तक
1: हर जगह की उपस्थिति है ना,
0: परचम लहरा रही है। बहुत खुशी की बात है, और हम भी चाहते हैं कि हमारी जो भी महिलाएं हैं हमेशा आगे बढ़ते रहें।
1: बिल्कुल।
0: और मीनाक्षी दी, होटल व्यवसाय भी एक ऐसा क्षेत्र है ना जहाँ आगे आने में महिलाएं अभी भी थोड़ा सा हिचकिचाती हैं। उन्हें लगता है कि होटल व्यवसाय महिलाओं की बस की बात नहीं है।
1: लेकिन जया, जो भी महिलाएं ऐसा सोचती है ना, उनकी इसी सोच को बदलने के लिए होटल व्यवसाय में महिलाओं की भूमिका पर ही विशेष जानकारियों को समेटे हमने कार्यक्रम का अगला सेगमेंट तैयार किया है। आज हमारे साथ हैं उर्मिला रमेश, जो आपको बता रही हैं कि होटल व्यवसाय में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है और कैसे वो आगे आ सकती हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी ये विशेष वार्ता।
4: सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे देश के आर्थिक विकास से जुड़ा है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदमों का भी प्रतीक है। हमारे आज के इस कार्यक्रम का विषय है होटल व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी। प्रिय श्रोताओं, जब भी हम किसी होटल में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमारा स्वागत एक मुस्कान के साथ किया जाता है। कोई हमारा अभिवादन करता है, कोई हमारे सामान की व्यवस्था करता है, कोई हमारे ठहरने का प्रबंध करता है, तो कोई हमारे भोजन को स्वादिष्ट और यादगार बनाने में लगा होता है। इन सभी सेवाओं के पीछे अनेक लोगों का परिश्रम छिपा होता है। आज के आधुनिक होटल उद्योग में महिलाओं की भूमिका भी इसी परिश्रम का एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक हिस्सा बन चुकी है। एक समय था जब होटल व्यवसाय को केवल पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था। यह धारणा थी कि लंबे कार्य घंटे, रात्रि ड्यूटी, यात्रियों से निरंतर संपर्क और जिम्मेदारियों का दबाव महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन समय के साथ समाज की सोच बदली,

शिक्षा का विस्तार हुआ, महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा और रोजगार के नए अवसर सामने आए। परिणाम स्वरूप आज महिलाएं होटल उद्योग के लगभग हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सफल प्रदर्शन कर रही हैं। होटल उद्योग केवल भोजन और आवास तक सीमित नहीं है, यह एक व्यापक सेवा उद्योग है जिसमें अतिथि सत्कार, प्रबंधन, विपणन, पर्यटन, आयोजन, खानपान, वित्त, मानव संसाधन, सुरक्षा, तकनीकी सेवाएं और ग्राहक संबंध जैसी अनेक गतिविधियां शामिल होती हैं। इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। आज की संस्कृति में अतिथि देवो भव का विशेष महत्व रहा है। अतिथि का सम्मान करना, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना और उसे अपनापन देना हमारी परंपरा का हिस्सा है। यही भावना होटल उद्योग की आत्मा भी है। महिलाओं में स्वाभाविक रूप से धैर्य, संवेदनशीलता, संवाद कौशल और सेवा भावना जैसे गुण पाए जाते हैं जो इस उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। यही कारण है कि आज अनेक प्रतिष्ठित होटल समूह महिलाओं को नेतृत्व और प्रबंधन के अवसर प्रदान कर रहे हैं। आज यदि हम किसी बड़े होटल की कार्यप्रणाली पर ध्यान दें तो पाएंगे कि वहाँ महिलाएं केवल स्वागत कक्ष तक सीमित नहीं हैं। वे होटल प्रबंधक हैं, महाप्रबंधक हैं, शेफ हैं, मानव संसाधन अधिकारी हैं, विपणन विशेषज्ञ हैं, वित्त अधिकारी हैं, आयोजन विशेषज्ञ हैं और प्रशिक्षण अधिकारी रूप में भी कार्य कर रही हैं। इतना ही नहीं, कई महिलाएं अपने स्वयं के होटल, रिसोर्ट, रेस्तरां और कैफे का सफल संचालन भी कर रही हैं। यह परिवर्तन केवल शहरों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, इको टूरिज्म और स्थानीय भोजन पर आधारित छोटे छोटे आतिथ्य व्यवसायों में भी महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों ने स्थानीय संस्कृति, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों को पर्यटन से जोड़कर नए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि हुई है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। यदि हम होटल व्यवसाय की संरचना को समझें तो यह अनेक विभागों में विभाजित होता है। आइए संक्षेप में जानते हैं कि महिलाएं इन विभागों में किस प्रकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट ऑफिस की। इसे होटल का चेहरा कहा जाता है। यहाँ आने वाले अतिथियों का स्वागत किया जाता है, उनके ठहरने की व्यवस्था की जाती है और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस विभाग में कार्य करने वाली महिलाओं का विनम्र व्यवहार, प्रभावी संवाद क्षमता और धैर्य अतिथियों पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण विभाग है हाउसकीपिंग। इस विभाग का कार्य केवल सफाई तक ही सीमित नहीं है। होटलों की स्वच्छता, सजावट, कमरों की गुणवत्ता, वातावरण और अतिथियों की सुविधा सुनिश्चित करना इसकी जिम्मेवारी होती है। इस क्षेत्र में महिलाएं अत्यंत दक्षता और सूक्ष्मता के साथ कार्य करती हैं। इसके बाद आता है खानपान विभाग। पहले यह धारणा थी कि बड़े होटलों की रसोई में केवल पुरुष ही कार्य कर सकते हैं, लेकिन आज अनेक महिला शेफ अपनी रचनात्मकता, स्वाद और प्रस्तुति के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी हैं। वे केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न देशों के व्यंजन भी कुशलता से तैयार कर रही हैं। इसके अतिरिक्त फूड एंड बेवरेज सर्विस विभाग में महिलाएं ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर रही हैं। उनका आत्मविश्वास, व्यवहार कुशलता और पेशेवर दृष्टिकोण होटल की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आज के समय में इवेंट मैनेजमेंट भी होटल व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। विवाह समारोह, व्यावसायिक बैठकें, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न सामाजिक आयोजन बड़े पैमाने पर होटलों में आयोजित किए जाते हैं। इन आयोजनों की सफल योजना और संचालन में महिलाओं की अत्यंत सराहनीय भूमिका है। डिजिटल युग ने होटल व्यवसाय को भी नई दिशा दी है। अब होटल केवल भवन तक ही सीमित नहीं है बल्कि उनकी पहचान इंटरनेट, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन बुकिंग, सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग से भी जुड़ गई है। इस क्षेत्र में भी महिलाएं उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं। वे होटल की ऑनलाइन छवि बनाने, ग्राहकों से संवाद स्थापित करने, डिजिटल प्रचार

प्रचार करने और ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आज अनेक महिलाएं पर्यटन और आतिथ्य प्रबंधन की उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। देश के विभिन्न होटल प्रबंधन संस्थानों से प्रशिक्षित होकर वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की भागीदारी केवल संख्या में ही नहीं बल्कि गुणवत्ता और नेतृत्व के स्तर पर भी निरंतर बढ़ रही है। होटल उद्योग केवल रोजगार का माध्यम नहीं है, यह आत्मविश्वास, व्यक्तित्व विकास, संवाद कौशल, नेतृत्व क्षमता और आर्थिक आत्मनिर्भरता का भी सशक्त माध्यम है। जब कोई महिला इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करती है तो वह केवल स्वयं का ही नहीं बल्कि अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरित करती है। आज की युवा पीढ़ी के सामने होटल उद्योग एक आकर्षक और संभावनाओं से भरपूर करियर के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। यदि उचित प्रशिक्षण, सुरक्षित कार्य वातावरण और समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं तो महिलाएं इस उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी केवल अवसर मिलने से संभव नहीं होती। इसके लिए सुरक्षित वातावरण, समान अवसर, सम्मानजनक व्यवहार और सामाजिक सहयोग भी उतना ही आवश्यक होता है। होटल उद्योग में भी महिलाओं ने अपनी मेहनत और लगन से स्थान बनाया है, लेकिन यह यात्रा पूरी तरह आसान नहीं रही। सबसे पहली चुनौती है कार्य के लंबे और अनियमित घंटे। होटल उद्योग 2400 घंटे संचालित होता है। अतिथि किसी भी समय आ सकते हैं और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान हर समय रखना होता है। ऐसे में सुबह, शाम और रात्रि की अलग अलग पालियों में कार्य करना पड़ता है। विशेषकर त्योहारों, विवाह समारोहों, सम्मेलनों और पर्यटन के व्यस्त मौसम में कार्य का दबाव और अधिक बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं के लिए परिवार और कार्य के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती है सुरक्षा और सम्मानजनक कार्यस्थल। होटल उद्योग में विभिन्न प्रकार के लोगों से निरंतर संपर्क रहता है, इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक कर्मचारी, विशेषकर महिला कर्मचारियों को सुरक्षित और गरिमापूर्ण वातावरण प्राप्त हो। यह केवल कानून का पालन करने का विषय नहीं है बल्कि एक स्वस्थ और सकारात्मक कार्य संस्कृति का भी आधार है। जब कर्मचारियों को सम्मान मिलता है तब वे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। तीसरी चुनौती सामाजिक सोच से जुड़ी है। आज भी कुछ स्थानों पर यह धारणा है कि होटल उद्योग महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। रात्रि की ड्यूटी, विभिन्न लोगों से संवाद और व्यावसायिक यात्राओं को लेकर कई प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की जाती हैं, लेकिन बदलते समय के साथ यह सोच अब भी धीरे धीरे बदल रही है। आज हजारों महिलाएं होटल उद्योग में उत्कृष्ट कार्य करते हुए यह सिद्ध कर चुकी है कि योग्यता का संबंध किसी के लिंग से नहीं बल्कि उसकी क्षमता, मेहनत और समर्पण से होता है। समाज भी अब महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व को पहले की तुलना में अधिक स्वीकार कर रहा है। इन चुनौतियों के समाधान में शिक्षा और कौशल विकास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। होटल उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जहां व्यवहार कौशल, भाषा ज्ञान, व्यक्तित्व विकास, स्वच्छता, अनुशासन, टीम वर्क और तकनीकी दक्षता का विशेष महत्व होता है। देश में अनेक होटल प्रबंधन संस्थान और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र युवाओं को इस क्षेत्र के लिए तैयार कर रहे हैं। यहां फ्रंट ऑफिस, फूड प्रोडक्शन, फूड एवं बेवरेज सर्विस, बेकरी, हाउसकीपिंग, होटल प्रशासन, ग्राहक सेवा, पर्यटन प्रबंधन तथा आतिथ्य प्रबंधन जैसे विषयों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन संस्थानों में बड़ी संख्या में छात्राएं प्रवेश ले रही हैं और अपनी प्रतिभा के बल पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार प्राप्त कर रही हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यदि उचित प्रशिक्षण और अवसर मिले तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। आज भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारें भी महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास पर विशेष बल दे रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने होम स्टे, स्थानीय भोजन, पारंपरिक
हस्तशिल्प, सांस्कृतिक पर्यटन और ग्रामीण आतिथ्य सेवाओं के माध्यम से रोजगार के नए अवसर विकसित किए हैं। इससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिला है और महिलाओं की आय में वृद्धि भी हुई है। होटल उद्योग में महिलाओं की सफलता का सबसे बड़ा आधार है आत्मविश्वास, निरंतर

0: सीखने की इच्छा और सकारात्मक दृष्टिकोण। आज भारत की बेटियां यह सिद्ध कर रही हैं कि वे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, चाहे होटल प्रबंधन हो, पर्यटन हो, उद्यमिता हो, पाक कला हो या नेतृत्व, हर क्षेत्र में वे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। अपने विचारों का समापन मैं स्वामी विवेकानंद के एक प्रेरक संदेश के साथ कर रही हूँ। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ कि होटल व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी आने वाले वर्षों में और अधिक सशक्त, व्यापक और प्रेरणादायक बनेगी, मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी जया उर्मिला रमेश ने। श्रमिक साथियों, इस जानकारी के साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपके अधिकारों की रक्षा के लिए हमारी भारत की सरकार ने 4 नए लेबर कोड बनाए हैं। वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता। आप इन लेबर कोड का ध्यान रखें, इनकी जानकारी लें और इनका लाभ जरूर उठाएं। क्यों जया?
2: और लेकिन इस समय हमारे साथ आनंद लीजिए प्यारे से गीत का।
1: बिल्कुल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रमिक साथियों का कार्यक्रम श्रमिक लोक। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। उन्होंने चेतावनी दी कि गैर भारतीयों द्वारा इस प्रक्रिया में भाग लेना एक दंडनीय अपराध है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 में झारखंड के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने झारखंड पवेलियन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य के 6 जीआई टैग प्राप्त पारंपरिक वस्त्र उत्पादों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाकर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। हजारीबाग में आयोजित 2 दिवसीय उड़ान लाइफस्टाइल एग्जीबिशन में देश भर की महिला उद्यमियों ने शिरकत की। केंद्र सरकार की नीतियों और आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर महिलाएं न केवल खुद का व्यवसाय चला रही हैं बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ रही हैं। गुमला में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रांची टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के क्लर्क रंजित कुजूर और सेवानिवृत्त शिक्षक वत्स रविकांत को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के डीएसपी के नेतृत्व में आई टीम दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रांची ले गई है। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में आज सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे में हजारीबाग पुलिस के एक जवान की मौत हो गई जबकि 3 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। चलकुशा थाने की पुलिस टीम मैथन में छापेमारी कर सरकारी वाहन से वापस लौट रही थी तभी NH-19 पर गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। पलामू के चैनपुर में आज प्रमंडल स्तरीय 65वीं सुबर्तो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ हुआ। उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनोया सब किसान भाई बहन मन के कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
1: विष्णु कर जोहार।
0: और ये कार्यक्रम का प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो आज का हमरे ये कार्यक्रम में जानकारी करब से के बताए दो थे। हमरे सबसे पहले मौसम कर जानकारी करब। आज की बात में धान कर फसिल में अधिकतम उपज कैसे बढ़ाल जाए सेकर बारे में बतावें विशेषज्ञ डॉक्टर कार्तिक शर्मा। कृषि विकास गीत सुनब अजीत कुमार महतुर संगीमन कर गावल। और

0: एगो कृषक मित्र नरेश पौराणिक शरण के भेंट भी करवा।
1: तो देखो मौसम कर हाल खबर हमरे के होए के चाहिए, और जे मौसम कर जानकारी होएला तो इकर से हमरे के सबे काम में बेस लगेला।
0: माने हाँ, मतलब कहे न मौसम पूर्वानुमान है ने, तो पहले जब अगर मौसम कर जानकारी हो गया कि पानी आवे कि पत्थर आवे कि आंधी आवे कि तूफान आवे, तो वह अनुसार जैसे किसान भाई बहन मने अपन योजना बनावे
1: एकदम।
0: तो आज कर मौसम का है इसके बताए दो।
1: आज कर मौसम विभाग बट से भेटाल सूचना कर मुताबिक आज कर मौसम कर जे तापमान रहे वो ई तरी रहे कर अनुमान लगा गलक है। झारखंड राज्य कर राजधानी रांची कर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, और रामगढ़ कर अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, और लातेहार कर अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, और गुमला कर अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, और सिमडेगा कर अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, और कोनो कोनो क्षेत्र में पानी आवे कर भी संभावना है।
0: तो मौसम कर बाद में आओ हमरे जानकारी कर थी आज की बात में धान की फसल से अधिकतम उपज कैसे प्राप्त करें, और इके बताते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर कार्तिक महतो और इनकर से भेंट करत हैं मनोज कुमार।
2: किसान भाइयों नमस्कार, आज हम जानेंगे धान की फसल से अधिकतम उपज कैसे प्राप्त करें। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कार्तिक शर्मा, वैज्ञानिक ICAR IIAB नामकुम रांची। शर्मा जी आपका हमारे कार्यक्रम स्वागत है, नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
2: बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, और अभी चूंकि धान का समय भी है और बहुत सारे किसान भाई धान के खेतों में लगे हुए हैं, तो धान की फसल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि धान की फसल से हम अधिकतम उपज कैसे प्राप्त करें, धान की फसल लगाने के तरीके क्या हैं, उपयुक्त समय क्या होता है।
3: नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया है। अभी सीजन भी चला हुआ धान का, खरीफ सीजन जिसको हम बोलते हैं, तो धान को लगाने के लिए यहाँ पे हमारे झारखंड में लगभग पूरे देश में दो तरीके हैं, दो तरीकों से हम धान को अपनी फसल को लगा सकते हैं। एक तो हम जैसे हमारे किसान भाई बहन करते हैं, धान का पहले बिछड़ा करेंगे उसके बाद उसकी रुपाई करके लगाएंगे, और दूसरा जो तरीका है कि हम धान को सीधा बिजाई कर सकते हैं, सीधा मतलब सूखी कंडीशंस में, उसमें आपको जो आपका भूमि है उसको कद्दू करने का, पडलिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, पडलिंग करने का जरूरत नहीं है। तो धान को हम दो तरीके से लगा सकते हैं, एक रोपाई करके, रोपाई के लिए आपको उसको पनीरी तैयार करना पड़ेगा, पोत तैयार करना पड़ेगा, एक महीना लगेगा उसमें संसाधन ज्यादा लगते हैं। और सीधी बिजाई में आपको जैसे हम बाकी फसलें बिजाई करते हैं लाइनों के अंदर, वैसे सूखे बदतर कंडीशन में हम फसलों को, हम अपने धान के बीज को लगा सकते हैं, जिसको हम धान की सीधी बिजाई बोलते हैं। और धान की सीधी बिजाई भी दो तरीके से हो सकती है, जिसमें हम अपनी भूमि को थोड़ा सा वेट रखेंगे, थोड़ा सा गीला रखेंगे, और एक दूसरा इसमें हम अपनी भूमि को थोड़ा सूखा रखेंगे, तो यानी कि वेट DSR जो हम गीली कंडीशन में करते हैं, और ड्राई DSR जो हम थोड़ा सूखा कंडीशन में करते हैं। तो दो तरीके से मुख्यतः हमारे यहाँ पे धान लगाया जाता है।
2: सर ये सीधी बुवाई के बारे में बात कर रहे हैं, और बहुत सारे किसान रोपाई करते हैं, तो ये श्री विधि से जो हम लोग खेती करते हैं ये दोनों इसमें लागू हो सकता है क्या?
3: हाँ जी, जैसे धान की सीधी बुवाई जो अभी ये टॉपिक है, अब सीधी बुवाई क्या है कि आपको जैसे अगर प्रति एकड़ की बात करूं तो प्रति एकड़ इसमें सिर्फ 8 से 10 केजी सीड आपको चाहिए, बीज चाहिए, उत्तम किस्मों का बीज जो झारखंड के लिए उत्तम किस्में हैं वो उस किसान भाई अपना चुनाव करे, 8 से 10 केजी सीड प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें लगेगा। और इसमें जैसे हम खेत को तैयार करते हैं, जैसे इसमें धान के लिए सीधी बिजाई के लिए एक बार हम कल्टीवेटर चलाएंगे खेत में, दो बार हैरो और एक बार हम प्लैंकर स्वगा जिसको हम बोलते हैं, तो वैसे हम अपने खेत को तैयार करके अच्छे से लेवल करके तो वो खेत उपयुक्त है धान की सीधी बिजाई करने के लिए। और इसमें जैसे 8 से 10 केजी बीज जो हमारे को जो हमने लेना है, तो उसको उससे पहले उसमें क्या करना है, बीज उपचार जो बहुत ही मुख्य है, बीज उपचार करेंगे तो जो आगे आने वाली बीमारियां हैं, कीड़े हैं, वो नहीं आएंगे। तो बीज उपचार करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सारे किसान भाई बहनों को, जैसे अगर एक एकड़ में आप 10 केजी बीज ले रहे हो तो 10 केजी बीज के लिए 10 ग्राम एक दवा है, उसका नाम है बावेस्टिन, ठीक है, कार्बेंडाजिम या बावेस्टिन के नाम से आता है, 10 ग्राम दवा बावेस्टिन और उसके साथ 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ये दो केमिकल्स हैं जो आप 10 केजी बीज के साथ उपचार करके 10 लीटर पानी लेके उसमें घोल के उसको एक पूरा रात छोड़ दीजिए, और सुबह यानी कि अगले दिन बीज को निकाल के छान के उसको छाया में सुखा लीजिए 2 घंटे के लिए, तो

0: बहुत टाइम से हम रुपाई करते आ रहे हैं। और जैसा कि अभी समय है कि जैसा आप देखोगे इस साल ये एलिनो का वर्ष है, एलिनो का ईयर है, तो वर्षा भी कम हो गई है टाइम के साथ, समय के साथ साथ। और हमारे पास संसाधन, जो बाकी संसाधन है वो भी सीमित संसाधन है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास भरपूर संसाधन है, हमारे पास पानी की कमी है। हमारी जो भूमि है दिन प्रतिदिन उसका जो फर्टिलिटी है, जो उसका
1: अच्छा
0: क्वालिटी है, वो
1: अच्छा
0: कम होता जा रहा है। तो इसमें जब हम सीधी बुआई करते हैं, सबसे पहला जो बेनिफिट है, सबसे पहला जो लाभ है, लगभग 15 से 30% पानी की बचत होती है। सीधी जो पानी हम इस फसल में लगाएंगे रोपाई करके, वो पानी हम कहीं और किसी फसल के लिए उसको उपयोग में ला सकते हैं। 15 से 30% तो हमारा पानी का बचत है सीधा। दूसरा जो हमारा सबसे मुख्य जो लाभ है वो है हमारा आजकल जैसे लेबर का, रोपाई करने में हमारे को लेबर चाहिए, ठीक है। अब लेबर बाहर से लाओगे या आप अपनी फैमिली लेबर यूज करोगे तो उसमें भी खर्चा आता है ना। तो इसमें हम सीधी बिजाई करेंगे तो हमारे को कम से कम लेबर चाहिए वहां पे, लगभग 50% लेबर की बचत है सीधी सीधी बिजाई करने के लिए। दूसरा सबसे मुख्य जो बिंदु है। और तीसरा अगर मैं बात करूं हमारे पर्यावरण के संक्षेप में, पर्यावरण से संबंधित, जैसे हम जब रोपाई करते हैं तो धान के खेत में मिथेन एक गैस है जो हमारे ग्रीन हाउस गैस में और जो बाद में तापमान बढ़ाता है हमारे एनवायरनमेंट का। तो अगर हम सीधी बिजाई करते हैं तो मिथेन का जो प्रोडक्शन है, जो मिथेन गैस बनती है धान के फील्ड से, वो गैस कम बनेगी या बिल्कुल बनेगी नहीं अगर हम कंपेयर करें उसको अपने रोपाई वाले फील्ड से। तो ये तीन मुख्य बेनिफिट हो गए। और तीसरा अगर मैं बात करूं, जब हम बार बार अपने खेत को कादो करते हैं, बार बार हम अपने खेत को पडल करते हैं, तो जो धान जो हमारा फील्ड है, फील्ड के नीचे जो 15 सेंटीमीटर के नीचे की लेयर है, एक वो पूरा हार्ड पैन बन जाता है, पूरा एक टफ लेयर, एक पूरा ऐसा लेयर बन जाएगा, उसके नीचे जड़ों का विकास नहीं होगा। और जब हम सीधी बिजाई करेंगे तो जो मिट्टी का, भूमि का जो स्ट्रक्चर है, जो भूमि का जो गुणवत्ता है, वो अच्छा होता है। और एक जैसे हम हमने सीधी सीधी बुआई किया तो हमने बिछड़ा नहीं किया, हमने नर्सरी नहीं किया, तो नर्सरी का जो इनिशियल का 20-25 से 30 दिन है
1: समय
0: वो
1: बचा।
0: समय भी बचता है। और बाद में जैसा अगर हम हमारे को रबी में कोई फसल लेनी है तो उसके लिए हमारे
1: ले सकते
0: पास
1: हैं।
0: 20 से 25 दिन ज्यादा मिलते हैं। तो ये सारे हमारे मुख्य लाभ हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, जो सीधी बिजाई में हमारे को ज्यादा मिलते हैं,
1: सही बात
0: उसमें
1: है।
0: नहीं मिलते। हाँ
1: तो
0: जी
1: अगर हम प्रबंधन और किस्में की बात करें तो कौन कौन सी किस्में हो सकती है और कैसे प्रबंधन कर सकते हैं?
0: हाँ जी हाँ जी। अब सीधी बिजाई के लिए अगर हम मैं बात करूं कि आपको जैसे मैंने बताया कि बीज उपचार करके लगाना है सबसे प्रथम, ठीक है। उसके बाद बीज की मात्रा 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से उसको लाइंस में लगाना है, ठीक है। अब उसके साथ साथ प्रबंधन अगर हम करेंगे तो उसमें जैसे यूरिया, यूरिया कितना डालना है, फॉस्फोरस कितना डालना है, पोटाश कितना डालना है। अब यहाँ के संक्षेप में, यहाँ हमारे
1: परिप्रेक्ष्य
0: झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो हमारी यूरिया की मात्रा है वो रहेगी, जो नाइट्रोजन की मात्रा है, नाइट्रोजन की मात्रा रहेगी 30 केजी प्रति एकड़, और फॉस्फोरस की मात्रा रहेगी 12 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ साथ हम जिंक डाल सकते हैं 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। ये सब चीजें हमारे को डालना है। और यूरिया, आधा यूरिया मतलब आधा जो नाइट्रोजन है और पूरा फॉस्फोरस और पूरा जिंक, ये सभी डालना आपको बुआई के टाइम पे। बुआई जैसे हम बिजाई करते हैं तो सारा मतलब आधा पूरा पूरा फॉस्फोरस और पूरा जिंक, सारी की सारी मात्रा आपको बिजाई के टाइम पे डालनी है। और बाकी जो आपका आधा यूरिया बचा हुआ है उसको आप 30 से 45 दिन के बीच में डाल सकते हो। तब हम इसको इसका प्रबंधन अच्छे से करेंगे, खार मतलब अगर हम फर्टिलाइजर के उसमें देखें।
1: खाद के बारे में बात कर रहे हैं तो जैविक खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें कि यूरिया खाद ज्यादा इस्तेमाल कर सकते
0: हाँ,
1: हैं
0: जैविक
1: रासायनिक?
0: खाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जैसे अगर हमारे को जैविक खाद यूज प्रयोग करना है, जैसे हमारा गोबर खाद, गड़ा सड़ा गोबर खाद, उसको हम जो धान में बिजाई करनी है उससे 10 से 15 दिन पहले डालना है,
1: अच्छा
0: ताकि वो, और अगर हम एकदम फसल के साथ डालेंगे तो उसमें पार्शियल इमोबलेशन होता है, उसमें फसल का विकास रुकता है। तो जो भी अगर हम 20 टन प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर खाद डाल रहे हैं तो उसको बिजाई से
1: पहले डालना है
0: 10 से 15 दिन पहले डालना है।
1: और
0: हाँ जी
1: अगर यूरिया खाद डालना है तो एट टाइम हम लोग डाल
0: हाँ, वो
1: सकते
0: टाइम
1: हैं।
0: के उस पे।
1: और किस्में की बात करें तो
0: हाँ जी, किस्मों झारखंड के लिए सबसे जो उत्तम किस्म है, जो अभी हमारे संस्थान ने भी डेवलप की है, IAB 5, IAB धान 5, और एक इसके साथ किस्म है सहभागी धान, और इसके साथ है CR 370। ये तीन धान की किस्में हैं जो इस सीधी बिजाई के लिए बहुत उपयुक्त है, उसके साथ साथ ललाट है एक वैरायटी, वो भी हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बहुत एक उत्तम किस्म है, वो हम सभी किसान भाई बहन को रिकमेंड करते हैं कि वो ले सकते।
1: और इसमें कुछ ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं या फिर समस्या भी कुछ आती है क्या?
0: हाँ जी, हाँ जी, सबसे जो मुख्य समस्या है जो धान की सीधी बिजाई में आती है वो है हमारा खरपतवार का समस्या। खरपतवार मतलब ऐसे जो पौधे

0: जो धान के साथ उग के आते हैं, खुद से उगते हैं। जो मुख्य खरपतवार हमारे सीधी बिजाई में धान में होते हैं, उसमें सबसे सबसे जो मुख्य खरपतवार है सांवक, सांवक का पौधा, ठीक है, चीनी घा, ठीक है, एक लेप्टोक्लोवा, इस टाइप के। और ये मतलब इतने ज्यादा विग्रस होते हैं क्योंकि आपका पौधा, धान का पौधा भी छोटा है, उसके साथ साथ आपके खरपतवार भी आते हैं, तो ये पूरा कंपटीशन देते हैं, पूरा कंपीट करते हैं अपने धान के प्लांट्स के साथ, तो उसके जो विकास को रोक देते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण अगर हमारे किसान भाई बहनों ने अच्छे से कर लिया तो जो पैदावार होगा वो ट्रांसप्लांटेड यानी कि रोपाई वाली विधि के बराबर होगा। आप खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर आपने आज धान लगाया, आज आपने बिजाई की है, तो दो दिन के अंदर अंदर, दो दिन के अंतराल पे एक हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड का नाम आपका पेंडीमिथिलिन, पेंडीमिथिलिन उसका केमिकल नाम है, और स्टोम्प के नाम से आता है, स्टोम्प 30EC के नाम से आता है, बाजार में जाओगे मिल जाएगा। तो उसका 1200 ml यानी एक से एक लीटर के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करिए बिजाई के दो दिन के अंदर अंदर। जैसे आज आपने बिजाई किया तो कल और परसों तक दो दिन में उसको छिड़काव कर दीजिए। और छिड़काव करने के लिए जो नोजल आपको प्रयोग करना है वो आपको फ्लड जेट नोजल यूज करना है, फ्लड जेट। और पानी जो चाहिए उसमें लगभग 200 लीटर पानी, 150 से 200 लीटर पानी चाहिए। एक स्प्रे आपने दो दिन के अंदर अंदर किया, फिर आपका जब पौधा 25 से 30 दिन का हो जाएगा तो एक दूसरा हर्बिसाइड है, उसको हम बोलते हैं बिसपायरीबैक सोडियम, नोमनी गोल्ड के नाम से आता है, नोमनी गोल्ड। तो उसका 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना, प्रयोग करना है। उसमें जो नोजल लगेगा, जो ये छोटी छोटी बातें हैं सर, अगर ये किसान भाई बहन करेंगे तो बहुत अच्छा सा कंट्रोल होगा। उसमें पहले वाले स्प्रे में नोजल यूज हुआ है फ्लड जेट नोजल, दूसरे बार जो हमने स्प्रे किया नोमनी गोल्ड का, उसमें जो नोजल यूज होगा वो होगा फ्लैट फैन नोजल, और पानी की मात्रा पहले वाले से कम, क्योंकि पहले में हमारे को भूमि को भिगोना है, दूसरे में हमारे को पौधे को भिगोना है। तो लगभग 120 लीटर पानी, 100 ml बिसपायरीबैक सोडियम नोमनी गोल्ड और फ्लैट फैन नोजल, ये आप कर दीजिए 25 से 30 दिन के आसपास, तो आपके खरपतवार 90% खरपतवार आपके कंट्रोल हो जाएंगे। और एक आप एक हम इसमें रिकमेंड करते हैं ये हमारा यूनिवर्सिटी, कि आप एक निराई गुड़ाई कर दीजिए 35 से 40 दिन के आसपास, तो मुख्य सारे आपके खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे।
1: जैसे कि मौसम तो अनिश्चितता है, पानी के आता है कभी नहीं भी आता है, तो अगर नहीं आया तो सिंचाई की कुछ व्यवस्था भी हम लोग कर सकते हैं क्या?
0: हाँ जी, इसमें यही सबसे बड़ा जो इसका लाभ है सीधी बिजाई का, यही है। अब रोपाई करके हमारे को धान में पानी खड़ा रखना पड़ता है लगभग 45 दिन तक। अब सीधी बिजाई करेंगे तो पानी को खड़ा रखने का जरूरत नहीं है। आपको जैसे आपने आज बिजाई किया, आपने 4 से 5 दिन के बाद एक सिंचाई किया है, उसके बाद आप हर हफ्ते के अंतराल पे एक सिंचाई कर सकते हो। जैसे उसको बदतर कंडीशन में रखना है, इसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी पे रखना है, एक हफ्ते में एक सिंचाई करिए, वो उपयुक्त, वो बहुत है। और जैसे अभी मॉनसून सीजन चला है तो बारिश हो रही है, तो आपको सिंचाई करने की भी आवश्यकता नहीं है। और इसमें सर मैं आपको एक चीज मैं किसान भाई भाई को जरूर बताना चाहूंगा कि दो स्टेज है हमारे धान की, दो स्टेज है, उस पे अगर पानी की कमी हुई तो आपको सीधा 50% का लॉस होगा। जो दो स्टेज है, एक तो हम उसको बोलते हैं बालियां निकलना, जो धान की पेनिकल्स होते हैं जब वो निकलते हैं उस स्टेज पे पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा जब दाना बनता है, जब उसमें मिल्किंग स्टेज बोलते हैं उसको, जब दाना बनना शुरू होता है। तो दो स्टेज है, बालियां निकलने वाली स्टेज, और दूसरा कि आपका जब दाना बन रहा है उस समय पे पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, उस टाइम पे आपको सिंचाई करनी है, कहीं कैसे भी अरेंज करके पानी आपको बचा के रखना है, तब आप उसको सिंचाई करिए, तो आपकी धान बहुत अच्छा प्रोडक्शन, बहुत अच्छा उत्पादन आपको देगा।
1: सही बात है, किसान भाइयों खेती बाड़ी तो करते हैं पर जानकारी के अभाव के चलते में हम लोग को अधिकतम फसल नहीं ले पाते हैं। तो किसान भाइयों आज आपने जाना कि धान की फसल से अधिकतम उपज हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए मौजूद थे डॉक्टर कार्तिक शर्मा। शर्मा जी आप हमारे स्टूडियो में आए और अतिरिक्त जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: तो एखन हमारे मन सुनत रही धान कर फसल से अधिकतम उपज कैसे प्राप्त करें, और इनके बतात रहे विशेषज्ञ डॉक्टर कार्तिक शर्मा और इनकर से गोठिया रहे मनोज कुमार।
3: तो भाई अब हमरे गीत के बाद में सुना, पहले हमरे किसान के सुना थे, कृषक मित्र है नरेश पौराणिक, और ये बतात हैं कि मने किसान कर जो सेवा है उकर में कृषक मित्र कर का भूमिका है से कर बारे में।
2: तो चलो सुनील,
3: किसानी को उन्नत बनाने में और नई वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोगशालाओं से निकालकर सीधे हमारे खेतों की जीवंत मिट्टी तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ी और मजबूत कड़ी होते हैं वे हैं हमारे कृषक मित्र। ये वे कर्मठ साथी हैं जो स्वयं मिट्टी से जुड़े हैं और सरकार व वैज्ञानिकों की कल्याणकारी योजनाओं को अत्यंत सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अनुभवी कृषक मित्र नरेश पौराणिक। आज इनसे हम विस्तार से जानेंगे कि इस बदलते मौसम में फसलों की देखरेख कैसे की जाए, सरकारी अनुदानों का लाभ कैसे उठाया जाए और कम से कम लागत में जैविक या आधुनिक तरीकों से उन्नत मुनाफा कैसे कमाया जाए। नरेश जी, आपको हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
4: आपको भी नमस्कार।
3: आप हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दे दीजिए कि आप कृषक मित्र हैं, कहाँ के कृषक मित्र हैं?
4: हम कृषक मित्र हैं रातू प्रखंड के ग्राम पुरियो के। हमको दो गांव दिया गया है, ग्राम पुरियो और परहेपाड।
3: आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि कृषक मित्र की हमने आपकी क्या भूमिका है इस क्षेत्र में।
4: हम इस क्षेत्र में किसानों को जो सरकारी योजनाएं आती है उसको किसानों तक पहुंचाने का काम, उसको करवाने का काम और उसका लाभ दिलाने का काम करता हूं।
3: अभी किसानों के लिए आपके पास सरकारी योजनाएं कौन कौन सी आई?
4: अभी सरकार की ओर से किसानों का जमीन का सर्वे कराया जा रहा है
3: जी,
4: जो एक ऐप बना है DCS डिजिटल क्रॉप सर्वे। तो हम लोग अभी सर्वे का काम कर रहे हैं और सर्वे का काम में किसान का खेत कैसा है, वो बंजर भूमि है, खेती युक्त जमीन है कि नहीं, अगर खेती योग्य जमीन है तो उसमें कौन कौन सी फसल लगे हुए हैं, ये सब जो है ऑनलाइन के माध्यम से सरकार के पोर्टल पर हम लोग भेजते हैं
3: जी। तो अभी सरकार द्वारा किसानों के लिए कौन सी फसलों को लगाने के लिए जोर दिया गया है?
4: सरकार अभी दलहन की खेती में ज्यादा जोर दे रही है
3: जी,
4: क्योंकि किसान जो है कि दलहन की खेती कम कर रही है और लत्तेदार सब्जी जो तुरंत मुनाफा हो उस पर ज्यादा जोर दे रही है। लेकिन सरकार का कहना है कि दलहन की खेती अति उत्तम है, उसको करना चाहिए। साथ साथ दलहन की खेती में अभी हम लोग जो है कि ब्लॉक के माध्यम से गर्मा मूंग, गर्मा मसूर, उड़द, अरहर, चना किसानों के खेतों में लगवाने का काम करते हैं
3: जी।
4: लेकिन अभी क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है तो गर्मा मूंग की खेती किसानों को अभी हमने कराया है, ग्राम पुरियों में किसान गर्मा मूंग लगाए हैं। ये बीज जो है निशुल्क किसानों को दिया गया है और हमारे किसान जो है कि बहुत अच्छी तरह से गर्मा मूंग की खेती किए हैं। इससे जो है कि किसान काफी खुश है कि मूंग की खेती हमने किया दलहन के रूप में।
3: तो ये जो दलहन की खेती किसान कर रहे हैं तो इसके लिए बीज जो है फ्री दिया गया है
4: जी। हमारे ब्लॉक में BTM होते हैं
3: जी,
4: प्रखंड तकनीकी प्रबंधक। तो कृषक मित्र और BTM के माध्यम से जो है कि जो भी सरकारी योजनाएं आती है वो किसानों तक पहुंचाते हैं हम लोग। अभी दलहन का जो बीज दिया गया है वो BTM के माध्यम से दिया गया है और कृषक मित्र किसानों को ला करके वो बंटवाए हैं और खेतों में लगवाए हैं। तो साथ साथ सरकार अभी मड़ुआ की खेती पर ज्यादा जोर दे रही है जिसको मिलेट मिशन कहा जाता है
3: जी।
4: क्योंकि पहले किसान मड़ुआ की खेती करते थे लेकिन आप धीरे धीरे मड़ुआ की खेती करना छोड़ दिए। तो सरकार का कहना है कि मड़ुआ की खेती से बहुत फायदे हैं, बहुत सी बीमारियां कंट्रोल में आती है, खाने में भी अच्छा लगता है। और सरकार जो है कि अभी एक और स्कीम चला दी है कि जो किसान मड़ुआ की खेती किए हैं उसको सरकार की ओर से प्रति एकड़ 3,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो हम जो है कि अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक मड़ुआ का खेती करवाते हैं और सरकार की जो ये 3,000 की जो योजनाएं हैं, जो प्रोत्साहन राशि है, अधिक से अधिक किसानों को दिलाने का काम हमने किया है।
3: किसान तो अपना खेती लगा दिए, खेतों में तो खाद की जरूरत पड़ती है।
4: बिल्कुल।
3: अभी कौन सी खाद के लिए सरकार के तरफ से जोर दिया गया है?
4: सबसे अच्छा चीज और खाद का जो जोर दिया गया है सरकार की ओर से, अगर रासायनिक खाद का प्रयोग किसान कर रहे हैं तो सरकार का कहना है कि नैनो यूरिया, नैनो DAP का प्रयोग करें। इससे क्या होता है कि अगर हम नैनो यूरिया या नैनो DAP का प्रयोग करते हैं तो संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग है ना पौधों के लिए किया जाता है, ना अधिक पड़े ना कम पड़े। अगर नैनो यूरिया का प्रयोग किसान कर रहे हैं तो 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में फसल में छिड़काव करे तो फसल को जो है कि हरा भरा रखता है और फसल का उपज भी अधिक होता है।

0: जी
1: साथ साथ सरकार जो है सागरिका खाद का प्रयोग करने के लिए कहते हैं, तो सागरिका खाद भी बहुत अच्छा खाद है। हम किसान भाइयों को यही सलाह देंगे कि नैनो यूरिया के साथ साथ सागरिका खाद का भी प्रयोग करें। इसके प्रयोग करने की विधि है 5 से 10 ml प्रति लीटर पानी में पौधों पर छिड़काव हमारे किसान भाई करें, ताकि पौधा जो है हिष्ट पुष्ट रहे और पैदावार अधिक हो।
0: जी एक योजना है फसल सुरक्षा योजना, तो फसल सुरक्षा योजना क्या है और इसके तहत किसानों को क्या लाभ होते हैं?
1: फसल सुरक्षा योजना के तहत जो है किसानों को फसल में लगे कीट व्याधि बीमारी जो होता है उससे बचाव हेतु कृषकों को 100% अनुदान में दवा का वितरण हम लोग कराते हैं
0: जी,
1: जो कि ये सरकार की तरफ से दिया जाता है। अभी हमने तत्काल में किसानों के बीच कीट व्याधि जो रोग होती है उससे बीमारी से बचाव के लिए नीम युक्त दवा एजा डायरेक्टिन का वितरण हमने कराया है, जो इसका प्रयोग जो है किसान 5 ml प्रति लीटर पानी में पौधों पर छिड़काव करे। इस दवा के छिड़काव से कीट व्याधि रोगों से निजात मिलता है और किसान के फसल अच्छे होते हैं। साथ साथ एमिडा क्लोरोप्रिड ये भी दवा वितरण कराए हम लोग, इसका प्रयोग किसान 1/2 से 1 ml प्रति लीटर पानी में इसका घोल बना करके पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा दवा हमने अनुदान के रूप में वितरण कराया है क्यूनाल फोस। क्यूनाल फोस का प्रयोग जो है 2 ml प्रति लीटर पानी में इसका छिड़काव कर सकते हैं। साथ साथ क्लोर पायरीफोस ये भी अच्छी दवा है, ये भी दवा किसान के बीच वितरण किए हैं, इसका कोई पैसा लिया नहीं गया है। इसका प्रयोग किसान 3 ml प्रति लीटर पानी में छिड़काव कर सकते हैं। साथ साथ हम लोग देखते हैं कि किसान खेती तो लगाते हैं
0: जी,
1: पौधा अच्छा होता है, लेकिन पौधों में बीमारी भी आने लगती है, जैसे फफूंद नाशी रोग जिसको हम लोग एक शब्द में बोलते हैं झुलसा रोग, है ना। तो इसके लिए भी हमने अभी किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट माने निशुल्क दवा दिए हैं, जो कि किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। वो दवा का नाम है कार्बेंडा जिम और दूसरा दवा है मोनेको जेब
0: जी।
1: कार्बेंडा जिम का प्रयोग जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में किया जाता है और मैनको जेब ये 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसका किसान भाई छिड़काव करे, ताकि फसल में जो झुलसा रोग हुआ है उससे निजात मिले, छुटकारा मिले और पौधा अच्छा हो, ताकि उपज अच्छी हो और मुनाफा भी अच्छा किसान को मिले।
0: तो इन सब के लिए किसान साथियों को ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है, उन लोगों को ट्रेनिंग की कोई सुविधा है कि खेती बाड़ी को हम कैसे अच्छे से कर सकें इसके बारे में?
1: हम लोग गाँव में किसान गोष्ठी का प्रोग्राम करते हैं
0: जी,
1: सभी किसान को या तो पंचायत भवन हो या सामुदायिक भवन हो या गांव का अखाड़ा हो, इसमें प्रायः किसान को जो पढ़ा लिखा हो, किसान गोष्ठी में जो चर्चाएं होती है कैसे अच्छी ढंग से आप खेती करें, जैविक खेती करें, जैविक खाद का प्रयोग करें, रासायनिक खाद का कैसे प्रयोग करें और आप खेती कर अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं, इसके लिए जो हम लोग किसान गोष्ठी होता है तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग जिला से प्रखंड से कृषि वैज्ञानिक जो होते हैं
0: जी,
1: उनको बुलाया जाता है। जैसे हमारे प्रखंड के BTM होते हैं, ATM होते हैं, साथ साथ अच्छे किसान होते हैं, तो सभी मिलकर के जो है कि खेती के बारे में चर्चाएं करते हैं ताकि अच्छा खेती हो। तो किसान गोष्ठी जो हम लोग करते हैं तो उससे सारी जानकारी किसानों को मिल जाती है कि कैसे खेती करें, वैज्ञानिक खेती करें। आजकल क्योंकि सरकार वैज्ञानिक खेती पर ज्यादा जोर दे रही है ताकि अधिक उपज हो, तो इस पर जो है कि हम लोग किसान गोष्ठी का कार्यक्रम कराते हैं और उसके माध्यम से जो है कि किसानों को जानकारी देते हैं कि अभी आप खेती कैसे करें, सरकारी योजनाएं क्या क्या है, इस कार्यक्रम के माध्यम से उसको किसानों के बीच हम लोग पहुंचाते हैं
0: जी।
1: साथ साथ हम लोग एक काम और करते हैं, कृषक पाठशाला। तो कृषक पाठशाला का जो प्रोग्राम होता है तो जो अच्छे किसान होते हैं, जो पढ़ा लिखा किसान होते हैं, उसको क्या करते हैं कि प्रखंड से बाहर हम लोग भेजने का काम करते हैं, ताकि जैसे जिला गया या राज्य गया तो उसमें जो है कि बहुत सारे किसान हर जगह से, हर प्रखंड से, हर जिला से आते हैं, तो दूसरे प्रखंड दूसरे जिले के किसान से भी मिलने का एक मौका मिलता है। तो इससे

0: क्या होता है कि नए नए खेती करने का तरीका पता चलता है और वो आकर के अपना खेती को अधिक बढ़वार देते हैं, अच्छे खेती करते हैं और साथ साथ अच्छा मुनाफा कमाने का काम करते हैं।
1: जी तो किसान भाइयों, आज हमारे कृषक मित्र नरेश जी ने हमें जो बहुमूल्य बातें बताई, चाहे वह आधुनिक खाद का संतुलन हो, जैविक खेती की खूबियां हो या फिर कृषि विभाग की सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठाना हो, ये सारी सरकारी योजनाओं की जानकारियां हमारी खेती को एक नई दिशा देने वाली है। उम्मीद है कि आप इन बातों को अपने खेतों में भी जरूर अमल में लाएंगे। तो नरेश जी, आपको हमारे स्टूडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: तो एखन हमारे मन सुनत रही कृषक मित्र नरेश पौराणिक कर बातचीत और इनकर से गोठिया रहे हमारे कर संगी कृष्ण जीवन पौराणिक।
1: तो देखो इकरे संगे किसान वाणी कार्यक्रम कर बेरा सिरालक। ई कार्यक्रम का प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
2: और प्रस्तुति रहे प्रभु शरण जी कर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारी दुनिया।

0: हमारी दुनिया कार्यक्रम सुनो या सब भाई बहन मन के एक बेर फिर से कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
1: विष्णु कर
0: जोहार।
1: और कहो का हाल समाचार है भाई।
0: हाल समाचार तो बढ़िया है। और देखो एखन 2-3 दिन से मौसम भी तनिक ना हिने सफा है ने। और एखन खेती लायक भी बहुत बढ़िया मौसम कर दिला के तो खेती बाड़ी भी बढ़िया से हुआ थे है ने।
1: और एक ठो बात बता चाहब कि एक ठो घर जा रही उकर में बेटा बेटी रहें तो एक ठो जो बेटा रहे वो इंग्लिश मीडियम जात रहे उकर से पूछ ली और एगो जो बेटी छुआ रहे वो सरकारी स्कूल जात रहे तो इकर में थोड़ा सा हम पूछ ली ऐसा काल है तो कुछ कुछ बताना कि अरे बेटी तो कुछ दिन मतलब कि रही घर में उकर बाद शादी विवाह करके दूसर बटे चल जाए ऐसा काल है।
0: तो देखो यह जो है मानसिकता जो है ने आप पहले भी ऐसी है जो कि बेटी के तो पढ़ावे नहीं करत रहे लेकिन एखन भी अगर मानसिकता इस तरह से है तो अच्छा बात नहीं है। काल के खन देखो बेटी मने जो है ने हर जगह जे बेटी मन के पढ़ात हैं देखो कितना आगे बढ़त है। एखन बेटी मने बैंक देखो या तो मने सेना में देखो और हर जगह देखो एखन कोर्ट कचहरी में सब जगह बेटी मन जो है से आगे आगे मने काम करत हैं और अच्छा से करत हैं
1: एकदम। और कहब तो मतलब बेटा छुआ से बेस उनकर में संस्कार भी है पढ़ाई लिखा मतलब कि शिक्षक भी बनत हैं वीडियो सीओ बहुत तरह मतलब कि फाइटर जे उड़ात हैं मतलब कि हर जगह तो बेटी छुआ मन आगे हैं।
0: तो भाई बेटी मने कहीं कमजोर न खाएं है ने और बेटी मन के पढ़ाना चाहिए और जो है से एखन देखते हैं कि कितना बढ़िया बेटी छुआ मने कितना अच्छा से काम करत हैं आगे बढ़त हैं। तो भाई अब देखो आज मंगर कर दिन है के और आज हमरे कर पसंद कर लोग गीत कर दिन है ने। तो आज हम सबसे पहले और करत है नागपुरी लोकगीत से देवदास विश्वकर्मा और संगी मनकर गावल है
1: तो चलो सुनी ला।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: तो अब हमरे मन पसंद कर लोकगीत में और एगो गीत कर ले कुरुमाली लोकगीत है अजीत कुमार महतो और संगीमनकर गावल के।

0: तो एखन हमरे मन सुनत रही नागपुरी लोकगीत में जानकी देवी और संगी मनकर गावल गीत के।
1: बड़ा बढ़िया एकदम बरसात कर मौसम के वर्णन रहे नहीं है। अब चलो आगे सुना थी खोरठा लोकगीत सोहित कुमार महतो और संगी मनकर गावल।
0: चलो सुनी ला।

0: तो यह गीत कर संगे हमारी दुनिया कार्यक्रम कर बेरा सिर अलग
1: और ई कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे प्रभु शरण जी कर।
0: तो सुनभिया भाई बहन मने अब्रावण कर संगे कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
1: विष्णु के देवविदा
0: जोहार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली हैं। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2026 के तहत झारखंड पवेलियन का उद्घाटन। राज्य के 6 GI टैग प्राप्त वस्त्र उत्पादों की

0: लगी प्रदर्शनी। राज्य भर के बूथों पर चुनाव पाठशाला और बीएलओ बीएलए की बैठक संपन्न। सीईओ ने कहा, एसआईआर में गैर भारतीयों का शामिल होना दंडनीय अपराध। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के खिलाफ अभ्यर्थियों ने जेपीएससी कार्यालय का किया घेराव। अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ फुटपाथ दुकानदारों ने भी किया प्रदर्शन। रांची में जगन्नाथपुर रथ यात्रा और मेले को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने कसी कमर। 16 से 25 जुलाई तक लागू रहेगी विशेष यातायात व्यवस्था। और ओमान में होने वाली महिला यूथ हॉकी फाइव साइड एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा, झारखंड के 6 खिलाड़ियां शामिल। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 में झारखंड के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने झारखंड पवेलियन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य के 6 जीआई टैग प्राप्त पारंपरिक वस्त्र उत्पादों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाकर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे, जिससे राज्य का विकास तेज होगा। राज्य में चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत चुनाव पाठशालाएं आयोजित की गईं। इस दौरान बूथों पर मृत, एब्सेंट और शिफ्टेड मतदाताओं की सूचियों को मिलान हुआ। इस कड़ी में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज लोहरदगा के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को एएसडीडी सूची के कड़े सत्यापन और केवल भारतीय नागरिकों के नाम जोड़ने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। उन्होंने चेतावनी दी कि गैर भारतीयों द्वारा इस प्रक्रिया में भाग लेना एक दंडनीय अपराध है। श्री कुमार ने बताया कि आगामी 22 जुलाई को होने वाली अंतिम बैठक में एएसडीडी सूची को अंतिम रूप देकर 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
1: 6 कैटेगरी का व्यक्ति है, उनके बारे में चर्चा होगी, उनका नाम ड्राफ्ट फॉर्म में नहीं आएगी। अतः एब्सेंट है, शिफ्टेड है, डेड, डुप्लीकेट, भारत का नागरिकता यहाँ छोड़कर दूसरा देश में नागरिकता प्राप्त कर लिया, उनका भी नाम ड्राफ्ट फॉर्म में नहीं जाएगी। फिर 22 तारीख को उसी सूची फाइनल किया जाएगी।
0: इस बीच रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि प्रपत्र वितरण और डिजिटाइजेशन का कार्य तेज है। उन्होंने वोटरों से बीएलओ को सहयोग करने की अपील की है।
2: लोकतंत्र में भागीदारी होने के लिए निश्चित रूप से मतदाता को इसमें आगे बढ़ चढ़कर बीएलओ को मदद करें और अपना एक गणना प्रपत्र भर के दे और एक अपने पास रखे ताकि रेफरेंस के लिए वो बाद में मदद। लास्ट डेट के लिए मेरा अनुरोध है जिला प्रशासन का, जिला निर्वाचन कार्यालय का, वेट न करें।
0: उधर गुमला में सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला और बीएलओ बीएलए 2 की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने 6 बूथों का औचक निरीक्षण कर गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने और हर पात्र नागरिक को जोड़ने का निर्देश दिया। खूंटी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदान केंद्रों पर लगाए गए शिविरों में मतदाताओं की भारी भीड़ देखी गई। लोग केंद्रों पर पहुंचकर फोटोयुक्त प्रपत्रों का सत्यापन कराते देखे गए। बिना मैपिंग वाले वोटरों का अन्य राज्यों की सूची से मिलान किया गया। राज्य के पूर्व मंत्री और धनबाद के पूर्व विधायक मन्नान मलिक का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए पहले विधानसभा परिसर लाया गया, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, मंत्री दीपक बिरुवा और विधायक कल्पना सोरेन ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उनके निधन को राज्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया।
3: उम्र उन्होंने खुद को समाज के लिए और आम जनों के लिए हमारे साथ विधानसभा में बतौर हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी के रूप में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। निश्चित रूप से आज जो वो हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी अनुभव, उनका जो समाज के प्रति दिया हुआ संदेश है वो हमारे बीच रहेगा।
0: इसके बाद उनका पार्थिव शरीर प्रदेश कांग्रेस भवन लाया गया, जहाँ मंत्री दीपिका पांडे सिंह और पूर्व केंद्र मंत्री सुबोध कांत सहाय सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम

0: इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में आज अभ्यर्थियों ने 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितता के विरोध में आयोग कार्यालय का घेराव किया। आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने प्रश्न पत्र लीक और सीटों की बिक्री का गंभीर आरोप लगाया है।
1: JPSC में जो बढ़ती गई अनियमितता उसके विरोध में हम सभी आज JPSC कार्यालय घेरने आए हैं। जो कटअप मार्क जारी नहीं किया गया, लगातार छात्र लोग अपनी बातों को रखने का काम JPSC और मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय के, फिर भी JPSC गहरी निंद्रा में सोई हुई है। को सड़क से लेकर सदन तक का पुरजोर विरोध करेंगे।
0: रांची को अतिक्रमण मुक्त बनाने के नगर निगम के अभियान के विरोध में आज फुटपाथ दुकानदारों ने निगम कार्यालय का घेराव किया। दुकानदारों का कहना है कि बिना नोटिस दिए उन्हें उजाड़ा जा रहा है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। धनबाद में मानसून के दौरान कोयले के निर्बाध उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए BCCL ने तैयारियां तेज कर दी हैं। CMD मनोज कुमार अग्रवाल ने बस्ता कोला विकास भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने खदानों में जल जमाव रोकने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।
2: हम सभी जानते हैं कि देश में कोयले की बहुत ही मांग है, थर्मल पावर को कोयले की बहुत आवश्यकता है, तो इस मानसून पीरियड में भी सुरक्षा सेफ्टी के साथ कोयले का निर्विघ्न डिस्पैच ट्रांसपोर्टेशन आदि होता रहे और अधिक से अधिक उत्पादन हो, इसी सारे विषयों पर मीटिंग ली गई। सबने विश्वास दिलाया कि बस्ता कोयला का जो टारगेट है 35.5 लाख टन, उससे भी अधिक ये बढ़कर करेंगे।
0: हजारीबाग में आयोजित 2 दिवसीय उड़ान लाइफस्टाइल एग्जीबिशन में देशभर की महिला उद्यमियों ने शिरकत की। केंद्र सरकार की नीतियों और आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर महिलाएं न केवल खुद का व्यवसाय चला रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ रही हैं।
3: अभी आर वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द मोदी जी, क्योंकि उनको देख के हमें ऐसा इंस्पिरेशन मिलता है। एंड हम लोग कोशिश करते हैं कि वुमेन को, बच्चों को या जिनको जरूरत है उनको हम काम देते हैं। उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वही हमारा भी नारा है। एंड कोशिश करेंगे कि और बढ़ाएंगे और उनसे प्रभावित होकर और अच्छा काम करें।
0: रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा और मेले के मद्देनजर सुचारू यातायात के लिए 16 से 25 जुलाई तक विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। ट्रैफिक SP राकेश कुमार सिंह ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई प्रमुख मार्गों पर रूट डायवर्जन और नो एंट्री लागू रहेगी। बिरसा चौक, प्रभात तारा मैदान और तिरिल मोड़ के पास पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। राज्य में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम केंद्र रांची ने आज राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देवघर, जामताड़ा और गिरिडीह समेत कई जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। ओमान के मस्कट में होने वाली महिला यूथ हॉकी 5-साइड एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीमों में झारखंड के 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। महिला टीम में संदीपा, पुष्पा, श्रुति, नीलम और खिल्ली कुमारी को, जबकि पुरुष टीम में आशीष तनीपूर्ति को जगह मिली है। हॉकी झारखंड ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2026 के तहत झारखंड पवेलियन का उद्घाटन। राज्य के 6 GI टैग प्राप्त वस्त्र उत्पादों की लगी प्रदर्शनी। राज्य भर के बूथों पर चुनाव पाठशाला और BLO BLA की बैठक संपन्न। CEO ने कहा, SIR में गैर भारतीयों का शामिल होना दंडनीय अपराध। 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितता के खिलाफ अभ्यर्थियों ने JPSC कार्यालय का किया घेराव। अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ फुटपाथ दुकानदारों ने भी किया प्रदर्शन। रांची में जगन्नाथपुर रथयात्रा और मेले को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने कसी कमर। 16 से 25 जुलाई तक लागू रहेगी विशेष यातायात व्यवस्था। और ओमान में होने वाली महिला यूथ हॉकी 5-साइड एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा, झारखंड के 6 खिलाड़ियां शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: से लेकर के 29 जुलाई तक हमारे सारे बीएलओ जो है एनुमरेशन फॉर्म लेकर के घर घर जाएंगे और घर घर जाने के बाद जितने भी हमारे मतदाता है वो उसको हस्ताक्षर करके वापस करेंगे और जिनका एनुमरेशन फॉर्म लौटेगा उन्हीं का फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जो 5 अगस्त को प्रकाशित होगी उसमें नाम आएगा। तो मेरा आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से निवेदन है कि अपना अपना एनुमरेशन फॉर्म भर के बीएलओ के माध्यम से उसमें वापस लौटा।
1: इधर लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुखदेव भगत ने एसआईआर कार्यक्रम के तहत बीएलओ के माध्यम से अपना गणना प्रपत्र भरकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं से समय पर गणना प्रपत्र भरने तथा एसआईआर की प्रक्रिया को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की। सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि
2: लोहरदगा के तमाम जनता से मेरा विनम्र निवेदन है कि मतदाता गहन परीक्षण एक लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसमें निश्चित रूप से सारे लोग की जिम्मेवारी बनती है कि आप अपना नाम जरूर सिर अंकित कराएं, क्योंकि ये आपकी पहचान के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसपे इसकी आवश्यकता है। तो आप इनका सहयोग करें, आपके बीएलओ आपके घर तक जाएंगे और अगर कोई कमी हो तो निश्चित उनसे संपर्क करें और अधिक से अधिक लोगों को इस पे इनरोल कराने का आप लोग सारे लोग प्रयास करें।
1: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने लोहरदगा जिला के किस्को एवं पेसरार में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी जनजातीय व्यक्ति के साथ उत्पीड़न, भेदभाव या सरकारी योजनाओं से संबंधित कोई समस्या होती है तो वह आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। लोहरदगा जिला में जिला फुटबॉल संघ के तत्वावधान में 17 जुलाई से नदिया हिंदू उच्च विद्यालय के स्टेडियम में जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारियां की जा रही है। इस मौके पर जिला फुटबॉल संघ के अभिनव सिद्धार्थ ने बताया कि फुटबॉल लीग के माध्यम से खिलाड़ियों को नशा से मुक्ति और रक्तदान के लिए जागरूक किया जाएगा। लोहरदगा जिला के ओयना टोंगरी में मिले 100 की गुत्थी मात्र चंद घंटे में ही पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 100 के अन्य हिस्से एवं हत्या में इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य सामान बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस कप्तान सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि
3: जो मृतक है उसके 2 मित्र थे जिनका नाम अरमान और सहबाज था। वो तीनों दिनांक 4 तारीख को सहबाज के घर में किसी प्रकार का पार्टी कर रहे थे जहां पे उन्होंने पिया खाया और किसी बात को लेकर आपसी विवाद हो गया जिसमें कुछ हाथापाई हुई जिससे मृतक के सर में चोट आया। उस बॉडी को अपने सहबाज के घर के आंगन में रख के पीसेस में करके 2 पार्ट में फेंका गया। उन्होंने अपने घटना में शामिल होने का स्वीकार किया।
1: लोहरदगा जिला में वर्षा शुरू होते ही किसान खेती के काम में लग गए हैं। कृषि विभाग की ओर से अनुदान पर बीजों का भी वितरण किया जा रहा है। किसानों को उम्मीद है कि इस वर्ष बेहतर पैदावार होगी। लोहरदगा जिला में रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। रथ यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा।
4: अभी आप सुन रहे थे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा।

0: आम्पे झाड़ी आदिवासी अखड़ा खड़िया लांग ओंडोर आयो आपा कुलम रो कुलम डाई किते इन सरोज क्रिकेटरो
1: अनुरंजन कीड़ो या
0: जोहार
1: जोहार
0: मुसा मांग तो है के आनी अखड़िया लांग बुंग कायम ओंडोर ना अब्बारू नेडा।

0: la ai pe kai mondo tening nasa lebu wa ikut maha mudai hege no honta yanu
1: ha bilkul
0: nasa ya chalte ga ania o o dura no khodi po da no samaj ya hain hoite tamga neda te स्कूल या कुड़ू की जो उकड़ा सेवन कराए थे कि विशेष करके को बेटा की नशा या बुड़ुलते डूबे तई में जे लेबू ते नशा या लत लागोटता होकर नशा तेगा डूबल आवना लामते उघे गामना नो नशा तेगा सही व्यवहार कराए ना उमाय सोचते उम बहुनता है
1: बिल्कुल उमाय सोचते दी जे लेबू नशा या शिकार है गोटता होकर परिवार उजड़े गोटता दी
0: हाँ
1: रो जे लेबू आरखी ताय डिसा आवता ओकरा परिवार लेरे लाडा सोन रो बारू आवता
0: जरूर
1: होकी अपन कुड आकुनते बारू बो पढ़ाई लिखाई कोन बारू गो जोंग अभियाना
0: पालते की
1: रो ओ दुराते प्रेम रो शांति बो बोरलता
0: की बोरलता की
1: जे लेबो गोलंग आरखी अशिकार हो गुटसी की होकी आ परिवार अशांति या ओ बोने
0: गुटता में
1: दियो बुल कोन ओ ते कॉलेज के अंदर होता अपन कामु ते बारू बो कामु ना उमाय पालते
0: उमाय पालते इकुल बारू काय कायम ते गामो बारूम कुप ते ओपसों ओपसों गोलंगार खिते उठते की उम बोलते कुड़ हाकुन ते अपन कौनसेल या इजो ध्यान उम बो कुड़ हाकुन ते पढ़ाय ना या आबा या इजो जिम्मेदारी उम बो ला आयो या अभीर की ते पाड़ो मावना कुड़ हाकुन जो आबा या दुलार उमाय कुते ओ ओ या ऊ दशा ते यो कुन हताश निराश हुई गोटता मैं उघे बुंग उकी अजिंगी या गोझुंग नेलुंग योता रो स्कूल पढ़े ना उमाय पालते नो होनता है
1: बिल्कुल उमाय
0: पालते उघे अनि उदाहरण अनेक योना पालते निंग खोड़ी पोदा ते ला हो कि आखिर ते ई करे ते मैं नो बाहर देश पर देश कामोना चलता मैं आयो आपा आपन ओ दुराते बारू बो चलाए ना उमकेर पालते नो होनता है
1: हाँ बिल्कुल मैं पालते ला मुगमती यो निंग ला नसा अतु तहसीर जेता बिहार बैठे हो जे अनि आयो की गा दोसीदार आई में इन आनो आयो की पेट नो गोजुंग सिनिंग ते आरखी गो लांग अपसंग ते की होजे गा झाड़ी लेबु सोंगता सोंगता उठते की वो नसा या शिकार अनि कुड़ की बोने ते में रो ओ परिवार मुगाम सेंगोर ना उमाय पालते में नो दी
0: हाँ को
1: रो खड़ी पौधा ते नो समाज या विकास उम होय ना पालते राज्य रो देश या विकास उम होय ना पालते
0: नशा रूपी ओ मुदय बुंग अनिंगते बांचेना इकु चाडवाई उम होनते
1: बिल्कुल दी
0: नशा हाँ नशा बुंग अन्य इजो फायदा उम बोड़ी उकड़ से सिर्फ मानवाया जिंदगी मो नरक बने गोटता जे लेबु उकड़ बुंग डिसा आवना होकर अपन जिंदगी ते इकुट बारू बोरलना पालते रो जिंदगी अमुगम जिंदगी ते मुगम बढ़े ना पालते होकर गा जिंदगी अमोरम ते बुझी ना जो पालते नो होता है
1: बिल्कुल
0: अनिंग झाड़ी रेबु किते उकड़ अमोरम ते बुझी ना ई होजे बारू बुझी ना चाहिए नो होकर सेवन करे ना से ई हाइन होता रो ई फायदा होता ना हर अनिंग ते उकड़ बुंग डिसा आवना से आवना चाहिए आरखी पेट पालोते उम ओपसोंगना चाही उकड़ा ठाणोते होडम धंधा करायना चाही आयो किते अनिंग आ आयो आपा नसा ते डिसा आवनानी अनिंग आयो आपा नसा ते डिसा आवनानी माफ कराय पे लकुणु हाकुनते जो डिसा उन्ना पालेनी रो विकास गोझुंगते मुगम बाढ़ेना पालेनी ला आई पे ओडो मुइं काय मंडोर तेनी दैसे अमर गाव तो नेवत
1: ला जैसा ना निंग कोंगते निंग नो तमा रात को उड़ींग डेलता इला हो कायम बोंगा अनिया वोते कुछ कायम आई
0: हाँ, ला हाँ।
1: झाड़ी ओंडोर कार की ते रात को उड़ींग या हार्दिक शुभकामना तेरते जार नो दी
0: हाँ, हाँ।
1: रात को उड़ींग ते जुगह कोनोल बुंग श्रद्धालु ओडो लेबु की योना चलता में ला उगह बुंग काजाक बु आना जो इकुट चाडो आई सेंग तायगा चाडो मुइद कायम किते कोंगना आईज नो दी
0: हाँ को जैसा नो भीड़ भाड़ ठाड़ो किते खास कर कुड़ हाकोन किते जुगहेगा ध्यान तेरना इकुट चाडवाई उम बहुनता है सेंगा कुड़ किते चाडो कायम उतुन्ना से हुईना वाला अनेस घटना बुंग बांचेना पालडोम था कुड़ किते पहचान पत्र रो फोन नंबर लिखा कुन ओपधोना से कुढ़िंग ते सीढ़ना से हो जिनिस कामू तेरे सोतो कायम है क्यों बो
1: हाँ बिल्कुल दी
0: सीढ़ना लेखुट घटना भेरे तुरंत पुलिस ते सूचना तेरना होकी झटगा कार्रवाई शुरू कराएना पालते की न होता है
1: हाँ ला कुनो क्या कायम को तो ना जा ला मुदा पॉकेट मार लू सुना वाला की बुंग जो का जाग से आना से हाथ से या शिकार होना से बंचना पालूं ता खासकर मोबाइल पर्स उड़ो मांगा आभूषण लेखुट जीनिस के ते जातान कौन उन्ना एकुट चाडू आई नो दी ला सतर्कता का सप्ताह महा स्टेप है के जहाँ हादसा या शिकार होना से बांचे ना बुंग उकड़ा सॉरी अपन वाहन की जो पड़ाव किते पार कराना से गाड़ी छकड़ा जो हिफाजत से आवना नो दी
0: ला उजे आनिंग ते ध्यान तेरना है कि कुडिंग चलता नहीं ला उजाड़ी जिन कायम किते ध्यान तेरे पे रो कुडिंग आ लेरे ते डोडे पे ला कायम को उम्बोंग ना ला आम पे ते आलोंग जो ओंडोर मुन लाते हुए ला आई पे आलोंग ओंडोरे पे वो आलोंग ते आलोंग से इकियार इग्नासियस क्रिकेटरो सांगोडुम की

0: आलोंग डरकुन को इको उडलेरे ला की होनता है नो होनता है
1: ना बिल्कुल री
0: ला आई पे तमा वन बाखड़ी ओंडोरे पे ओ बाखड़ी ते उतुन ते इकियर फादर जोआकिम डुंगडुंग कियर
2: राय जा मोन अनुसूचित जनजाति है के उकी ईसा सिंह 4000 मेमोन बोताएगा झारखंड ते डेल डोको सी में उकिया मुडा ठाड़ो मध्य एशिया यानी पालेस्टाइन देश ते बताए ते में पालेस्टाइन देश ते इराक ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान होई कौन भारत देश ते डियर की में पुरखा की गामते में नो आधा खड़िया की मोन जो दाड़म यानी मोहन जोदाड़ो होई कौन भारत देश ते डियर की में आधा की कायबर घाटी तिब्बत घाटी रो बोल नापे यानी पाड़ोम नापे होई कौन भारत देश ते डियर की में।

0: आलों को इकुट ले रे लाकी उम ओहन ताय नो
1: बिल्कुल लागे दे मुस्का आलों के लेरे सुनाओ की
0: लेरे सुनाओ की ला अंपा मुस्का आदिवासी अखड़ा खड़िया लांगबुंग कायमोंडोर ना अनेडा बोंडेल की ला डेना मांग तो उनेडा तेगा कायमोंडोर ना आ पेरीबे मुस्का थोइन जाते बिदाओ लेपे जोहार
1: जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा खड़िया भाषा में। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है अंग्रेजी वार्ता। इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं वार्ता सेव नेचर कंजर्व फ्यूचर। वार्ताकार है शमीला तहजीब और प्रस्तुति है प्रभु शरण की।
1: सेव नेचर कंजर्व फ्यूचर। नेचर Nature has always been humanity's silent companion. Long before modern cities, industries, and technology transformed human life,

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनी गंधा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रहना है तेरे दिल में फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के साथ। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है हरीश जयराज ने, आवाज है बॉम्बे जयश्री की।
1: प्रीलोडेड गानों वाला

कार्यक्रम का अगला गीत बॉम्बे फिल्म से चित्रा की मखमली आवाज में, शब्द रचना महबूब की है, धुन बनाई है AR रहमान ने।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा का अगला गीत हमने लिया है कुमार सानू और संजीवनी की आवाजों में करीब फिल्म से।

अभी आप सुन रहे थे इस रात की सुबह नहीं होती फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत। आवाज़ें थी MM करीम और चित्रा की। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं संपन्न होता है।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत यूरोप रणनीतिक साझेदारी के विस्तार से व्यापार, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
2: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्पेन की यात्रा पर हैं। वो स्पेन के साथ साथ फिनलैंड और बेल्जियम की भी यात्रा करेंगे और भारत और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने, व्यापार बढ़ाने, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। हमारे साथ शरद कोहली जी मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। शरद जी, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारत और यूरोप के संबंधों में काफी बदलाव आया है। अगर हम 10 सालों की बात करें, दोनों के बीच जो व्यापार है वो 80% से ज्यादा बढ़ा है। अब आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? क्या आपको लगता है कि यह रिश्ता पारंपरिक व्यापार से भी आगे बढ़कर एक व्यापक रणनीतिक और प्रौद्योगिकी साझेदार का रूप ले रहा है?
3: नमस्कार हर्ष, आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। पहले तो मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में भारत और यू के बीच जो संबंध है उन्होंने एक नई शक्ल ली है, क्योंकि हम यूरोप को देखें तो 27 नेशंस को मिला के ईयू बनता है। और पिछले कुछ वर्षों में आप पन्ने पलट कर देखें तो उसमें ईयू की जो आर्थिक रफ्तार रही है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं रही। वहां पर उनकी अपनी समस्याएं थी, आर्थिक उनका एजिंग पॉपुलेशन थी, लोग बुजुर्ग हो रहे थे, वर्क फोर्स की दिक्कत थी, मार्केट उतनी ग्रो नहीं कर रही थी। चाइना ने वहां पर अपना एक तरह से वर्चस्व जमाया हुआ था। चाइना से जो सामान आता है यूरोप में वो काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आता है, इसलिए यूरोप में ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं लग रही थी। यूरोप में बहुत सारे देशों में ऐसा देखा जा रहा था कि भाई अब जब चाइना से सामान आ जाता है तो यहां बनाने की जरूरत नहीं है। तो वहां भारतीय सामान, हालांकि भारत का काफी विस्तार हुआ है अगर हम द्विपक्षीय व्यापार को देखें या भारत के सामान को वहां देखें, पर अभी वो जो कटिंग एज थी भारत के सामान पे वो आनी बाकी थी। तो मुझे लग रहा है ये जो ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल के डेलिब्रेशन चल रही है, TTC जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए हमारे माननीय कॉमर्स मिनिस्टर वहां पर गए हुए हैं, इसको अब एक नया और 27 जनवरी को ये हमारा साइन हुआ था जो यूरोप के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई थी। और हम सब जानते हैं कि 27 देश मिलकर यूरोपियन यूनियन बनता है, हर एक की अपनी पार्लियामेंट है, हर एक का अपना एक प्रोसीजर है। 27 में से 20 तो यूरो मानते हैं करेंसी को, बाकी के जो 7 देश हैं उन्होंने अपनी अपनी करेंसीज रखी हुई हैं। ये भी स्वतंत्रता यूरोपियन यूनियन का जो चार्टर है वो देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वो देता है। तो हर एक देश की अपनी प्रक्रिया है, उसमें समय लगेगा। तो मुझे लग रहा है इस साल के अंत तक या 2027 के शुरू तक ये सारे क्लियरेंसेस हो जाएंगे और इसकी पूरी पुख्ता शक्ल निकल के आएगी। और बहुत बड़ा फायदा मुझे लगता है हर्ष होने वाला है, क्योंकि आप अगर आबादी के लिहाज से देखें तो लगभग 450 मिलियन की, 45 करोड़ के आसपास की यूरोप की आबादी है। अगर मैं GDP को देखता हूँ, सारे देशों को जोड़ दूं, छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे ऐसे देश हैं जो लोग शायद जानते नहीं होंगे, लैटविया है, लिथुआनिया है, लक्समबर्ग है, माल्टा है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, बाकी आप जर्मनी, फ्रांस वगैरह तो सब जानते हैं, इटली, इनको जानते हैं, पर 27 में बहुत सारे देश आ जाते हैं। $20 ट्रिलियन की हर्ष वहां पर टोटल GDP अगर हम ऐड करें तो बन जाती है। तो बहुत बड़ी मार्केट भारतीय सामान के लिए है। इधर यूरोप से जो भारत सामान आता है उसमें भी यूरोप भारत को एक बहुत बड़ी मार्केट देख रहा है। आज भारत की जो मिडिल क्लास है वो अमेरिका की पॉपुलेशन से दुगनी है। तो मुझे नहीं लगता कहीं भी विश्व में इतनी बड़ी मार्केट एक ब्लॉक को मिलेगी एक साथ। तो दोनों देशों के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों देश इसके पूरक एक तरह से देखे जाने चाहिए।
2: बिल्कुल, अगर हम कुछ डेटा की बात करें शरद जी, तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो व्यापार था 2025 में, पिछले साल, वो तकरीबन 118.4 अरब यूरो का रहा था और ईयू ने भारत से लगभग 69.5 अरब यूरो का पूरा आयात किया था, लेकिन भारत को लगभग 48.9, आप 50 अरब यूरो कह सकते हैं कि भारत ने निर्यात किया था, यानी कि भारत ट्रेड सरप्लस में था, हम इसे कह सकते हैं। और हमने अभी एक आंकड़े का और जिक्र किया था कि पिछले एक दशक की अगर बात करें तो दोनों पक्षों के बीच, यानी यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच, 80% से ज्यादा वस्तु व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। इस संदर्भ में शरद अगर देखें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल हैं, इनकी स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड यात्रा को कितना महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए भारत और यूरोप आर्थिक संबंधों के संदर्भ में?
3: बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा कि ये 27 देश हैं, हर देश का स्वचालित है, हर देश की अपनी पार्लियामेंट है, हर देश के अपने इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से उनको क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं। तो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो, एक तो देखिए आप यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक बात करते हैं, पर हर देशों के अपने अपने कंसर्न्स हैं। तो वो फिनलैंड जा रहे हैं, स्पेन जा रहे हैं, तो वहां जो कंसर्न्स हैं उनको वो दूर कर रहे हैं, और हर देश से भी नेगोशिएशन बनती है और पूरे ब्लॉक के साथ भी नेगोशिएशन बनती है। तो ब्लॉक के साथ इन प्रिंसिपल नेगोशिएशन हो चुकी है, वो फाइनल हो चुका है। अब जहां जहां थोड़े से, अंग्रेजी में एक शब्द होता है ट्विक्स, जहां जहां थोड़ी थोड़ी लूज एंड्स है उसको बांधना है, कहीं उनको कोई स्पष्टीकरण चाहिए किसी विशेष वस्तु पर, अगर उनको उनको सफाई चाहिए कि भाई आपको किस तरीके से आप उसको भेजेंगे, किस रेट पे ये बनता है, क्या क्वालिटी होती है, कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। और क्योंकि अगर आप आइटम्स देखें, हर्ष आपने भी बात करी, और मैं आपको ये बता दूं जो आपने आंकड़े बताए कि यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक भारत का इस समय सबसे बड़ा गुड्स के मामले में ट्रेड पार्टनर है। वरना हम चाइना अमेरिका से भी काफी व्यापार करते हैं, पर अगर गुड्स के मामले में आप देखें, खाली मर्चेंडाइज जिसको हम कहते हैं, तो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अभी से है, और इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की पूरी के पूरा कयास है, ये सारा एफर्ट हो रहा है। तो मैं आपको आइटम्स की बात कर रहा था, मुझे लग रहा है बहुत जरूरी हो जाता है जिक्र करना, क्योंकि हमारे जो श्रोता एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट लाइन में है या जो एक्सपोर्ट की लाइन में आना चाहते हैं, ये जान के 93% बल्कि हमारा सामान वहां पर अब टैरिफ फ्री हो जाएगा, वो ये जानना चाहेंगे कि कौन से क्षेत्र के वो एक्सपोर्टर्स हैं जिनको इसको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो मैं कुछ सेक्टर्स का नाम यहां पर लेना चाहूंगा हर्ष, उसमें टेक्सटाइल्स है, अपैरल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, फार्मास्यूटिकल्स है, केमिकल्स है, इंजीनियरिंग गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मरीन प्रोडक्ट जिसमें भारत की बहुत महारत हाथे रहे, भारत का बहुत बड़ा एक कोस्टल एरिया है, लेदर गुड्स है, और इसमें एग्रीकल्चर प्रोसेस गुड्स भी हैं जो कि सिलेक्टेड कैटेगरीज में वहां जाएंगे। आप बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई जब हमारा ये ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है तो क्या भारतीय किसानों को इसमें कोई नुकसान होगा, क्योंकि यूरोप तो कृषि के लिए भी बहुत सारे यूरोप के ऐसे हिस्से हैं जहां कृषि में प्रोड्यूस होता है। इस एग्रीमेंट में भी पूरा ध्यान रखा गया है कि हमारे किसानों का हित कहीं पर भी प्रभावित नहीं होगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और यही जब एग्रीमेंट की फाइनल रूपरेखा निकल के आएगी, हालांकि एग्रीमेंट साइन हो चुका है, पर इंडिविजुअल देशों के साथ, जो देशों के साथ होगा, उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं भी कृषि क्षेत्र को कोई आंच नहीं आने वाली है। हर्ष,
2: और यहां हम अपने श्रोताओं के लिए यह भी बता दें कि भारत वहां से क्या क्या आयात करता है यूरोप से। आपने बहुत सारी वो चीजें बताई जो कि भारत के निर्यातक वहां निर्यात कर सकते हैं, और भारत जो आयात करता है उसमें भी मशीनरी कुछ है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट है, मेडिकल खासतौर पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ केमिकल्स वहां से आते हैं, हम आयात करते हैं। शरद, आपने अभी बात की एफटीएस की, एफटीए के बाद और आराम हो जाएगा हमारे निर्यातकों को, जो टैरिफ है एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वो ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं क्या, कुछ बाधाएं भी मौजूद हैं क्या? थोड़ा विस्तार से इसको बताएं कि अगर कुछ बाधाएं हैं तो क्या है और कैसे उनसे निपटा जा सकता है।
3: जी हाँ, देखिए जो भी ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, और यही चैलेंजेस की वजह से आपको जो हमारे मंत्री वहां जा रहे हैं, उन चैलेंजेस को वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक उस पर समन्वय बन पाए उस पर बनाया जाए। और दो तीन चीजें मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल उठाया है। देखिए अभी तक चाइना का जो वर्चस्व था यूरोपियन यूनियन में, वो कीमत के मामले में हम उनको हर चीज में कॉम्पीट नहीं कर पाते थे, ये हमें स्वीकार करना होगा। वहां से सामान सस्ता बन के आता था, और ऐसा नहीं है कि क्वालिटी खराब होती थी, चाइना में हर तरीके का सामान बनता है। तो दो मानक पहले मैं लूंगा यहां पर, एक मैं लूंगा क्वालिटी का, दूसरा मैं लूंगा प्राइसिंग का, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत में, मुझे लग रहा है अब हमारे एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स को ये दो चीजों पर ध्यान देना होगा, एक तो क्वालिटी, क्योंकि यूरोप के जो अलग अलग देश हैं, जैसा मैंने कहा हर देश में नियम अलग हैं, हर देश में जो पैमाने हैं सामान को एक्सेप्ट करने के, इस्तेमाल करने के, वो अलग अलग हैं। तो एक्सपोर्टर्स जिस भी इन 27 नेशंस के ब्लॉक में भेजेंगे, उनको उस देश के जो जो ये पैमाने हैं उनको दिमाग में रख के चलना होगा, और सबसे ज्यादा ध्यान, जो मैंने शुरू में दो बात कही, कि क्वालिटी और प्राइस पर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हम चाइना से कॉम्पीट कर रहे होंगे। अब इस टैरिफ के हटने के बाद, 93% सामान पे टैरिफ हटने के बाद, हमारा जो सामान है वहां प्राइस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। इसका मतलब कीमतों के मामले में हम चाइना से कुछ कुछ आइटम तो ऐसे होंगे हम बेहतर हो जाएंगे। तो अगर यहां पर अगर हम क्वालिटी को भी हम अप टू द मार्क रखते हैं, क्वालिटी को हम बिल्कुल उच्चतम रखते हैं, और दूसरी तरफ हम कीमत कम रखते हैं, तो मुझे लग रहा है वो जो चाइना प्लस वन पॉलिसी है, मुझे लगता है वो जगह हम धीरे धीरे ले पाएंगे। आज हम कुल अगर निर्यात देखें अपने देश का हर्ष, तो 850 बिलियन डॉलर से ऊपर हम पहुंच चुके हैं। इसको इस साल तक 2027 तक $1 ट्रिलियन ले जाने का हमारे माननीय जो मंत्री है उन्होंने लक्ष्य रखा है। तो मुझे लग रहा है ये जो FTA है ये उस ओर कदम हमारे ले जाएंगे, क्योंकि यहां से आपका निर्यात बढ़ेगा और यहां से जो टैरिफ लगने की वजह से जो सामान महंगा हो जाता था वो अब वो महंगाई उस सामान में से हट जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहां से जो एक्सपोर्ट जाएगा और हमें जो एक्सपोर्टर सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम को, वो इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि उस देश की क्वालिटी के हिसाब से वो सामान को बनाएंगे। बाकी जो एनवायरमेंट कंसर्न्स हैं वो तो ध्यान में रखना ही होगा, उसके बिना तो वो सामान को वहां आने ही नहीं देंगे। तो देखिए सरकार का काम होता है हर्ष एनेबलर का, यानी कि सरकार आपको एक माहौल बना के दे दीजिए। अब इसका जो लाभ उठाना है वो लाभ उठाना तो लोगों के हाथ में, लाभ उठाना तो बिजनेस कम्युनिटी के हाथ में, लाभ उठाना एक्सपोर्टर्स कम्युनिटी के हाथ में। दूसरी एक जरूरी बात मैं हर्ष इसमें जोड़ना चाहूंगा वो ये है कि हम इसको कोऑपरेशन को खाली हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चश्मे से हमें नहीं देखना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें आती है, इसमें इन्वेस्टमेंट है, जैसे एक देश से दूसरे देश में जो निवेश आएगा वो भी इस FTA के बाद आसान हो जाएगा। अच्छा प्रोफेशनल सर्विसेज जो देनी होती है, भारत तो सर्विसेज के लिए जाना जाता है, आपको पता है भारत का तो बहुत बड़ा हिस्सा GDP का सर्विसेज से बनता है और हमारा लोहा दुनिया मानती है खासकर IT सर्विसेज में, वहां पर भी उसका भी इसमें जिक्र होगा। उसके अलावा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट बहुत सारी होती है दोनों देशों से, वो भी इस FTA में शामिल की जाएगी। अच्छा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात आती है, उसका भी जिक्र आएगा। और सबसे बड़ी बात, भारत ने जो महारत हासिल करी है वो डिजिटलाइजेशन में हासिल करी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब फाइनल रूपरेखा इसकी निकल के आएगी, जब ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो उसमें भारत के जो डिजिटल स्ट्रेंथ है उसका जरूर जिक्र आएगा और पीपल टू

0: पीपल रिलेशंस हो गए, भारत के जो प्रोफेशनल्स है वहां जाके काम करते हैं उनके वीजा की प्रक्रिया सरल हो जाएगी, यूरोप से लोग यहां आके जब जरूरी होगा काम कर पाएंगे, भारत के लोग वहां जाके काम कर पाएंगे। एफटीए का पूरा स्पेक्ट्रम होता है हर्ष, बहुत बड़ा होता है, इसका जो पूरा घेराव होता है बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। जी
1: बिल्कुल शरद, आपने चीन की बात की और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की, यूरोप लगातार ये कोशिश कर रहा है कि चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम हो और जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं जिसकी आपने बात की, इसको किस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जाए, यानी कि अब यूरोप की जो कोशिशें थी इसमें भारत की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है।
0: बिल्कुल, भारत की बहुत बहुत बड़ी भूमिका होगी और यूरोप का भारत के साथ इस प्रकार आके पूरे के पूरे ब्लॉक का, मुझे लगता है इतने सारे देश एक साथ आके भारत के साथ, इसको आप दूसरे नजरिए से देखें तो, अब यूरोपियन यूनियन अगर मैं इसको ना बोलूं तो 27 देश एक साथ आके भारत के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? उनको भारत की मार्केट दिख रही है और वो चाइना के अलावा एक और चेन खड़ी करना चाहते हैं। हमारे साथ और देश हैं, इसमें वियतनाम है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में ग्लोबलाइजेशन का और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत तरक्की करी है। भारत की, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश है, सबसे ज्यादा एस्पिरेशनल देश भी भारत है, यानी कि जहां यूथ जो है बड़ा कुछ करके दिखाना चाहता है, तो मुझे लग रहा है अब वो समय आ गया है, एक एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां से भारत के एक्सपोर्टर्स अब विश्व की तरफ देखने लगेंगे। जो मैं तो आह्वान करना चाहूंगा हर्ष आदि शो के माध्यम से
1: जी,
0: उन बिजनेसमैन का जिन्होंने आज तक कभी एक्सपोर्ट नहीं किया है, मैं समझता हूं ये एफटीए को और आज आपकी हमारी इस बातचीत के जरिए उनको ये समझ में आएगा कि ये एफटीए मात्र एक डिस्कशन की चीज नहीं है, एक श्रोताओं को बताने की चीज नहीं है, एक समझने की चीज है कि आप किस प्रकार उस मार्केट की ओर देख सकते हैं, अपने सामान को वहां ले जा सकते हैं जो आज तक आपने कभी नहीं देखा। आज आप यूरोप के साथ व्यापार कर सकते हैं, यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध बना सकते हैं और उसमें कमाई कर सकते हैं, लोगों को नौकरियां, देखिए दोनों तरफ इसके होने के बाद दोनों तरफ नौकरियों में इजाफा दिखाई देगा, क्योंकि जो नए यूनिट्स लगेंगे, जिस सामान की यूरोप को जरूरत है उसकी यहां फैक्ट्रियां लगेंगी, उसमें लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तो कुल मिला के जो आर्थिक विकास है उसमें बहुत बड़ा ये इंजन का काम करेगा।
1: कुल मिलाकर एक बहुत बड़े इंजन का काम करेगा आर्थिक विकास की दिशा में। शरद कोहली जी, आपका आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: शुक्रिया, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत यूरोप रणनीतिक साझेदारी के विस्तार से व्यापार, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से, भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
5: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
4: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
5: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
4: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
5: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
4: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
6: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य, तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
7: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क भाव में भारी कमी आई है। इस समझौते में

0: परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
2: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
1: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केन्द्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
3: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि

0: इस संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
1: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title The Voice of Justice is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional ट्रस्ट।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों हैं।
2: 61 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रूपये के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. France to clash with Spain in first semi-final of FIFA World Cup in Texas tonight. And in men's cricket, India chase a target of 259 runs set by hosts England in first ODI at Birmingham. And now the news in detail. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels, Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of

0: said Mr. Gowda's public life as a co-operator, member of the Legislative Council and minister was marked by unwavering commitment and dedicated service. Mr. Modi also conveyed his heartfelt condolences to the bereaved family, supporters and his admirers. Union Minister of Civil Aviation Kinjarappu Ram Mohan Naidu announced that Dholera International Airport will be operational within 3 months. Talking to media after reviewing the progress of the project, the minister said 80% project work completed and the government aims to complete the remaining terminal construction and secure the necessary licensing within the next 3 months to commence flight operations. Benchmark domestic equity indices ended around 0.7% lower today. We have a report.
1: Sensex fell by 561 points to close at 77,055, while Nifty declined by 159 points to settle at 24,052. In the broader market on the NSE, the Nifty Mid-Cap 100 Index slipped 0.44%, while the Nifty Small-Cap 100 Index fell nearly 1%. In the foreign exchange market today, the rupee depreciated by 58 paise to close at 96 rupees and 20 paise against the US dollar. With Abhishek report, Arjun Chowdhury for Akashvani News.
0: On to sports. In FIFA World Cup, France will take on Spain in the first semi-final at Dallas Stadium in Texas, US tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian Standard Time. In cricket, England have set a target of 259 runs for India in the first of the three-match ODI series at Edgbaston, Birmingham. In reply, India were 97 for 2 in 19 overs when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. And in men's cricket, India chased target of 259 runs set by hosts England in first ODI at Birmingham. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। भारत ने आबनाई हुरमुज के रास्ते महफूज और आजादाना नकलो हमल की बात दोहराई है। उसने महाजराई के देरीना हल की खातिर जोर दिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जारी एहतजाज पाकिस्तान की जानिब से दहाइयों तवील सिलसिलेवार इस्तेसाल और बुनियादी हकूक की पामाली का नतीजा है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तजारती मुआहिदा कल से नाफिज हो जाएगा। इसके तहत ज्यादातर भारतीय बरामदात को बगैर ड्यूटी रसाई फराहम होगी। इंतखाबी कमीशन ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में वोटर फहरिस्तों की जारी खसूसी तफसीली नजरसानी की मुद्दत में मजीद 10 दिन की तौसी कर दी है। फीफा आलमी कप में आज रात टेक्सस में पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में बर्मिंघम में पहले एक रोजा बैन अलावामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत की जीत के लिए 259 रन का निशाना दिया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कहा है कि कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों और अमरीका और ईरान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी में इजाफे के पेश नजर वो मगरबी वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए ये बात दोहराई कि भारत आबनाए हुरमुज के रास्ते महफूज बिला रूकावट नकलो हमल और तजारती सरगर्मियों की हिमायत करता है।
3: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार सुरक्षित और आजाद नौ पर इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है और यह नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
2: करने के दौरान दो बहरी जहाजों एमटी अलबहिया और एमटी मोम्बासा पर हमलों पर भी गहरी तश्वीश

0: Mantan. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए रेल परिवहन व्यवस्था को अत्याधुनिक, सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेल में हो रहे सुधारों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: अरुणेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: अरुणेंद्र जी। सबसे पहले तो हम इस पर आते हैं कि रेलवे में लगातार सुधार जारी हैं, कई बड़े बड़े सुधार किए जा रहे हैं और अब जो इन नए सुधारों की घोषणा हुई है, इनका उद्देश्य रेलवे को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और लोगों के अनुकूल बनाना है। तो आपके हिसाब से ये सुधार भारतीय रेलवे की कार्यशैली और देश की जो लॉजिस्टिक व्यवस्था है उसमें किस प्रकार से बदलाव
2: किया है? लेकिन जो अभी सुधार देखे जा रहे हैं वो बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, मतलब जो बिल्कुल आधारभूत ढांचा है उसको बदलाव कर रहे हैं, जिससे कि प्रगति में जो बाधाएं अभी तक महसूस हुई हैं उनको बदला जा सके। और एक एक सेक्टर को लेकर आगे बात चल रही है, चाहे फ्लाइट ले लें, सीमेंट ले लें, या कॉन्ट्रेक्टर्स की क्वालिफिकेशन ले लें, उनके जो स्टाफ है उनके स्किलिंग को लेकर देखें, तो ये सब चीजों पे ध्यान देके एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है और पुराने कदम जो लिए गए उनको परखा गया है कि उसमें कुछ कमी रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जाए। तो ये एक नीतिगत ढांचा परिवर्तन है जो कि मूलभूत रेलवे की मानसिकता को दिखाता है कि इतने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा खर्च किया जा रहा है तो फिर बाकी बाधाएं जो अभी तक बाधाएं बनी हुई थी उनको हटा दिया जाए।
1: अरुणेंद्र जी, भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है और रेल भूमि वेब पोर्टल शुरू किया जा रहा है, जिससे कि मुआवजा बंटने की बात हो, कानूनी समय सीमा या फिर दस्तावेजों की रियल टाइम निगरानी संभव करने की बात हो, तो ये पोर्टल पारदर्शिता और विवादों में कमी और परियोजनाओं की समयबद्धता सुनिश्चित करने में किस प्रकार प्रभावी सिद्ध होगा?
2: देखिए, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक तो स्टेशन मॉडर्नाइजेशन की बात उठती थी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स को बताया गया कि ये स्टेशन है, इसमें ये मॉडर्नाइजेशन होगा, इतना पैसा

0: खर्च हो रहा है, तो पहला सवाल ये उठा कि भाई आपके पास रेलवे के पास जमीन कौन सी है, क्योंकि तो कई जगह अतिक्रमण हो रहा है, कई
1: जी
0: जगह और चीजें बन रही है। अब जब तक कोई डिजिटल रिकॉर्ड ना मिले तो वह जाके देख ना सके कि भाई रेलवे की जमीन है या रेलवे पर जमीन नहीं है, तो
1: बिल्कुल
0: आगे बात बने। अभी तक पेपर में ही कंफ्यूजन रहता था, इसके बाद किसकी जमीन है, किसको पैसा मिलना है। अगर ये सब डिजिटल रिकॉर्ड हो जाएंगे तो ये सब जो तकलीफें हैं जो हर प्रोजेक्ट को डिले करती है, बिकॉज भूमि अधिग्रहण ही सबसे बड़ी समस्या है शुरुआत होने में। एक बार प्रोजेक्ट चालू हो जाता है फिर आगे गति पकड़ लेती है। तो ये अगर रेल भूमि पोर्टल पे सबके से लिया हो जाएगा, जिसकी जमीन है, जिसको काम करना है, जिसको पैसा मिलना है, जिसको पैसा देना है और कब पैसा दिया, सब चीज वहां पे लिखी हुई है। क्यों देरी हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, फंड की कमी है या ओनरशिप रिकॉर्ड की कमी है, तो ये सब चीजें आपको रेल भूमि पोर्टल से साफ साफ दिखेंगी। जैसे टिकट रिजर्वेशन में आपको पीनार बर्थ नंबर सब दिखता है, ऐसे इसमें इसमें भी दिखेगा।
1: अरुणेंद्र जी, फ्लाई ऐश की अगर हम बात करें तो हर वर्ष लगभग 96 मिलियन टन फ्लाई ऐश का उपयोग निर्माण कार्यों में होता है और इसके खुले पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या रहती है। तो अब विशेष कंटेनरों में इन्हें भेजने का निर्णय लिया गया है, तो ये जो नई व्यवस्था है इससे पर्यावरण संरक्षण और रेलवे की माल ढुलाई क्षमता और औद्योगिक जगत को किस प्रकार लाभ होगा, खासतौर पर जब हम इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि रेलवे की आमदनी जो है वो भी बढ़ानी है।
0: लेकिन सबसे बड़ा जरूरी बात यह है कि इस चीज का जो इस्तेमाल करने वाले हैं, ये इंडस्ट्री है, उनसे तालमेल करके ये डिसीजन लिया गया है कि इसको कंटेनराइज किया जाए। और जहां से शुरू होती है कहानी, वो खुले वैगन्स में हो या किसी और तरीके से हो, उसको हटा के कंटेनर में डाल के और नियत स्थान तक भेजा जाए, और जहां उतरे वहां भी ये समस्या पैदा ना करे। पहले तो रेलवे अपना वैगन लेके चली जाती थी और वहां पड़ा रहता था खुले में, तो वहां तकलीफ पैदा होती थी। अब जहां उतरेगा वहां तभी खुलेगा जब उसको इस्तेमाल करना हो, जरूरत हो। और फिर खुलने के तरीके, वैगन के डिजाइन, सब कुछ जो है उसी तरीके से बनाए गए हैं, तो ये पर्यावरण में बहुत फर्क पड़ेगा। रेलवे की माल अगर आपको 95 मिलियन टन सीमेंट में भेजना है फ्लाई ऐश, तो बहुत बड़ा मटेरियल है जो कि लोडिंग
1: जी
0: के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ साथ पर्यावरण की तो बहुत बड़ी समस्या है, जब फ्लाई ऐश के जहाज बनती है उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही तकलीफ है, जो खत्म होने की आसार दिखते हैं।
1: जहां तक विशेष कंटेनरों की हम बात कर रहे हैं, और तो लॉजिस्टिक्स एक बड़ा मुद्दा आता है कंटेनर के संदर्भ में, और रेल मंत्रालय फ्लाई ऐश साथ साथ तो इन कंटेनरों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो बदलाव है ये भारत की मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नीति और माल परिवहन प्रणाली को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगा, साथ ही जो हम आधुनिक रेलवे को बनाने की बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा?
0: कंटेनराइजेशन जहाँ जहाँ आया है वहां सफलता मिली है, और एक बड़ी उपलब्धि है रेलवे की। रेलवे ने अपनी सोच बदला है और इसमें फर्टिलाइजर, फ्लाई ऐश, सीमेंट या सब ऐसी चीजों को लेकर आ रहे हैं जो कंटेनर में जाके जाए और आगे बढ़ के जरूरत हो, किसी को पूरी जरूरत होती है, किसी को कम रेक की जरूरत होती है, तो कंटेनर तो एक बहुत ही छोटा एक रेक 100 1/40 1/45 का होता है, तो उसके लिए आसानी रहेगी, उसके लिए अनलोडिंग जब चाहे तब कर सकता है, मूविंग वेयर हाउस ऑल्सो। तो जब भी आप देखेंगे कंटेनर आया है, कंटेनर मूवमेंट आसान है, लोडिंग अनलोडिंग की फैसिलिटी में तकलीफ नहीं है। कंटेनर आप जो यार्ड जाके देखेंगे वो बहुत रोड अप्रोचेबिलिटी उसमें बड़ी अच्छी होती है। ये जो नीति परिवर्तन हुआ है कि कंटेनराइजेशन को लेके आएंगे, कंटेनराइजेशन और एफिशिएंट और अच्छा बनाएंगे, इससे पर्यावरण, इससे ग्रीन क्रेडिट्स, कार्बन क्रेडिट सब में आपको फायदा दिखेगा।
1: इसी से जुड़ा एक और मेरा सवाल आपसे है कि रेलवे कंटेनर संचालन के लिए यूनिफाइड लाइसेंस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, जिसमें इसे 20 वर्षों तक स्थिर रखने की बात कही है। तो ये जो नई नीति इस तरह से आ रही है, इसमें निजी निवेश बढ़ने की संभावना आपको नजर आती है और लॉजिस्टिक का जो काम है उसमें नए प्लेयर्स को भी काफी मौका मिलेगा?
0: सबसे पहले देखिए 2007-08 में शुरू हुआ था जब CTO आए थे इंडियन प्लेयर्स। अब ये दूसरा जबरदस्त तरीका अपनाया गया है लोगों को लाने का, जिसमें कि प्रोसीजर तकलीफ है। तो सरकार से जो भी डील करता है उसको लगता है बहुत ज्यादा नियम है और एक नियम खत्म होते ही दूसरा नियम शुरू हो जाता है। ये सब चीज उन्होंने हटा दी और कहा है कि आप एक बार एक मुश्त राशि दीजिए, रिन्यूअल में कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ना चाहे 20 साल के लिए है, तो वो सब चीजें आपको एक बार, वंस यू आर इन आप हमेशा ही अंदर ही रहने वाले हैं।
1: जी
0: तो आप कंटेनर प्लेयर जो सीरियस प्लेयर है, तो आप वाकई आना चाहते हैं, वाकई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा माध्यम खुल गया।
1: अरुणेंद्र जी, जब हम उर्वरक की बात करते हैं तो किसानों और उर्वरक कंपनियों या फिर रेलवे की जो माल परिवहन व्यवस्था है इसमें इनका बड़ा रोल होता है। अब 50 अलग अलग माल भाड़ा स्लैब समाप्त कर प्रति टन प्रति किलोमीटर की पारदर्शी व्यवस्था लागू की जा रही है। ये जो बदलाव है इसका कितना इम्पैक्ट आपको लगता है कि ये होगा तो इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा, कंपनियों को भी लाभ मिलेगा और रेलवे भी इससे मुनाफे में होगा?
0: रेलवे मुनाफा तो एक चीज है, बट जो इस्तेमाल करता है, अगर उसे कहा जाए कि आपके पास 50 फेयर है, यदि आप चेयर कार में जाए तो आप चेयर कार 50 तरह की है, तो आप
1: जी
0: बाबे तो दिमाग जो है खत्म हो जाएगा। इस तरफ ध्यान नहीं गया था कि भाई जो इस्तेमाल करता

0: है उनको कितने तरह के फेयर देने पड़ेंगे। तो 50 तो एक ऐसी जबरदस्त फिगर है कि आने के पहले ही लोग आप भाग जाएंगे, और जब तक आप उसको अच्छी तरह बिल्कुल जानते ना हो। लेकिन आप जब बात हटा दी गई तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपने ट्रक से इतने में लगता है पैसा, टेम्पो से इतना लगता है, रेल इतना लेती है, इतने समय पहुंचाती है। तो एक बहुत बड़ी पारदर्शिता आ जाएगी और ये रेट समझ में आ जाएंगे कि भाई कितना खर्चा आएगा मेरे को, और तुरंत पता चल जाएगा। और ज्यादा आपको इसमें तकनीकी और या प्रोसीजर जानकारी की जरूरत नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेन रेगुलेशन के माध्यम से 3 AC का किराया कितना है आप
1: जी
0: देख लीजिए, एक टैक्सी का किराया कितना है आप कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, कोई
1: जी
0: तकलीफ की बात नहीं है।
1: जी
0: इसलिए ये प्रोसीजरल चेंजेस हो रहे हैं। अगर फेयर स्ट्रक्चर में फेयर स्लैब्स को खत्म करके एक स्लैब बनाने की योजना, ये तो एक क्रांतिकारी कदम है रेलवे की प्रगति के लिए, और सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए जो इसको इस्तेमाल करेंगे।
1: अरुणेंद्र जी, जब हम अनाज की ढुलाई की बात करते हैं तो पारंपरिक परिवहन के दौरान लगभग 4 से 5% अनाज या फिर दालों या फिर जो भी इस तरह की चीजें होती हैं उनके नुकसान की बात कही जाती है। अब इन्हें भी कंटेनरों में ले जाने की मंजूरी दे दी गई है, तो ये जो व्यवस्था की जा रही है खाद्य सुरक्षा, भंडारण दक्षता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भी महत्वपूर्ण, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इस बदलाव को आप एक आम जनमानस के लाभ के हिसाब से कैसे देखते हैं?
0: देखिए, अगर आप नुकसान की भरपाई की बात करें तो नुकसान तो होता ही, भरपाई बाद में होती, लेकिन नुकसान हो ही ना, ये चीज कंटेनर की एक देन है। क्योंकि कंटेनर सील करे जा सकते हैं, लॉक तो बहुत ही आम बात है, कंटेनर का डिजाइन ऐसे किया जा सकता है कि कोई उसको बाहर से तोड़ा ना सके, वैगन में दोबारा सेल लगा लेते हैं और फिर कंटेनर का ध्यान दिया जाएगा कितने कंटेनर है, कहाँ उतरे, फिर उसको वापस लाना है। तो इस तरह से आपको जो रास्ते में जो चोरी की बात उठती है वो कंटेनर से तो बहुत ही कम हो गई है, जो कि हम कंटेनर ट्रैफिक में अभी भी देखते हैं कि जो कंटेनर में सामान जाता है उसके चांसेस लीकेज के, थेफ्ट के बहुत कम है, और ऑनलाइन उसको देखा भी जा सकता है
1: जी
0: कंटेनर कहाँ है आपका। एक वैगन देखना इतना आसान है नहीं है जितना एक कंटेनर देखना आसान है अभी ट्रेन के पोर्टल पे।
1: यानी कि ये बहुत ही आसान बनाया जा रहा ताकि सारी जो सूचना है पूरी तरह से पारदर्शी होकर पहुंचे।
0: जी हाँ बिल्कुल, मतलब जो रेलवे का आगे बढ़ना है तो कस्टमर ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: और कस्टमर ओरिएंटेशन में प्रोसीजर की कमी हो, पारदर्शिता की हो, और साथ साथ एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े, और फिर दोनों लोग को सहूलियत हो।
1: जी
0: और ये सब चीजें तभी होती हो जबकि आपको जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसे जो लागत है उसकी कमी हो, और साथ साथ रेलवे को नुकसान ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी सोच, जो पावन रिफॉर्म की बात हो रही है और आज जो 11 नंबर 17 नंबर पर रिफॉर्म जारी किए गए हैं,
1: जी
0: ये
1: जी
0: आप देखेंगे धीरे धीरे करके इतना दबाव हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे हुआ क्या रेलवे को साल भर तक।
1: जी अरुणेंद्र जी, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार रेलवे को आधुनिक बनाने की बात कर रहे हैं। अब में जो काम करते हैं खासतौर पर प्लम्बर है, वेल्डर है, फिटर है, राजमिस्त्री या अन्य जो कर्मचारी हैं, इनके लिए कौशल प्रमाणन व्यवस्था लागू की जा रही है, तो इस पहल से आपको लगता है कि निर्माण की गुणवत्ता बेहतर होगी, सुरक्षा मानक जो है हमारे उनमें काम बेहतर होगा, और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की जो बात है उसमें काफी सुधार आएगा?
0: ये कदम ऐसा है जो उसको अगर आप मापदंड के रूप में देखें, अब आपको पहले ट्रेन करना पड़ेगा वेल्डर कैसा है, ठीक है नहीं है, उसकी अब कोई जरूरत नहीं। जैसे आप समझते हैं कार के ड्राइवर का लाइसेंस होता है, उसको बाद में
1: जी
0: अगर लाइसेंस है तो आप गाड़ी चला सकते हैं। अगर आप वेल्डर लाइसेंस है, प्लम्बिंग लाइसेंस है, लाइसेंस में किस किस तरह के आप काम कर सकते हैं, आपका स्वागत है। इससे क्या होगा कि जो कंपनियां हैं आप देख रही हैं लोगों को जिनको भर्ती करना चाहती है, तो उसके लिए बहुत बड़ा फायदा होता दिखता है। जो कंपनियां हैं उनके लिए अच्छा है, और मेरे पास अगर सर्टिफिकेट है तो मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं जाके काम कर सकूं, उनके पास मेरे पास लाइसेंस है, और एक ऑथराइज्ड जो संस्था ने मुझे सर्टिफिकेट दिया है जिसमें इन्होंने काफी ट्रेनिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद प्रमाण पत्र जारी करते हैं, जो रिकॉग्नाइज करने की व्यवस्था है उसको एक ढांचा नीतिगत दे दिया गया है, और ये मजबूर किया गया है कि अपने ऐसे ही लोगों को इस्तेमाल करें जैसे कि काम आगे बढ़ने में गति हो, कभी काम खराबी ना हो, गलत काम ना हो, और सीधी दिशा में सही तरीके से काम हो।
1: वैसे रेल मंत्रालय का लक्ष्य है कि अगले 24 महीने में इन प्रणालियों को, इन सभी परियोजनाओं को लागू किया जाए, तो आपको लगता है कि भविष्य में ये मॉडल अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सरकारी निर्माण कार्यों में भी काफी मददगार साबित हो सकता है?
0: अभी देखिए शुरुआत हुई है, और आप सुना होगा आपने स्पीच में कि 3 महीने में काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं, तो ये आगे बढ़ता जाएगा। रिफॉर्म तो बात कही जा रही है, रिफॉर्म तो जैसे आगे बढ़ेंगे जो रिफॉर्म्स को भी आगे रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए ये रेलवे की सोच की बहुत बड़ी चीज है, ये चीज जो है रेल के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि नीति का सोच को बदली करना एक बहुत तकलीफ है, और ऐसी संस्था जो इतनी पुरानी संस्था है एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा कदम है जो हमारे सामने खुलता हुआ नजर आ रहा है।
1: बिल्कुल अरुणेंद्र जी, बिल्कुल अंत में कार्यक्रम के पहुंच चुके हैं। विजन 2047 की बात करें तो रेल मंत्रालय आधुनिकीकरण, डिजिटली

0: करण निजी भागीदारी हरित परिवहन और तकनीकी नवाचार पर लगातार जोर दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 10-20 वर्षों में भारतीय रेलवे को विश्व की जो अग्रणी रेल प्रणालियां हैं उनमें शामिल करने के लिए किस तरह की प्राथमिकताएं ली जा रही हैं, किस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं?
1: देखिए, 2047 से पहले रेलवे काफी कुछ कर लेगी। सबसे ज्यादा जरूरी है ये ट्रेड कॉरिडोर और हाई स्पीड बुलेट ट्रेन। इन दो में रेलवे की महान प्रगति आपको देखने को मिलेगी। भारतीय वर्जन बुलेट ट्रेन का आपको देखने को मिलेगा और ये जो कंटेनराइजेशन में पहल है इसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट रेलवे कम करेगी। और रिजर्वेशन ऑन रिक्वेस्ट, जिस दिन आप चाहें रिजर्वेशन आपको मिले, ये 2-3 चीजें बहुत जरूरी है और रेलवे इस दिशा में आगे काम कर रही है। तो ये कोई नहीं चाहता कि टिकट बैठ लेके और आप आगे ट्रेवल करें टूरिज्म के बारे में, कंफर्मेशन हर एक को चाहिए होता है। और रेलवे इसी दिशा में नई ट्रेनें, नई लाइनें और लाइनों में ज्यादा कैपेसिटी करना, सिग्नलिंग सुधार करना, इसमें बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, काफी पैसा भी खर्च हो रहा है। तो ये 2-3 चीजें सामने आती हैं जो कि आप देखेंगे कि जल्दी ही जल्दी इसमें लोगों को राहत और मिलती जाएगी।
0: अरुण जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे, रेल परिवहन व्यवस्था को अत्याधुनिक, सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेल में हो रहे सुधारों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप मेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। मंथन।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गूंजे झारखंड। आज आप सुनेंगे वर्षा ऋतु पर आधारित लोकगीत। संकलन वाचन संध्या नीलिमा टोपनो का है। प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की।

वर्षा ऋतु सबसे सुंदर ऋतु है। ये सामान्यतः जून माह के आखिर से शुरू होकर सितंबर तक रहती है। गर्मी के लंबे और तपते दिनों के बाद जब आसमान में काले बादल आते हैं और बारिश की पहली बूंद जब धरती पर गिरती है, सभी के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये ऋतु केवल मौसम का परिवर्तन नहीं है, ये प्रकृति में नया जीवन और एक नई ऊर्जा लेकर आती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सभी इसका स्वागत करते हैं। वर्षा के कारण वातावरण शुद्ध और सुहावना हो जाता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। श्रोताओं, गूंजे झारखंड कार्यक्रम में आज सुनिए वर्षा ऋतु पर आधारित कुछ लोकगीत।

वर्षा के आगमन से पहले हवा तेज चलती है और आकाश में काले बादल दिखाई देने लगते हैं। बादलों की गरज और बिजली की चमक वातावरण को रोमांचक बना देती है। जब वर्षा की पहली बूंद धरती पर गिरती है, तब मिट्टी की सौंधी खुशबू मन को आनंदित कर देती है। इस ऋतु को प्रकृति का श्रृंगार कहा जाता है। चारों ओर हरियाली फैल जाती है, पेड़ पौधे नए पत्तों और फूल से भर जाते हैं, बगीचे, जंगल और खेत सुंदर दिखाई देते हैं, सूखी घास फिर से हरी हो जाती है, नदियाँ, तालाब, झीलें और कुएं पानी से भर जाते हैं, पहाड़ों से झरने बहने लगते हैं। ये दृश्य अत्यंत मनोहारी होता है। मोर पंख फैलाकर नृत्य करता है, पक्षियों की चहचहाहट और मेंढक की टर टर प्रकृति में एक अलग ही संगीत उत्पन्न करती है।

वर्षा ऋतु कवि, लेखक और कलाकारों को भी प्रेरित करती है। अनेक कविता, कहानी और गीतों में इस ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया गया है। देश हमारा कृषि प्रधान है, वर्षा ऋतु किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जैसे ही वर्षा आती है, किसान हल बैल लेकर खेतों की ओर चल पड़ते हैं। खेतों में बोई गई फसलें वर्षा जल से बढ़ती और विकसित होती हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, उड़द, मूंग, कपास और गन्ना जैसी फसलें वर्षा पर निर्भर करती हैं। यदि समय पर पर्याप्त वर्षा हो तो फसल अच्छी होती है और किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है। अच्छी फसल से देश की खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति होती है।

वर्षा ऋतु से मानव जीवन भी प्रभावित होता है। लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलती है, वातावरण ठंडा और सुखद हो जाता है। बच्चे बारिश में भीगना, खेलना और कागज की नाव चलाना पसंद करते हैं। लोग स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। गांवों में इस ऋतु का विशेष महत्व होता है। ये ऋतु खेती और पशुपालन दोनों के लिए लाभकारी होती है। पशु पक्षियों को पीने के लिए पर्याप्त पानी मिलता है। जंगल और मैदानों में घास उग आती है, जिससे पशुओं को भोजन प्राप्त होता है। वर्षा जल अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। वर्तमान समय में जल संकट एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, इसलिए जल संरक्षण आवश्यक है। वर्षा जल

संचयन के माध्यम से वर्षा के पानी को एकत्र करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। घरों, विद्यालय और सार्वजनिक भवनों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे भूजल स्तर बढ़ता है और पानी की कमी दूर होती है।

हमें जल के एक एक बूंद का महत्व समझना चाहिए और जल संरक्षण के प्रति जागरूक होना चाहिए। वर्षा ऋतु प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। ये धरती को जीवन, हरियाली और समृद्धि देती है। किसानों, पशु पक्षियों और मनुष्य के लिए इसका विशेष महत्व है। वर्षा के कारण प्रकृति की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है और वातावरण आनंदमय बन जाता है। यद्यपि अत्यधिक बारिश से कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, फिर भी इसके लाभ अधिक हैं। हमें इस ऋतु का आनंद लेना चाहिए और वर्षा जल का संरक्षण करके उसका सदुपयोग करना चाहिए। ये ऋतु हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आती है।

श्रोताओं, गूंजे झारखंड कार्यक्रम में आज आपने सुना वर्षा ऋतु पर आधारित कुछ लोकगीत। कलाकार थे मुंडारी में सोमरा लोहरा और साथी, उरांव में झिरगा भगत और साथी, नागपुरी में देवदास विश्वकर्मा और साथी, खड़िया में निकोलस डुंगडुंग और साथी, पंच परगनिया में सुभाष कोयरी और साथी,

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे उस्ताद अली अकबर खां से सरोद पर राग रामदासी अर मल्हार में एक रचना। कलाकार हैं अली अकबर खां।